100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन बुधवार, वैशाख मास की 23वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 13 मई सन 2026, सुबह के 5:55 हुए हैं और 40 सेकंड। अब हमारी आज की सभा प्रारंभ हो रही है।

नव ऊर्जा, नव सृष्टि सृजन, नव हो उमंग, पवित्र हो मन। नित्य नव दिवस का शुभारंभ भक्ति भाव की पुष्पांजलि।

सुप्रभात, आप सभी सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। आप सुन रहे हैं भक्ति

संगीत से सजी पुष्पांजलि, जो आपके मन को शांति, श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण कर देगी। मैं रतन आपके साथ हूं आज की इस यात्रा में। तो आइए श्रद्धा के इन स्वरों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। भगवान गणपति के इस भजन के साथ ओम श्री गणेशाय।

प्रातः के 6:13 का समय हो चुका है। आप सुन रहे हैं पुष्पांजलि आज अपने दोस्त रतन के साथ 100.7 FM रेनबो पर। भक्ति का एहसास अति सुंदर है, ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु स्वयं हमारे समीप आ गए हों। भक्त जन कहते हैं, भक्ति की धारा जितनी गहरी होती है जीवन उतना ही सरल और आनंदमय हो जाता है।

भक्ति का अर्थ केवल भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम का विस्तार करना भी है। आइए कुछ पल के लिए प्रभु का ध्यान करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं।

भगवान गणपति बुद्धि, विवेक और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का मार्ग खुलता है। गणपति जी हमें यह सिखाते हैं, धैर्य, विनम्रता और सच्चे कर्म से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनका विशाल स्वरूप यह संदेश देता है कि हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए, सबकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए और हर परिस्थिति में शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। ओम श्री।

माँ भगवती की महिमा अनंत और अद्भुत है। वे अपने भक्तों की रक्षा करके उन्हें सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। माँ का स्मरण मन को पवित्र और हृदय को मजबूत बनाता है। उनकी कृपा से जीवन की कठिन राहें भी सरल लगने लगती हैं और मन में प्रेम भक्ति तथा विश्वास का दीप सदैव जलता रहता है।

भक्तजनों, भक्ति का हर पहलू जीवन को नई दिशा देता है। ये केवल प्रार्थना या भजन गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार, सेवा और विचारों में भी झलकती है। भक्ति का सबसे बड़ा रूप सेवा है। कहा गया है, सेवा ही सच्ची पूजा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वह भक्ति का सबसे पवित्र स्वरूप बन जाती है।

प्रभु आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का संचार करें। आज का ये दिन आपके लिए मंगलकारी और शुभ हो, इसी कामना के साथ अब आज की पुष्पांजलि से अपने दोस्त रतन को दीजिए जाने की अनुमति। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला कार्यक्रम न्यूज ब्रेक के बाद बिल्कुल तैयार है आपके लिए सदाबहार गीत। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM रेनबो।

नमस्कार, प्रातः के 7 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा है कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद ना करें। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव की बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को भी प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने पीएनजी, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों आदि के उपयोग पर विशेष बल दिया। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में करीब 400 करोड़ के जमीन घोटाले में सख्त कार्रवाई की गई है। थर्मल पावर प्लांट लगाने के नाम पर हुई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पूर्व एडीएम और संबंधित कंपनियों व बैंकों के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 मई को कैश वैन लूटकांड में के 2 इनामी बदमाश ढेर हो गए, जबकि उनके 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मारे गए बदमाशों की पहचान जुबेर और समीर के रूप में हुई है, जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश कैश वैन लूटकांड समेत कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित थे। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। प्रदेश के परिषदीय और कस्तूरबा विद्यालयों में आज से 19 मई तक भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस शिविर में बच्चों को पढ़ाई के साथ भारतीय भाषाओं और सांकेतिक संवाद की भी सीख दी जाएगी। शिविर के दौरान बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ दूसरी भारतीय भाषाओं से परिचित होंगे। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार अपना 77वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस अवसर पर आज लखनऊ के शहीद स्मृति भवन में भारतीय ज्ञान परंपरा में पांडुलिपियों का महत्व एवं उपयोगिता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी और अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
4: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
5: धड़कता है जो हर दिल में
6: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
3: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।

जहां हर सुबह प्यार की महक से महकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्यार की उस कोमल डोर की जो दो दिलों को बांधे रखती है। प्यार वह सुबह की पहली किरण है जो अंधेरी रात को विदा कहकर उम्मीद का संदेश लाती है और हमें यह बताती है कि खुशी तभी सच्ची होती है जब वो बांटी जाए। तो चलिए इस प्यार भरी सुबह को और रंगीन बनाते हैं सदाबहार गीत के इस प्यारे से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक सदाबहार गीत के साथ जो है सिर्फ आपके लिए, और मैं हूं आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात।

मस्ताने ओ जाने जरा नजरें मिला ले समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हट तेरा।

7:11 का समय हो चुका है और इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन मैं कर रहा हूँ। आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, आपके अपने प्यारे से शो सदाबहार गीत पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बातें होती हैं, आपसे मुलाकातें होती हैं। वाकई में हमारा दिन भी और भी खुशनुमा हो जाता है आपसे ढेर सारी बातें करके। दोस्तों, प्यार की जब बात होती है, इश्क की जब बात होती है, तो वाकई में दिल अपने आप बहुत खुश हो जाता है, बहुत बाग बाग हो जाता है। इश्क वो ज्वाला है जो दिल को जलाती भी है और रोशन भी करती है। ये बेकरारी का समंदर जहां हर लहर में महबूब का ख्याल उछलता है। इश्क में जो जलन होती है वो मीठी लगती है और त्याग स्वाभाविक। श्रोताओं, क्या कभी आप भी इश्क की इस आग में तपे हैं? आपने भी क्या कभी इस इश्क की गर्मी को महसूस किया है, इसकी तपन को सहा है? अगर कभी ऐसा किया है तो जरूर आपको वो पल, वो बातें याद आती होंगी जिसके लिए आप कभी पूरी तरह से उदास भी रहे, कभी उसकी याद में भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, कभी किसी से कोई बात नहीं की, बस एक याद, वो एक शख्स जो हमारे दिल में, दिमाग में बसा हुआ है, बस उसकी ही तस्वीर हमारी आंखों के सामने 24 घंटे बनी रहती है। और दिल बस यही सोचता है, यही कहता है कि काश काश वो मेरे सामने हो और मैं उसे बस यूं ही निहारता रहूं, यूं ही देखता रहूं, उस मुस्कुराते चेहरे को जिसमें मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं। वाकई में दोस्तों, इश्क में बहुत बहुत गहराई है। अगला बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो कि मैं आप सबके लिए प्ले करने वाला हूं। इसे एंजॉय कीजिए, हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

वेलकम बैक फ्रेंड्स इन प्रोग्राम सदाबहार गीत, और 7:19 का ये प्यारा सा सुबह का समय, और आप बहुत सारे हमारे मित्र इस वक्त चाय की चुस्कियों के साथ इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे होंगे। बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जो बाहर से टहलकर आ चुके होंगे और अब चाय की तैयारी में लगे हुए होंगे, नाश्ते की तैयारी में लगे हुए होंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो इस वक्त भी अभी बाहर होंगे और जॉगिंग कर रहे होंगे, राइडिंग कर रहे होंगे, बहुत कुछ हमारे मित्र कर रहे होंगे। और बहुत से ऐसे हमारे आलसी भी मित्र हैं जो कि इस वक्त अभी भी अपने बिस्तर पर होंगे और बस आंखें मसलते हुए हमें सुन रहे होंगे और कह रहे होंगे ठीक है अब रतन जी का ये प्रोग्राम समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम उठ

बिल्कुल, आप हमारे साथ अपना साथ ही निभाते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है आप जिस भी सिचुएशन में हैं लेकिन हमारा साथ पूरी तरह से निभाते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वाकई में दोस्तों, अगर मोहब्बत की जहाँ पे बात होती है तो दिल अपने आप बहुत खुश हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाता है। एक कहें तो बिल्कुल, अगर कहें तो खुशी इससे पूरी तरह से भर जाता है। और मोहब्बत तो प्रेम का परिपक्व फल है, है ना, जो समय के साथ और भी ज़्यादा मीठा होता है, और भी ज़्यादा इसमें मिठास बढ़ती जाती है। दोस्तों, ये शांत नदी की धारा सरीखी, जहाँ हर मोड़ पर विश्वास की मिठास खुली रहती है। मोहब्बत जीवन साथी का साथ निभाना है, हंसी में, आंसू में, हर पल में। दोस्तों, मोहब्बत वो बंधन है जो हर घर को स्वर्ग बनाता है। सुबह के इस ताजी हवा में मोहब्बत की खुशबू महक रही है ना, जब आपका साथ होता है तो वाकई में मोहब्बत की खुशबू हर जगह बिखर जाती है, फैल जाती है। और आपके मेल्स भी लगातार हम तक पहुंच रही हैं, वो भी हम देख रहे हैं और थोड़ी देर में उनको भी ज़रूर ज़रूर हम शामिल करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए, इसे एंजॉय कीजिए हमारे साथ, इसी प्यार के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए आपका अपना प्यारा सा शो सदाबहार गीत, जिस पर हम आपके लिए लगातार प्ले करते रहेंगे बहुत से ऐसे खूबसूरत सदाबहार गीत जो कहीं ना कहीं आपके दिल से जुड़े हुए हैं, आपकी यादों से जुड़े हुए हैं, आपकी मोहब्बत से जुड़े हुए हैं।

सात बजकर 25 मिनट का समय, प्रोग्राम सदाबहार गीत और आपका हमारा ये प्यारा सा साथ और आपकी ये प्यारी प्यारी सी मेल्स। दोस्तों पहली मेल हमारे पास आई है, किनकी ये मेल हमारे पास पहुंची है, पिंकी बारी जी की, और इन्होंने हमें ये मेल ठीक 7 बजे भेज दी है अमीनाबाद लखनऊ से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, और चाय भी इन्होंने साथ में भेजी है और कुछ पंक्तियाँ भेजी, लेकिन वो लगातार बदल रही हैं इसलिए हम उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं। थैंक यू सो मच पिंकी बारी जी, बहुत अच्छा लगा आपके इस चाय के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगली मेल है सुल्तान रजा साहब की। अस्सलाम वालेकुम रतन सर, कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आप भी बहुत अच्छे होंगे, हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं। और ये लिखते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ बता रही है कि आप माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। ओके, थैंक यू सो मच। और आगे लिखते हैं, लोग कहते हैं कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए, लेकिन हम कहते हैं रतन सर आप प्रोग्राम को ही चांद पर ले गए। कुतुबखाना सब्जी मंडी से सुल्तान रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा, इकबाल रजा, मम्मी पापा और छोटा सा अमान, अर्ज किया है गुलाब जैसे हो, गुलाब लगते हो, गुलाब जैसे हो गुलाब लगते हो आप। ओके, गुलाब जैसे हो गुलाब लगते हो आप, जब मुस्कुराते हो तो लाजवाब लगते हो आप। बहुत दिनों से इंतज़ार आपका इंतज़ार था और आज इंतज़ार हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारे प्यारे से दोस्त रतन सर हमारे साथ प्रोग्राम में आ चुके हैं और आपने हमारी ये बहुत एक तस्वीर आपने कहीं से प्राप्त की है और हमें भेजी है, बहुत अच्छी सी ये तस्वीर है, थैंक यू सो मच। और हमें भी नहीं पता ये तस्वीर कब कैसे आपके पास पहुंची, लेकिन ये आपका प्यार है और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगली मेल हमारे पास आई है अशोक कुमार साहब की और ये लिखते हैं सुप्रभात, कैसे हैं? तो मैं बहुत अच्छा हूँ अशोक जी, रायपुर उदारा मिठौली लखीमपुर खीरी से आप हमें मेल कर रहे हैं, सदाबहार प्रोग्राम इन्हें अच्छा लग रहा है। कुछ नाम हैं अजय राज बलिस्तर, राज प्रदीप राज। ओके, मैंने दोनों नाम पढ़ दिए हैं और आपकी इस मेल के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलफ्सा सिद्दीकी की भी मेल हम तक पहुंची है, गुलफ्सा सिद्दीकी कह रही हैं गुड मॉर्निंग रतन भाई, मैं गुलफ्सा सिद्दीकी संडीला से, आप आए बाहर आइए। ओके, थैंक यू सो मच, प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू सो मच, और साथ में आपने हमें ये आम भेजे हैं और सेब भेजे हैं और कहा ये आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शर्मा, शमा परवीन, महक अंसारी, ममता गौतम, निशान अंसारी, हम सब सुन रहे हैं आपको। ओके, हमेशा इसी तरह सुनते रहिए और इस प्यार के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राजेश वर्मा जी की भी मेल हम तक पहुंची है, रेनबो धड़कन लखनऊ, आज से सर जी मैं भी बेखुदी में आपके पास आ गया इस मधुर गीत के साथ, थैंक यू सो मच। राज मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा जी ने हम तक ये मेल पहुँचाई है, थैंक यू सो मच। रोशनी रावत जी की मेल हम तक पहुंच गई है, राधे राधे रतन सर जी, कैसे हैं आप? तो राधे राधे रोशनी जी, मैं बहुत अच्छा हूं, कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। सुबह 6 बजे से जुड़े हुए पुष्पांजलि प्रोग्राम आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच कि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी, वो रंग लाई और आपने उसे पसंद किया। मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम पोस्ट बमहना, तहसील सफीपुर, ज़िला उन्नाव से ये हमें मेल कर रही हैं, लेकिन इस वक्त

चंडीगढ़ से मैं सुन रही हैं। नीतू शर्मा दीदी और बबीता राव जी को राधे राधे बोल दीजिए। तो आप दोनों को हमारी तरफ से राधे राधे। तो लगातार आपकी मेल्स हम तक पहुंच रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी आप सब ने की हैं और इन सभी तारीफ़ों के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, एफएम रेनबो के साथ जुड़े रहते हैं और एफएम रेनबो भी आपके साथ लगातार इसी प्यार के साथ जुड़ा रहता है कि आप जुड़े हुए हैं। तो एक प्यारा सा और गीत हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, इसे एंजॉय कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: लाएगा डिजिटल.
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की.

7:39 का समय और प्रोग्राम सदाबहार गीत आपका हमारे प्यारा सा साथ और आपकी प्यारी प्यारी सी मेल्स वाकई में बिल्कुल एक समा सा बन जाता है, बड़ा खूबसूरत सा एहसास होता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इश्क रोमांच का तूफान है, दिल को उड़ान भरने पर मजबूर कर देता है, नींद उड़ जाती है, सपने हकीकत बन जाते हैं, इश्क ही तो जीवन को रंगीन बनाता है ना, जैसे

इश्क बाद का इंद्रधनुष। ये दोस्तों इश्क की वो बातें हैं जो दिल को बहुत बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाती हैं, और वाकई में इश्क में इतनी पावर होती है, इतनी ताकत होती है कि हमें अपने आप बिना कुछ खाए पिए हमें जिंदा रहने की ताकत दे देता है है ना। ये इश्क की पावर है, इसमें इतनी एनर्जी होती है कि वाकई में अगर हम किसी याद में हैं, दिनों बीत जाएं, कुछ ना खाएं, कुछ ना पिए, लेकिन बस अगर सच्ची मोहब्बत है तो वाकई में हम उसकी याद में बहुत कुछ कर सकते हैं, हम उसकी याद में बिना खाए पिए जी सकते हैं। वाकई में दोस्तों इश्क बहुत पावरफुल होता है। 7:40 का समय और ये बातें करते करते होने वाला है 7:41 का समय हो गया, और आपकी मेल्स भी लगातार हम तक पहुंच रही हैं। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं इस प्यारे से शो पर, इसे एंजॉय कीजिए हमारे साथ, इस प्यार के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत से गीत आपने सुना फ्रॉम द मूवी पत्थर के सनम, और आवाज़ मुकेश साहब की और साथ उनका निभा रही थी लता जी। बहुत ही प्यारे से लिरिक्स इस गीत के, और बहुत अच्छा सा ये गीत, और इतनी प्यारी सी सुबह में अगर सुनने को मिल जाए तो वाकई में दिन बन जाता है, और आपके साथ हमारा दिन भी बन गया। बहुत सारी मेल्स हमारे पास आ गई हैं, और भी ब्रजेश सिंह साहब की मेल हम तक पहुंची है, और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्यार भरा गुड मॉर्निंग फेवरेट, मेरे फेवरेट रतन सर जी, थैंक यू सो मच कि हम आपके फेवरेट हैं। अच्छा, इसलिए तो नहीं आप इतनी हमारी तारीफ करते हैं, या फिर इसलिए तो आप इतनी अच्छी अच्छी मेल्स हमको लिख कर नहीं भेजते कि हम आपकी मेल्स को शामिल करते हैं। हमें कभी कभी ऐसा भी एहसास होता है कि हम आपकी मेल्स को शामिल करते हैं, इस वजह से आप हमारी एक्स्ट्रा तारीफ कर जाते हैं। लेकिन जो भी हो, तारीफ तारीफ होती है, और आपकी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप इतनी सुबह इतनी मेहनत करते हैं और हम तक इतनी अच्छी अच्छी मेल्स पहुंचाते हैं। आगे लिखते हैं ब्रजेश जी, इन्होंने पहले तो हमें मेल जो भेजी है कैसरगंज बहराइच से, इनकी मेल हम तक पहुंची है, और ये कह रहे हैं आज की सुबह आपके साथ शुरू की है सर हमने, और आपके द्वारा पुष्पांजलि सुनते भक्तिमय माहौल हो जाता है। सदाबहार गीत की शुरुआत 85 झटके तो आपके कार्यक्रम से हमारे सबके दिल को लगता है। ओके, बहुत सुकून देता है पुष्पांजलि सुनते हुए। हम खेत पर आ गए थे और गन्ना गुड़ाई कर रहे हैं, आपके कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले रहे हैं सर जी। और ये लिख रहे हैं कि 5 तारीख से हम आपके नहीं, हमारे रेनबो से नहीं जुड़ पाए थे, लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही थी। तो ब्रजेश जी, हम ऊपर वाले से, गॉड से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं, और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त रहें। बस हम यही दुआ करते हैं आपके लिए, और आप अपना प्यार यूं ही हमें मेल के माध्यम से भेजते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राधे श्याम जी की भी मेल हम तक पहुंची है, कासगंज से ये हमें मेल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग आकाशवाणी की पूरी टीम और समस्त श्रोताओं को, रतन सर आप को नमस्कार। ओके रतन सर, आप जब भी प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं, करने आते हैं, तो सॉन्ग सिलेक्शन बहुत लाजवाब रहता है। थैंक यू सो मच कि आपको हमारा सॉन्ग सिलेक्शन पसंद आता है, और हमेशा से पसंद आता रहा है। साथ ही श्रोताओं की मेल रीड कर प्रोग्राम में 4 चांद लगा देते हैं, थैंक यू सो मच। वैसे तो आपकी मेल्स ही प्रोग्राम को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी मेल्स आप लोग भेजते हैं और उन्हें पढ़ के हम भी लाजवाब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। विजयपाल यादव जी की भी मेल हम तक पहुंची है, कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले भाई बहनों को, अभी भाई बहन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ भाई हैं। तथा सभी सुनने वाले भाई बहनों को, हाँ यहाँ पे सही है, सभी सुनने वाले भाई बहनों को, विजयपाल यादव ग्राम व पोस्ट ललहौला ज़िला खीरी की तरफ से सुप्रभात। तो सबकी तरफ से आपको भी बहुत बड़ा वाला सुप्रभात, आप सभी का दिन शुभ हो, यही मंगल कामना करते हैं। तो आपका भी दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, हम भी यही कामना करते हैं आपके लिए। विजयपाल जी, आपने हमको मेल लिखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल पांडे साहब जी ने हमें मेल किया है, कभी कभार रजनीगंधा प्रोग्राम में भी आ जाया करो। बिल्कुल अनिल जी, और देखिए सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ना इस दुनिया में, सब ईश्वर की इच्छा से होती हैं, और जब ईश्वर की इच्छा होगी तो ज़रूर हम आपसे पुष्पांजलि में तो मुलाकात करते ही हैं, रजनीगंधा में भी मुलाकात ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। कोमल तिवारी जी कह रही हैं सर आप सॉन्ग बहुत प्यारे प्ले कर रहे हैं, बहराइच से इन्होंने हमें मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा नसीर जमाल साहब की मेल हम तक पहुंची, रतन जी को सुप्रभात। तो आपको भी सुप्रभात। यदि हम जीवन में छोटी छोटी बातें रोज़ आत्मसात करते रहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि ये है, जल से व्यक्ति का शरीर साफ होता है, विचारों की शुद्धि से चित्त साफ होता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है नसीर भाई, और इस तरह की बातें आप हमेशा भेजा करते रहते हैं, और आगे भी इसी तरह से बातें आप करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेसन ऑफ लाइफ आपने दिया है अपने आज की मेल के हेडिंग को, बहुत बहुत

का शुक्रिया। राजेश वर्मा जी की भी मेल हम तक पहुंची है। सर जी नमस्कार, मैं मजबूर हो गया आज और उसी पर पुनः चल पड़ा आपके साथ। मैं बहुत ही मजबूर हूँ पुनः पत्र लिखने को। धन्यवाद आप की यादों को गीतों द्वारा झकझोरने का, अपनी यादों के को गीतों के द्वारा झकझोरने के लिए शायद आप लिखना चाहते थे। चलिए जो भी है, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। अगर हमने आपकी यादों को कुछ तरोताज़ा किया है, आपको हम उन यादों में उन विचारों में ले गए हैं जहाँ जिन सपनों को जिन बातों को जिन यादों को आपने जिया, तो वाकई में हमारा ये प्रोग्राम करना भी सफल हुआ। थैंक यू सो मच। मऊभाऊ भंजन उत्तर प्रदेश से इनकी मेल हम तक पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। लगातार मेल्स हमारे पास आ रही हैं, लेकिन एक प्यारा सा गीत हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं। इसे इंजॉय कीजिए, हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

वाकई में दोस्तों, जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी ही मिलती है, और मोहब्बत कहीं से भी मिले, किसी से भी मिले, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वाकई में मोहब्बत मोहब्बत होती है, और ये जिससे भी मिले हमें स्वीकार करना चाहिए। बहुत अच्छा सा गीत, लता जी की प्यारी सी आवाज, आपने इस गीत को सुना सदाबहार गीत पर। आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। 7:57 का समय हो चुका है, और ये समय बिल्कुल पूरी तरह से इशारा कर रहा है कि आज के सदाबहार गीत प्रोग्राम को हम बस जल्दी से वाइंड अप कर दें, क्योंकि जब तक इस प्रोग्राम को हम वाइंड अप नहीं करेंगे तब तक अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात कैसे होगी। बस आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, जिस पर अगला प्रोग्राम ठीक 8:15 पर आप तक पहुंचेगा गुड मॉर्निंग लखनऊ के रूप में, जिसमें मैं तो आपके साथ रहूंगा, साथ में एक और बहुत प्यारी सी आवाज़ के साथ आपकी एक प्यारी सी दोस्त आपको ज्वाइन करेंगी, और साथ में ठीक 8 आप तक पहुंचेंगे हिंदी में समाचार। आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की

0: अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव N मुरुगंदम और वित्त सचिव T उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव P शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के नेता N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। N रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्र वर्षीय N रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन S नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट UG के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको

0: किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर

0: और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगोमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात।
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ।
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कम्प्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: एक नए दिन की उम्मीदों को सलाम आपके बीच लेकर आ गए हम शो गुड मॉर्निंग लखनऊ है जिसका नाम
1: क्या बात वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रत्ना कैसी हैं आप
0: हम बहुत अच्छे हैं रतन सुबह से आपको सुन रहे हैं आप लोगों को लुत्फंदोज कर रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे नगमे
1: सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारा साथ निभा रही थी हमारे लिसनर्स की तरह और हमारे लिसनर्स वाकई में सुबह से जब हम ओपनिंग करते हैं ना उसके पहले ही हमारे पास बहुत सारी मेल्स आ जाती हैं इतने हमारे लिसनर्स एक्टिव रहते हैं और इतने मतलब बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहते हैं कि कब FM ऑन हो और हम अपने प्यारे से रेनबो से जुड़ जाए तो आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग लखनऊ मैं रतन और हमारे साथ हैं
0: रत्ना शुक्ला तो ये बताइए रतन कि आप लोगों के दिल की बात कैसे जान लेते हैं क्या वो सोचते हैं कि मैं सुबह से जुड़ जाऊं और बस FM रेनबो के साथ जुड़ा रहूं आप दिल की बात जान लेते हैं
1: तो ये हमारे दोस्तों का हमारे प्रति प्यार है और वो जो तार जुड़े हुए हैं ना वो डायरेक्टली कभी कभी ज्यादा जुड़ जाते हैं और इसी वजह से जितनी भी फीलिंग्स हैं हमारे अंदर भी वाली आ जाती है
0: बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है लिसनर्स के प्रति
1: जी बिल्कुल सही बात
0: बहुत अच्छी बात हो 100.7 FM रेनबो है ही ऐसा चैनल की इसके हर घंटे जो प्रोग्राम हम लोग लेकर आते हैं वो सब आप लोगों को ही जितने भी हमारे श्रोता हैं उन सब के लिए लेकर आते हैं और अलग अलग कलेवर के साथ लेकर आते हैं तभी कहते हैं धड़कन
1: लखनऊ की और वाकई में ये रेनबो है इसमें जितने भी रंग हैं सारे के सारे आपके लिए ही हैं तो आज की गुड मॉर्निंग लखनऊ में भी बहुत सारे रंग हम समेट कर लाए हैं आपके लिए आप हमारे साथ ये जुड़े रहिए सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
1: आज का मॉर्निंग मंत्र। जी हाँ दोस्तों, 8:23 का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपके दो दोस्त आर स्क्वायर यानी कि रत्ना और रतन आपके साथ जुड़े हुए हैं और अब समय हो चुका है आज के मॉर्निंग मंत्र का।
2: जी, मॉर्निंग मंत्र जो कि हमारे लिए बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आता है, साथ में एक हेल्दी डोज की बात अगर करते ना, सुन के लगता है अरे ऐसा भी है और ऐसा भी करना चाहिए क्या। तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव और पॉजिटिव गुजर सके, इसी कोशिश में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं
1: एक नया मॉर्निंग मंत्रा और हर रोज कुछ ऐसी बातें जो पॉजिटिविटी से आपको पूरी तरह से भर देती हैं।
2: बिल्कुल,
1: नए मौके का दिल से स्वागत करिए।
2: अच्छा, मुश्किलों से डटकर सामना करिए,
1: कोशिश उनसे बड़ी कर रखिए, क्योंकि दोस्तों वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि नए जो मौके होते हैं हमें उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी नए मौके का स्वागत करते हैं तो वाकई में हमें प्रारंभ में तो ऐसा लगता है कि शायद ये मौका हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम उस मौके को पहचानते हैं तो वाकई में लगता है ये मौका हमारे लिए ही था। तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।

0: और ऐसा ऐसा वक्त बढ़ता चला गया। 8:29 हो रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, जिसमें आपके दो दोस्त रतन और रत्ना है। और रतन बहुत ज्यादा कह रहे हैं, मैंने कहा कि भाई नाश्ते वाश्ते में आपके लिए कुछ थोड़ा सा ही लेकर आए, थोड़ा सा आप चखिए, मना कर रहे हैं। कल मैंने बहुत कुछ
1: खाया है।
0: चलिए आप अपने आप बताइए।
1: जी हमने कल बहुत कुछ खाया है, दिन भर खाया है। सुबह हम 10 करीब अपने घर से निकल गए थे और उसके बाद फिर शाम को 6 लौटे हैं। और दिन भर सोचिए हमारा कितना अच्छा गुजरा है। जगह जगह पे हमें कहीं बूंदी खाने को मिली, कहीं शरबत पीने को मिला, कहीं पे हमें कोल्ड ड्रिंक मिली, कहीं पे छोला चावल मिले, कहीं पे हमें
0: कढ़ी चावल,
1: कढ़ी सब्जी मिली, कढ़ी चावल भी हमें मिला। तो हमें मतलब जगह जगह चने भी हमें मिले और छोले वाले चने भी हमें मिले। तो बहुत टेस्टी टेस्टी हमें कल बहुत कुछ खाने को मिला। और जिसका जो स्वाद है और जिसकी जो महक है वो आज भी मेरे अंदर पूरी तरह से बेबस है और मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ।
0: वाह,
1: बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के आयोजन होते हैं।

0: हैं और इस तरह के त्यौहार जब हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और आपने कल क्या किया ये बताइए।
1: बस जो आपने कहा ना उसकी काफी झलक हम पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके साथ भजन कीर्तन, उसके साथ ये जो आपने जितने भी जायके बताए प्रसाद के, इनमें से इतने सारे तो मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद होता है, तो प्रसाद मैंने ग्रहण किया। और हम प्रसाद जहाँ पर ग्रहण करने गए थे बहुत अच्छा सा वहाँ पर अरेंजमेंट था।
0: बताऊँ आपको, मैं चौक से गुजरता हुआ सीधे निकलता निकलता निकलता कहाँ पहुँचा, अलीगंज।
1: अच्छा जी।
0: जहाँ पे पूरे तरह से वहाँ पे अगर कहें तो बजरंग बली का पूरी तरह से वहाँ पे भंडारे लगते हैं, बहुत सारे लगते हैं जी, और जी। पूरे रास्ते पर हमें तरह तरह की वैरायटीज मिलती रही, आइसक्रीम
1: भी मिली। सारे नाम लिए सुन के बिल्कुल अलग अलग, बहुत ही शिद्दत के साथ वो अपने आप इतना ज्यादा उसका टेस्ट बढ़ जाता है क्योंकि प्रसाद के रूप में होता है,
0: बहुत अच्छा लगता है। और वाकई में दोस्तों सारे के सारे जितना माहौल है पूरे लखनऊ शहर का वाकई में देखने लायक था कल का। और अभी जेष्ठ के मात्र जो जेठ का ये जो महीना चल रहा है इसके दो मंगल बीते हैं और अभी बहुत सारे मंगल बाकी हैं, कुल मिलाकर अगर कहें तो 6 मंगल और बाकी हैं। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण करीब करीब 8 मंगल पूरे पूरे पड़ रहे हैं, है ना।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत अच्छा है। और आज जब हम मंगल की बात कर रहे हैं, भगवान बजरंगबली के इस पर्व की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में दोस्तों जब हम इस पर्व की बात करते हैं तो उससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं और कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारियों का भी हमें एहसास कराती हैं। और इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं आज का हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है ये।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, मुद्दा आज का पूरे समाज का।
0: जी हाँ दोस्तों, तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है। और वो मुद्दा क्या है उसको विस्तार रूप से आपको बताने वाली है रत्ना। तो रत्ना क्या है आज का मुद्दा?
1: देखिए आपने कल की इतनी अच्छी अच्छी बातें सब लोगों से शेयर कर ली और बात आती है मुद्दे की, तो मुद्दा बस इसी से जुड़ा है जो बातें आप तक पहुंचाई गई हैं कि बीते कल जो ज्येष्ठ का दूसरा बड़ा मंगल पड़ा, खूब आस्था और उल्लास और भक्ति के साथ मनाया गया, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने बात की और लोगों ने इसको महसूस भी किया। तो जो भंडारा हुआ, जो पूजन हुआ, प्रसाद सबको मिला, सबने खाया, तो उसमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए जो हमें वहाँ पर दोने मिलते हैं, पत्तल मिलते हैं, गिलास मिलते हैं, ठीक है, बड़े मज़े से हम खाते हैं, उनमें सेवन करते हैं। उसके बाद जो उसका फिर आप क्या करते हैं उसके प्रति आप अपनी कितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, यानी कि आप उसको उचित जगह पर जहां उसको खाने के बाद उसको फेंकने की जो स्थान बनाया गया है वहां पर आप उसको इकट्ठा करते हैं, वहां पर तक उसको लेके जाते पहुंचाते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि बस मैंने खा लिया, साइड में आप कहीं भी फेंके, जहां खड़े हैं वहीं पर फेंक दिया, साइड में उछाल दिया, इस तरह की कोई एक्टिविटीज आपने देखी या आपने इसमें कुछ अपना योगदान दिया कि आप साफ सफाई के साथ उस जगह को, उस परिसर को साफ सफाई के साथ प्रसाद ग्रहण करने के बाद बिल्कुल स्वच्छ बना के रखें, और स्वच्छ भारत अभियान में या फिर कहिए कि अपनी जिम्मेदारी समझ के कुछ आपका योगदान रहा है ऐसी कुछ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में, ये बताइए।
0: कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कि बस प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म, बस हम चल दिए?
1: ऐसा कई बार होता है,
0: बहुत सारे लोग करते हैं। कल मैं देख रहा था और इसीलिए मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी कि आज जब मैं ऑन एयर होऊंगा जाऊंगा तो चूंकि ये बहुत कॉमन सी बात है और बहुत अगर हम कहें तो सभी लोग जानते हैं और सभी लोगों को पता है और लगभग हर बार हम इस विषय में बातचीत भी करते हैं, लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम आपको उन महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराते रहें, साथ में उनका ध्यान आपका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करते रहें ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों को विशेष रूप से ध्यान रखें। और कल का जब मैंने माहौल देखा तो बहुत सारे लोग रत्ना ऐसा कर रहे थे कि बाइक पे बैठे हुए थे, कुछ मैंने कार वालों को देखा कि वो ग्लास वगैरह सब उसमें ले अपने उन्होंने ले लिया और आगे थोड़ी दूर गए बस पी के वो ग्लास कार के बाहर। अच्छा। तो ये जो चीज मुझे मैंने देखी तो मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा, फीलिंग अच्छी सी नहीं आई, क्योंकि जब हम किसी चीज को ले रहे हैं और वो चीज हमें दी जा रही तो जो भंडारे आयोजित कर रहे हैं वो तो अपनी व्यवस्था बनाते हैं और वो पूरी जिम्मेदारी से कार्य करते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: लेकिन होता यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि रोड पर अन्य लोग भी चल रहे हैं, यात्रीगण, उनको परेशानी ना हो।
1: परेशानी ना हो, या आपने कभी किसी चीज़ को खाने के बाद उछाल लिया जैसा कि रतन ने अभी जिक्र किया, ऐसा भी कुछ मंजर देखने को आया, तो आपने इसके प्रति आपका क्या योगदान रहा, कितनी जिम्मेदारी आप अपनी समझते हैं, या आप हमें मेल करके बता सकते हैं। आज प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में हमारा मेल आईडी तो आप सभी को पता है ना।
0: जी हाँ दोस्तों, हमारी बहुत ही प्यारी सी मेल आईडी है
1: fmakashwanilakhnow@gmail.com। हाँ, आप हमें अपना मेल सेंड कर सकते हैं और आपका मेल हम ऑन एयर करेंगे। फिलहाल हम आप तक गाना पहुंचा रहे हैं और वो गाना है, बस आप एंजॉय करिए, हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं।
0: बिल्कुल।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

0: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
1: चलते रे इश्क भी बढ़ जाते
2: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
0: आपके अपने रेनबो की जबानी।
1: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
3: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
4: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
0: 100.7 FM रेनबो,
5: धड़कन लखनऊ की।

0: और आइए दोस्तों, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मिसेज यूपी 2026 गुरशरण मिश्र जी से खास बातचीत, और आपसे बात कर रही हैं शीबा राकेश।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ शीबा राकेश, और आज हमारे साथ आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जहीन और बहुत ही मारूफ शख्सियत आई हुई है, जिनका इंट्रोडक्शन तो मैं कराऊंगी ही कराऊंगी, लेकिन उससे पहले हम ये

जानेंगे उनके बारे में कि उन्होंने मिसेज यूपी का क्राउन अप्रैल 2026 में अपने नाम किया, पूरे प्रदेश को उन्होंने गौरवान्वित किया। ये पेशे से एक टीचर हैं, बच्चों की जिंदगियां बनाती हैं और क्वीन ऑफ वर्च्यू सीजन 5 जो हुआ था लखनऊ में 9 अप्रैल 2026 को, उसमें इनको मिसेज उत्तर प्रदेश क्राउन किया गया। 2015 में ये मिसेज लखीमपुर भी रह चुकी हैं और इनका नाम है गुरशरण मिश्र। गुरशरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई क्राउन जीतने की।

0: हैं और इनका नाम है गुरशरण मिश्र। गुरशरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई क्राउन जीतने की। कैसा लग रहा है मिसेज यूपी 2026 का ताज जीतकर? और एक चीज जरूर जानना चाहूंगी आपसे, आपकी इस जर्नी में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है?
1: देखिए, जीतना तो सबके जीवन में एक बहुत ही अच्छा क्षण होता है। जब भी वो किसी भी स्टेज पे जाए और उसमें वो विनर होता है, तो ये इस खुशी को वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपने शब्दों में। इसमें जो मेरा सपोर्ट सिस्टम, जैसा कि आप पूछ रही हैं, मेरी बेटी और मेरी मदर इन लॉ, यहाँ तक आने में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत फोर्स किया, क्योंकि मैं इसको स्किप करने के बारे में कई बार मैंने सोचा था, लेकिन उन दोनों की वजह से ही मैंने स्किप नहीं किया इसको। और मुझसे कहीं ज़्यादा खुशी मेरी बेटी को हुई थी, क्योंकि जब ये प्रोग्राम हो रहा था उस जर्नी में मेरी बेटी मेरे साथ रही है। 4 दिन तक ये चला था प्रोग्राम, जिसमें 8 राउंड थे, जिसके फाइनल राउंड में सिर्फ ऑडियंस आ सकते थे, तो उसमें मेरी बेटी ही प्रेजेंट थी ऑडियंस में। मेरे जीतने की खुशी मुझे खुद से ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि मेरी बेटी बहुत खुश थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैंने ये अच्छा काम किया है।
0: अभी हाल ही में हमने मदर्स डे मनाया, और श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, स्त्रियां स्त्रियों की दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वुमेन सोरॉरिटी को हम सब जानते हैं, और अगर एक माँ एक बेटी का सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम हो सकती है, तो यहाँ हमारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक बेटी एक माँ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनकर उभरी। और जैसा कि आपने कहा, आपकी मदर इन लॉ भी, तो यहाँ 3 पीढ़ियों की कलेक्टिव सक्सेस को हम गुरशरण मिश्र जी के तौर पर साक्षात देख सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगी गुरशरण जी, कि मिसेज यूपी तक पहुंचने का सफर कितना चैलेंजिंग रहा, कितना इंस्पायरिंग रहा? क्योंकि कोई भी ताज किसी के सिर पर जब चढ़ता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ तो होता ही है, और अक्सर हम जानते हैं कि किसी भी कामयाबी तक पहुंचने का सफर इतना आसान भी नहीं होता।
1: जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जब तक मैं यहाँ नहीं पहुंची थी, मुझे भी ये लगता था कि ये ऐसी चीज है जिसे अचीव करना बहुत मुश्किल है। इसी घबराहट में मैंने शायद फरवरी तक ये सोचा था कई बार कि इसको स्किप कर दूं, लेकिन 6 मार्च के बाद, मुझे तारीख याद है, मेरी बेटी होली की छुट्टियों में घर आई, मैंने उससे डिस्कस किया कि बेटा मैं छोड़ देती हूँ, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। सबके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर हम नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे, हो सकता है हमारा मजाक बने। तो उसने मुझे कहा कि मम्मा, पूरे लखीमपुर में आपने सिंगल इसमें ट्राई किया है, तो यही आपके लिए सबसे बेस्ट बात है कि आपने सोचा तो, आपने कोशिश तो की। आप तो वैसे ही उन लोगों से अलग हो गई जिनके बारे में सोच रही कि जो आपका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए अगर आपने कोशिश की है तो आप ये अफसोस मत आगे कीजिएगा कि आपने पूरा क्यों नहीं किया है सफ़र। क्या पता आप जीत जाएँ, आप हटिए नहीं। जब आगे आप हार के भी हटेंगी ना, तो भी ये रहेगा कि आपने कोशिश की थी, जितनी आप काबिल थी उतना आपको वो कुछ मिला उसमें। इसलिए उसके कहने पे मैंने स्किप नहीं किया, तैयारी शुरू करी, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको तैयारी करनी पड़ती है, पढ़ाई वगैरह भी देखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ 8 राउंड में 4 राउंड ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो भी कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हैं उन पर एक अच्छी पकड़ रखनी होती है। जो क्लोज डोर इंटरव्यू होता है, आपको नहीं मालूम किस टॉपिक पे आपसे डिस्कस किया जाएगा, किस में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, पर्सनैलिटी टेस्ट में मुझसे कहीं बेटर लोग होंगे, तो वो सभी हो सकता है ज़्यादा हमसे कैपेबल हों, लेकिन जहाँ पर बात आती है कि आपका ज्ञान आपको किस लेवल पर है, और चूँकि मैं बेसिक डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपने देश की एक्चुअल ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि सिर्फ जीवन शहरों में ही नहीं है, उन गांवों में भी वो औरतें, वो लोग रहते हैं जिनको ज़िंदगी का मतलब पता ही नहीं है। और मेरा सब्जेक्ट वीमेन एम्पावरमेंट है, क्योंकि मैं वीमेंस के लिए कुछ करना चाह रही हूँ अपने ज़िले में ही, क्योंकि मेरा एक छोटा शहर है लेकिन ज़िला बहुत बड़ा है हमारा। दूसरा, ग्रीनरी मेरा मेन फोकस रहता है। मैं अभी भी हर जुलाई में, मुझे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्लान आते हैं वृक्षारोपण के, वो अलग हैं, मैं पर्सनल करती हूँ। तो अपने गांव में मैं एक सिस्टम मैंने बना रखा है कि हर साल मैं जुलाई में गांव के लोगों को जैसे मीटिंग में बुलाती हूँ, तो उनसे मैं उनकी चॉइस लेती हूँ कि आपको जो पेड़ चाहिए, मैं हाइब्रिड आपको वो पेड़ दूंगी, प्लस आपको वो ट्री गार्ड भी दूंगी, बस 4-5 साल उस पेड़ की देखरेख आपको करनी। तो ये चीज़ मैं अपने गांव में ये काम कर रही हूँ, और इसको मैं बड़े स्केल में करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें मैं चाहती हूँ कि कोई सपोर्ट फाइनेंशियली भी मुझे मिले, कोई NGO ऐसा हो, या मैं अपना ही बना सकूं, तो मुझे हर खाली जगह पे पेड़ लगाने।
0: तो ये सफर जितना इंस्पायरिंग आपके लिए मैं कहूंगी रहा, उससे ज्यादा इंस्पायरिंग हमारे उन लिसनर्स के लिए भी होगा आपको सुन के, जो आज इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आपकी पर्सनालिटी के बारे में जान रहे हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं वो केवल लुक्स के बारे में होते हैं, बट जैसा आप कह रही हैं, आप हमारे बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, बच्चों का फ्यूचर भी आप तैयार करती हैं। आसान नहीं होता जब एक शादीशुदा स्त्री इस राह

0: कदम रखती है। तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाना?
1: मैम, शादीशुदा होने से मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ, बस आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: जब आप एक सिर्फ डॉटर हैं तो आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं किसी की, और जब आप एक मदर हैं, एक वाइफ हैं, तो प्लस जॉब भी करती हूँ मैं, तो हमारी जिम्मेदारियाँ अलग अलग फील्ड में अलग तरह की हैं, उनको हम इसके किसी हाल में नहीं कर सकते। उन्हें पूरा करते हुए हमें अपने सपनों को पूरा करना होता है। मैं हमेशा हर फीमेल को ये बात कहती हूँ, अपनी बेटी को भी समझाती हूँ कि सपने देखने का हक सबको है, और शादी होने का मतलब ये नहीं कि अब सपने देखना ख़त्म, अब सिर्फ काम करना है। और जो भी लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी आप रखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि ये काम मुझे करने, उसमें अपने को टॉप 5 में रखना है। क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पर आप खुद भी इंपॉर्टेंट हैं। और ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ और हमेशा कहती आई, जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं तभी आपके आसपास के लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे। कोई आके आपसे ये नहीं कहेगा अपने सपने पूरे करो, ये आपको खुद कहना है कि नहीं हमें करना है।
0: ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो गुरशरण जी ने हमें दिया सेल्फ लव के बारे में, और खासकर उन स्त्रियों को, उन हमारी सखियों को, हमारी सहेलियों को जो इस समय हमारे साथ रेडियो पर जुड़ी हुई हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी चीज से जुड़ा हुआ है कि जो स्त्रियां हमें सुन रही हैं उनको आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी?
1: प्रायोरिटीज अपनी सेट करें और अपने को हमेशा ऊपर रखें हर चीज से, ये नहीं कि सबसे बाद में। और एक चीज हमेशा याद रखें कि सारी ताकत हमारी सोच में होती है। अगर आप करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, इसमें किसी की मतलब कोई कंसीडर करेगा या कोई आपको परमिशन देगा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप करना चाहती हैं, आप सेट करिए उस चीज़ को कि मुझे करना है, तो लोग आपको मानेंगे कि हाँ आप करेंगी। तो इस पे किसी को राइट नहीं देना चाहिए। आपके डिसीजन लेने का जो फ्रीडम है वो आपके पास होना चाहिए कि आपने क्या करना है।
0: बहुत ही खूबसूरत सोच है। एंड एज वी ऑलवेज से दैट डिग्निटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन इज not asked, it is non-negotiable. You have to fight for it, you have to negotiate for it, and when it comes to you, please accept the fact कि ये स्वयं आपकी है और केवल आपकी है, और आपके अलावा इस पर किसी का अधिकार नहीं है। एक ऐसी नारी, एक ऐसी शक्ति जो स्वयं के सौंदर्य को और स्वयं की खूबसूरती को स्वयं की शक्ति से जोड़ती है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और कोई हो नहीं सकती। तो मैं हूँ शीबा राकेश और आप मेरे साथ अभी सुन रहे थे मिसेस उत्तर प्रदेश 2026 क्राउन की गई गुरशरण मिश्र जी को। आप हमारे स्टूडियोज में आई और आपने अपनी लाइफ और अपनी जर्नी के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम के लिए इतनी सारी रोचक बातें शेयर की गुरशरण जी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
2: दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे मिसेज यूपी 2026 गुरशरण मिश्र जी से शिवा राकेश जी की खास बातचीत।

0: जी दोस्तों, 8:57 का समय हो चुका है और ये समय इशारा कर रहा है कि गुड मॉर्निंग लखनऊ के पहले घंटे को हम यहाँ पे विराम दें और न्यूज ब्रेक के बाद आपसे हम पुनः मुलाकात करेंगे आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
1: सुनते रहिए, बने रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।

नमस्कार, 9 बजे आप सुनिए आज की अखबारों की सुर्खियां। मेडिकल के स्नातक कोर्सों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी के प्रश्नों के लीक होने की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार ने पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने का फैसला किया है। आज सभी समाचार पत्रों ने इसे अपनी सुर्खियों में शामिल किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, पेपर लीक की पुष्टि, नीट यूजी रद्द। वॉइस ऑफ लखनऊ ने लिखा है, नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी जांच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बचत और स्वदेशी को बढ़ावा देने के साथ ही संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील की है। दैनिक जागरण ने इसे अपनी हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, आधा होगा मंत्रियों का काफिला, पीएम के आह्वान पर योगी ने कहा, ईंधन की खपत घटाएं, अनावश्यक न खरीदें सोना। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा दिया है कि देश में कच्चे तेल, पीएनजी, एलपीजी को लेकर चिंता नहीं है। हिंदुस्तान

अखबार ने उनके बयान को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, ईंधन मूल्य वृद्धि हमेशा नहीं रोक सकते। इसके साथ ही अखबार ने कानपुर देहात में 400 करोड़ के भू घोटाले में पूर्व एसडीएम समेत 7 पर केस, गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर 7 जुलाई से आवेदन की खबरों को भी प्रमुखता दी है। तमिलनाडु में विधानसभा में बहुमत साबित करने के एक दिन पहले विपक्षी दल अन्ना द्रमुक में दो फाड़ हो गया। अमर उजाला ने प्रमुख खबरों के साथ इसे अपनी हेडलाइन में शामिल किया है और लिखा है, अन्ना द्रमुक में बड़ी टूट, 30 बागी विधायक देंगे टीवीके को समर्थन। स्वतंत्र भारत ने इस खबर पर लिखा है, AIADMK बागी गुट का टीवीके को समर्थन। उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में इस बार मॉनसून कब पहुंचेगा इसका पता 10 दिन पहले ही चल जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल AI आधारित दो पूर्वानुमान प्रणालियों की शुरुआत की। इन प्रणालियों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विकसित किया है। नवभारत टाइम्स ने आज इसे अपनी सुर्खियों में शामिल करते हुए लिखा है, AI का कमाल, 10 दिन पहले ही पता चल जाएगी बारिश की चाल। वहीं अमृत विचार अखबार ने असम में हिम्मता बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की जांच CBI द्वारा शुरू करने को भी प्रमुखता दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: जी दोस्तों, नमस्कार। 4 मिनट का समय हो चुका है और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग लखनऊ पर, जिस पर आज हैं आपके दो दोस्त आर स्क्वायर यानी कि रत्ना
1: और रत्ना शुक्ला। और रतन बार बार इशारा कर रहे हैं कि देखिए ब्रेकफास्ट शो है गुड मॉर्निंग लखनऊ, तो इसमें पता नहीं घर में क्या नाश्ता बना होगा, पर जाने के बाद सीधे सीधे नाश्ता करूंगा बढ़िया वाला। और इनको अभी गेस कर दें कि पता नहीं क्या बना होगा, तो हमने कहा चलिए आपको जो भी नाश्ता आप जाएंगे आपको मिलेगा वो गर्मा गर्म अगर है तो नाश्ता ही, और बिल्कुल डट के करिएगा नाश्ता क्योंकि नाश्ते पे है आस्था।
0: बिल्कुल गर्मा गर्म ही हमें मिलने वाला है और वाकई में हमें इंतजार है कि कब हम यहाँ से निकलें और अपने घर पहुंचे और नाश्ता करें। लेकिन अभी फिलहाल जब तक आपके साथ हैं ये भी एक बहुत अच्छा सा पल है हमारे लिए। हाँ। और इस पल के लिए तो हम पूरा वीक जीते हैं ताकि हम आपसे मिल सकें आगे, और आपका ये साथ है हमारे लिए बहुत अच्छा है। और साथ में आज का जो मुद्दा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ही हमने ज्येष्ठ का बड़ा दूसरा मंगल सेलिब्रेट किया है और अभी बाकी आने वाले बहुत सारे मंगल हैं उनको भी हम सेलिब्रेट करेंगे। और इसी बात से जुड़ा हुआ हमारा आज का मुद्दा है। हमारी कोशिश है कि आज के इस मुद्दे से आपका ध्यान हम उन जिम्मेदारियों की तरफ आकर्षित करें जिनको देखकर कभी कभी कुछ लोग अनजाने में उसको बिना देखा हुआ समझ लेते हैं, उसको पूरा नहीं करते। और हमारी कोशिश है कि आप अपनी किसी भी जिम्मेदारी से चूके मत,
1: अनदेखा करके आप आगे बढ़ जाते हो। कभी कभी आपका जो योगदान है अधूरा रह जाता है और आप चाहकर भी नहीं कर पाते। कभी तो ऐसी स्थिति होती है, कभी कभी आप चाहते हैं लेकिन सहयोग आपका वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो बस इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे लोगों के विचार मेल के जरिए हम तक आ गए, तो हम ये आपसे कहना चाह रहे थे जो

0: हमारा मुद्दा था जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया, उनको एक बार फिर से दोहरा देते हैं उनके लिए कि कल जो बड़ा मंगल बीता उसमें कुछ देखने में हमारी जानकारी में आया, तो जो पूजन है, भंडारे हैं, प्रसाद, ये सब खाने के बाद अगर आप दोने हैं, गिलास हैं, पत्तल हैं, इन सबको अनुचित जगह पर अगर आप फेंक देते हैं या उचित जगह पर इकट्ठा नहीं करते हैं तो साफ सफाई में आप बिल्कुल योगदान नहीं दे पाते हैं। क्या हमको ऐसा करना चाहिए और अगर नहीं करना चाहिए तो आपके क्या विचार हैं, बस यही हम आपसे जानना चाहते हैं।
1: और इसके लिए आप हमारी मेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी fmakashwani@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आप जुड़िए हमारे साथ और आज के मुद्दे पर अपने विचार हम तक पहुंचाइए। हमें आपकी जो मेल्स हैं उनका पूरी तरह से इंतजार है और बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंच भी चुकी हैं, उनको भी हम थोड़ी देर में जरूर जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल अगला ट्रैक आप सबके लिए

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: नौ बजकर 12 मिनट का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। आपके दो दोस्त रत्ना और रतन आपके साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: बहुत बहुत नमस्कार सर।
2: आज वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। अगर बात करें तो पीक आवर्स का समय चल रहा है, तो ऐसे में हमारा जो सबसे प्रमुख मार्ग है लखनऊ अयोध्या मार्ग, यहाँ पर पॉलिटेक्निक से कमता चिन्हट, ये थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट में है अभी, यहाँ पर यातायात का अधिक दबाव है। और दूसरी तरफ अगर बात करें लखनऊ सीतापुर मार्ग की, तो हमारा मड़ियाव ढाल के पास में थोड़ा सा है। तो लखनऊ अयोध्या मार्ग पर अगर आप सफर कर रहे हैं तो आप वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें, अथवा पीक आवर्स के समय में यदि अति आवश्यक ना हो तो इस मार्ग के प्रयोग से अवॉइड करें, ताकि जो है आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। लखनऊ कानपुर मार्ग पर पीएनसी कंपनी द्वारा कुछ स्थानों पर, जैसे कि नादरगंज हो गया, स्कूटर इंडिया के पास हो गया, बारा बिरुआ के पास में हो गया, यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, तो इस दौरान भी थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो हो सकता है, रोक रोक करके कार्य कराया जाए। तो इस दौरान अगर आपको अति आवश्यक ना हो तो लखनऊ कानपुर मार्ग के प्रयोग से बचे, या थोड़ा सा घर से समय से निकलेंगे तो आपको बाधा नहीं होगी और आप अपने गंतव्य तक समय से पहुंच सकेंगे।
1: जी। और सर, आज हमने एक मुद्दा लिया अपने प्रोग्राम में कि आज जैसे कि भंडारे हो रहे हैं, बजरंग बली का ये जेठ का मंथ चल रहा है, और इसमें जगह जगह सर जो है भंडारे की वजह से कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं अव्यवस्थित हो जाती हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ हमारी जनता से बताइए।
2: जी सर, आपने अच्छा मुद्दा लिया है और मेरा आशा और पूर्ण विश्वास है कि जितना भंडारे का आयोजन करने वाले हमारे आयोजक गण हैं, इनके द्वारा लगातार जो है, जो हम लोगों ने नियम बताए हैं, जैसे कि ट्रैफिक मार्शल की नियुक्ति करना और रोड साइड को छोड़ करके भंडारे का आयोजन करना, साथ ही ऐसे स्थान पर जहाँ पर जो है अधिक संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं जब भंडारे का आयोजन होता है, तो वहां पर पार्किंग की अतिरिक्त व्यवस्था करना, तो ये सारी व्यवस्थाएं यदि हम करते हैं तो कहीं भी हमें असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो है यातायात में कोई बाधा नहीं उत्पन्न। तो मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से सभी आयोजक गण से अनुरोध करूंगा कि यदि आप जो है भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, कृपया रोड साइड को थोड़ा सा छोड़ करके भंडारे का पंडाल लगाएं, साथ ही पार्किंग की अतिरिक्त व्यवस्था रखें, अपने साथ में ट्रैफिक वॉलंटियर के रूप में कुछ ट्रैफिक मार्शल्स भी लगाएं, जिससे कि यातायात में बाधा ना हो और प्रभु का नाम लेते हुए एकदम एंजॉय के साथ आप जो है भंडारा कराइए, और जो लोगों को इससे सौहार्द मिलती है, शक्ति मिलती है, ये कार्य पुण्य का है, इसे करते रहें, परंतु यातायात में अवरोध ना उत्पन्न हो इस हेतु कुछ जो है सहायता प्रदान करें। हम ट्रैफिक पुलिस भी लगातार ऐसे स्थान पर रेसर मोबाइल्स और अपनी सिविल पुलिस की मदद से हम सुगम यातायात व्यवस्था कराते हैं। यदि पब्लिक को कहीं कोई असुविधा का सामना करना पड़ रहा हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 9454 55 55, जो कि आपके माध्यम से हम लगातार श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम तत्काल वहां पर आपको सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई और आज के दिन हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी स्वागत कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
2: जी धन्यवाद सर, धन्यवाद, आभार।

0: तो दोस्तों हमारे साथ विकास सिंह सर जुड़े और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई और
1: आज के मुद्दे से जुड़ी बात पर भी उन्होंने अपने विचार रखे और कुछ हम लोगों को सुविधा किस तरह से हो सकती है उस बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे और हम लोगों को सुझाव दिए। तो इसी बात के साथ अब हम लोग लेते हैं कमर्शियल ब्रेक।
2: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: नौ बजकर 22 मिनट हो रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में, रतन और रत्ना शुक्ला हैं आपके साथ और बहुत कुछ हम आपको अपडेट पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अब जो अगली अपडेट हम देने जा रहे हैं रतन, वो क्या है?
2: दोस्तों, हमारे शहर में हर दिन बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं और उन खास आयोजनों की जानकारी हम आपको देते हैं ताकि आप अगर उन क्षेत्रों के आसपास रहें और आपके पास टाइम हो तो आप जरूर उन प्रोग्राम्स में, उन आयोजनों में शिरकत करें, उनमें जा सकें। तो आज ऑल इंडिया, आज वंस मोर सीजन 4 रजत अंक विशेष कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है स्टूडियो दूरदर्शन केंद्र में। टाइम है इसका 2:15 बजे और अगर आप इसमें जाना चाहें तो जरूर आप इसमें शामिल हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और इसके साथ आपको बता देते हैं कि साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी की महाराज की शहादत में श्री सुखमणि साहिब पाठों की श्रृंखला का आयोजन गुरुद्वारा आलमबाग में होने को है 4:00 बजे से।
2: जी, और आर्ट ऑफ लिविंग स्टेट ब्यूरो कम्युनिकेशन उत्तर प्रदेश की ओर से भजन संध्या का आयोजन हो रहा है गांधी भवन कैसरबाग में 6:00 बजे। तो आप इसमें भी अगर जाना चाहें तो ज़रूर जा सकते हैं, टाइमिंग शाम की है 6:00 बजे।
1: जी, और अगली अपडेट जो हम आपको देने जा रहे हैं वो ये है कि जो लखनऊ की ही देन है, कथक की हम बात कर रहे हैं, कथक नृत्य की बात कर रहे हैं, तो बिरजू महाराज कथक संस्थान की ओर से कथक संध्या युगल नृत्यांजलि राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में होने को है कैसरबाग 6:00 बजे से। अगर आप कथक डांस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप जरूर यहाँ शिरकत कर सकते हैं, 6:00 बजे का समय रहेगा।
2: बिल्कुल, और बहुत सारे प्रोग्राम्स आज हमारे शहर लखनऊ में आयोजित हो रहे हैं, तो इनमें से एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सा प्रोग्राम है जिसमें आप जाना चाहें तो ज़रूर जा सकते हैं।

0: और रतन आपको पता है बहुत देर से हमारे जितने भी लिसनर से वेट कर रहे हैं कि भाई हमने मेल भेजा था वो कहाँ है और सुनाई नहीं पड़ा।
1: हाँ पता नहीं लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल आप ऐसा मत सोचिए, हम जरूर पढ़ेंगे और उनको शामिल भी करेंगे। हाँ, जितनी मेहनत से आप उन मेल्स को लिखते हैं हमें पूरा अंदाजा है कि आप बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं। और पहली मेल आज किसकी है?
0: राजेश वर्मा जी ने लिखा है कि तब तक उन्होंने मुद्दा नहीं सुना था तो उन्होंने मुद्दा पूछा था, अब उनको मुद्दा भी पता लग गया। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा जी ने अपने मेल में लिखा था कि मुद्दा क्या है, लेकिन अब उनको मेल में पता चल गया होगा आज का मुद्दा क्या है। आपको मेल करने के लिए बहुत शुक्रिया राजेश।
1: मोनू सेठ साहब की मेल हम तक पहुंची है, कह रहे हैं रात में दोस्त की बारात में थे इसलिए देरी से जुड़ पाया हूं, लेकिन सुबह दिल कह रहा था कि RR यानी कि R² आ जाएंगे और धमाल मचा कर जाएंगे। क्या अंदाजा है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मोनू भाई। और अगली मेल किन की?
0: तालिबन साली जी ने लिखा है राजा कटरा बाराबंकी से, गुड मॉर्निंग RR² वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी तालिब साहब।
1: आपको भी। और अगली मेल हमारे पास सुनील कुमार साहब की है, भंडारे के द्वारा फैलाई गई अव्यवस्था के बारे में कुछ लिखते हैं और गुड मॉर्निंग हमको और आपको भी कह रहे हैं, तो आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सुनील कुमार साहब। व्यक्तिगत रूप से मुझे भंडारे की व्यवस्था पसंद नहीं, ऐसा का कहना है। लोग अपने अहंकार की पुष्टि नकल और दिखावे करके भंडारे की व्यवस्था करते हैं, हनुमान जी की भक्ति ध्यान साधना के लिए नहीं, ये इनका कहना है। बहुत बड़ी अव्यवस्था फैलती है, ट्रैफिक जाम लगता है, गंदगी फैलती है, मैं कभी भंडारा खाने नहीं जाता, लखनऊ के अतिरिक्त कहीं भी ऐसा नहीं होता, जो मुझसे सहमत नहीं है क्षमा प्रार्थी हूँ, सुनील प्रांजल विकास नगर लखनऊ। तो सुनील जी मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए जो आपने कहा कि ये भक्ति नहीं है, तो देखिए भक्ति का अपना प्रस्तुत करने का या दिखाने का या उसे जाहिर करने का एक तरीका होता है, और लोग अगर भंडारे लगाते हैं तो उनमें उनकी कहीं ना कहीं भक्ति ज़रूर होती है। और जब अगर अव्यवस्था की आप बात करते हैं तो अव्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ भंडारा आयोजित करने वाले लोगों की ही नहीं है, हम लोग भी उसमें शामिल हैं। और अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा लें, क्योंकि जो भंडारा लगाते हैं वो तो नियम कानून

0: उनको हर तरह से बताए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले विकास जी भी हमसे जुड़े और उन्होंने भी बताया कि किस तरह से हमने व्यवस्था करवा रखी है और उनको किस तरह से हमने आदेश पारित करवा रखे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है। लेकिन हमें भी इन बातों का ध्यान रखना होगा कि अगर हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो उसके बाद उससे जो हमें खाली पत्तल हमारे हाथ में आते हैं या फिर ग्लासेस आते हैं या फिर दोने आते हैं उनको हमें उसकी उचित स्थान पर हमें फेंकना है, ना कि हम कार में बैठे हुए हैं और हमने ग्लास पिया और उसको सड़क पर ही डाल दिया। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम सब की, हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं। तो इसलिए अगर कुछ अच्छी चीज़ होती है तो हमें उसको पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी ये मेल हम तक पहुंची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये आपकी व्यक्तिगत राय है ये भी हम समझ रहे हैं।
1: और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो मदन गोपाल गुप्ता गोमती नगर से इनका मेल आ गया है। लिखते हैं कि नमस्कार, आज आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा मुद्दा रखा। और जब मैं ऐसे स्थान पर जाता हूं तो प्रसाद खाने के बाद देखा हूं ऐसा कि आयोजकों द्वारा दोना पत्तल पूरा दान रखा जाता है और रखा गया नहीं, जब नहीं मिलता तो कोने में डाल दे। अच्छा, इनका कहना है कि जब आयोजक हैं जो उनके द्वारा जब हमको कूड़ा दान या कुछ साइड में रखने की जगह नहीं मिलती तो मैं कोने में डाल देता हूं। और जबकि इसका प्रचार प्रसार हुआ है, एक बार मन में ज़रूर आता है कि कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। और मेरा सभी से अनुरोध है कि जैसे हम लोग अपने घरों को साफ रखते हैं इसी तरीके से सार्वजनिक स्थान को भी हम साफ रखें, ऐसा मदन गोपाल गुप्ता जी ने अपने विचार रखे हैं कि घर की तरह हम आगे भी सफाई रखें।
0: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। घनश्याम सिंह जी की भी मेल हम तक पहुंची है, एडवोकेट घनश्याम सिंह, नारायण नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ। प्रिय रतन भैया जी, मैडम रत्ना शुक्ला जी, आपको श्रद्धापूर्वक शुभ प्रभात। आज
1: आपको बहुत शुभ प्रभात।
0: आज आप लोग कैसे हैं? तो हम दोनों बहुत अच्छे हैं। मैडम रत्ना जी ने तो बिल्कुल सही कहा रतन भैया जी की, श्रोताओं की हृदय की बात सही सही जान जाते हैं रतन भैया जी के हृदय ईश्वर हृदय में ईश्वर रहते हैं। थैंक यू सो मच कि आप इतना हमें प्यार करते हैं। FM रेनबो धड़कन लखनऊ, कल मेरे घर के पास सफाई हम लोग भंडारा लगा हुआ था और उसमें ये सफाई खुद कर रहे थे लोग, खुद पत्ते दोने और डिस्पोजल गिलास साफ कर रहे थे। प्रसाद लेने वालों को संदेश दिया जा रहा था कि प्रसाद खाकर पत्ते गिलास डस्टबिन में ही डालें और अधिकांश लोगों ने ऐसा ही किया और उतना ही प्रसाद दिया जितना उन्हें खाना चाहिए था। लेकिन कुछ गरीब बच्चे पॉलिथीन में थोड़ा भरकर ले जा रहे थे, क्योंकि ये भी एक पुण्य का काम है और ट्रैफिक का विशेष प्रबंध भी किया गया था। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आज बात कर रहे थे रत्ना, है ना, बिल्कुल वही बात यहाँ पे निकल के आई।
1: ये भी कुछ ही देखने को लोगों के सामने नजर में आया कि बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं इस आयोजन में, लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया, पूरा योगदान दिया है और कार्यक्रम को सफल बनाने में और साथ में सफाई रखने में अपना पूरा पूरा योगदान दिया, जैसा कि उन्होंने लिखा। और राजेश वर्मा जी ने मुद्दे को सुनने के बाद लिखा है, भंडारा या प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोना पत्तल को इधर उधर ना फेंके क्योंकि इससे गंदगी फैलती है और स्वच्छता के नियम भी टूटते हैं। आयोजकों द्वारा निर्धारित स्थान पर ही दोना पत्तल फेंके। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कीर्ति कार्तिक आर्यन वर्मा, आप सभी का, पूरे परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया ये सुझाव देने के लिए।
0: ताले बंसारी साहब की मेल हम तक पहुंची है, राजा कटरा बाराबंकी से, इन्होंने गुड मॉर्निंग भेजा है, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रोशनी रावत जी की भी मेल हम तक पहुंची है, गुड मॉर्निंग रतन सर जी, रत्ना मैम जी, आप दोनों कैसे हैं? तो कैसे हैं रत्ना जी आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं और श्रोताओं के साथ जुड़ के कौन भला अच्छा नहीं रह सकता, बल्कि हम लोग दोगुने अच्छे हो जाते हैं।
0: और ये कह रहे हैं कि आज सुगंध माटी के प्रोग्राम का इंतजार ये कर रही है, प्रोग्राम बहुत शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है, गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरा नाम रोशनी रावत है, ग्राम पोस्ट बमाना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से ये हमें मेल कर रही हैं, रहने वाली वहां की, लेकिन ये सुन हमें इस वक्त चंडीगढ़ में रही हैं। मुद्दे की बात पे ये कह रही हैं कि जहां पर भंडारा लगा होता है उसके पास में डस्टबिन भी होना जरूरी है। प्रसाद खाने के बाद पत्तल और गिलास को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इससे आसपास गंदगी फैलती है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम सब की भी है ना रोशनी जी, कि ताकि जी। हम सब अगर कोई चीज़ खाते हैं या लेते हैं तो उसको हम उसके उचित स्थान पे, उसका जो यूज्ड पैकेट है उसको हम यूज्ड जो उसका स्थान है वहाँ पे ही उसको हम फेंकें ताकि गंदगी ना फैले और सामान्य रूप से हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस में चलती रहे।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और ब्रिजेश सिंह दीपू इटा हुआ कैसरगंज बहराई से मेल आ गया, गुड मॉर्निंग मेरे फेवरेट रतन सर जी, आपको पहले बोलिए गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए।
1: और गुड मॉर्निंग डियर रत्ना मैम जी, आपको भी बहुत बहुत शुभ दिन विरजीत सिंह जी। और मुद्दा है कि कल के भंडारे में हमने प्रसाद ग्रहण किया और बाद में जो दोना मिलता है उसके लिए हमें डिस्पोजल कहाँ पर इसको फेंकें, डस्टबिन नहीं थी वहाँ पर, ऐसा जवाब में पता चला तो हमने कहा इसको कहाँ फेंकें, तो कहीं भी फेंक दो। और अभी सोचिए इतना बड़ा भंडारा का आयोजन किया गया, एक डस्टबिन वहाँ नहीं रख सकते थे। हमने कहा बहुत गलत बात है, बताइए इससे कितनी गंदगी दूर तक फैलेगी, इधर उधर जाएगी, जिम्मेदार कौन होगा? तो जिम्मेदार होंगे हम ही सब, तो प्लीज़

0: नारा करें, लेकिन साफ सफाई का भी उतना ध्यान रखें क्योंकि देश हमारा है, हम सब की जिम्मेदारी है। फिर हमने उसको डिग्गी में डाल लिया और बाइक के से घर जाकर उसको अपने कूड़ेदान में डाला।
1: ये काम वाकई में बहुत अच्छा किया और ये इससे एक बहुत अच्छा संदेश भी हमारे लिसनर्स के बीच में जाता है कि देखिए अगर आपको कहीं कोई कूड़ादान नहीं मिलता तो आप शिकायत मत करिए कि आपको कूड़ादान नहीं दिया गया वहां पे। आप उसको अपने पास रख सकते हैं और जहां भी आपको कूड़ादान ऐसा दिखता है आप उसको वहां पे डाल सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है।
0: इतने बड़े आयोजन में कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी कमी रह गई होगी।
1: जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीजें व्यवस्था करनी पड़ती है और उन्हीं व्यवस्था में से अगर कुछ कमी रह जाए तो उनको हम पूरा कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाकर। तो चलिए इतनी ढेर सारी बातों के बाद एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं आपके अपने प्यारे से शो गुड मॉर्निंग
0: लखनऊ में।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है
1: भाई। अब मैच का क्या होगा?
0: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
2: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
3: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
2: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 444444।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
7: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।
8: वक्त हो गया है 9:43 और इस वक्त हम आपके वो जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं
9: जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश सर, जो कि हमें मौसम की तरोताजा जानकारी देने वाले हैं। चलिए करते हैं उनका स्वागत। गुड मॉर्निंग लखनऊ पर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
10: जी गुड मॉर्निंग।
8: नमस्कार सर।
10: जी गुड मॉर्निंग।
9: जी सर, आज लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों का मौसम किस तरह का रहने वाला है प्लीज बताइए।
10: मौसम की बात करें तो लखनऊ तो ऐसे साफ रहेगा, गर्मी का एहसास रहेगा। बाकी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसा की एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही के साथ कुछ हल्की फुल्की बारिश की संभावना आज के लिए है। और बीच में जब ये बारिश का सिलसिला होगा तो उसमें तेज हवाओं का भी चलन हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वही अगर हम सेंट्रल पार्ट ऑफ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और धूप खिलेगी और थोड़ा दिन में गर्मी का एहसास रहेगा। और जैसा कि थोड़ा सा उमस बढ़ा हुआ है, इसके वजह से थोड़ा सा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उमस वाली गर्मी
8: जी
10: तो रह सकती है। और यहाँ से धीरे धीरे तापमान में थोड़ा सा बढ़ोतरी आने वाले दिनों में रहेगा, तो थोड़ा सा गर्मी का एहसास रहेगा लेकिन कोई एक्सट्रीम टाइप का नहीं रहेगा।
9: एक्सट्रीम गर्मी का एहसास नहीं होगा हमें,
10: लेकिन गर्मी का एहसास बरकरार
9: रहेगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
10: ओके धन्यवाद।
9: दोस्तों दानिश सर ने मौसम की पूरी जानकारी दे दी है, आप भी मौसम का आनंद लीजिए। और गर्मी में गर्मी का आनंद नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा।
8: लेकिन ये एक अच्छी सी बात है कि बहुत ज्यादा जो है गर्मी नहीं पड़ने वाली है, बस सामान्य सा मौसम रहेगा। क्योंकि मई है तो थोड़ी बहुत गर्मी रहेगी लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रहेगी, हमारे लिए थोड़ी सी राहत वाली बात है।
9: बिल्कुल, 9:44 का समय हो चुका है, बहुत सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों आज 13 मई का दिन है, बहुत खास आज का ये दिन है और अपने आप में बहुत महत्व हो जाता है इस दिन का, क्योंकि आज हम कई ऐसे दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं जिनको सुनकर और जानकर भी आपको खुशी होगी, अच्छा लगेगा। हमें भी जब हमने पढ़ा तो हमें अच्छा लगा, सुना हमने तो भी हमें बड़ा अच्छा लगा। और अब रत्ना आपको बताने वाली कि कौन सा दिवस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।
8: हम आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें से कई दिवस हैं, उनमें से हम आपको जो बताने जो जा रहे हैं वो है मई मंथ के दूसरे बुधवार को नेशनल रिसेप्शनिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि आज 13 मई को है।
9: जी,
8: किसी ऑफिस या संसार में या कंपनी में जैसे जगहों पर जब हम जाते हैं नरतन, तो अक्सर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो काफी पेशेंस के साथ और पॉजिटिविटी के साथ हमारे सामने होता है और उनसे हम कुछ जानकारी लेना चाहें वहां पर तो ले सकते हैं, नीडफुल जानकारी जो भी होती है
9: जी।
8: और ऑफिस में वो कॉल भी रिसीव करते हैं, बहुत ही बखूबी हमको किसी भी जानकारी से अवगत कराते हैं
9: जी।
8: तो जनाब इन्हीं रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू कहने का दिन, उनको ट्रीट देने का दिन, उनके काम को अप्रिशिएट करने का दिन और उनके दिन को कुछ खास बनाने के लिए ये रिसेप्शनिस्ट दिवस की बहुत बहुत उन सभी को बधाई।
9: जी हाँ दोस्तों, वाकई में अगर किसी संस्थान में या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे

0: अगर हम एंट्री करते हैं और वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति ना बैठा हो जो हमें पूरी जानकारी दे सके, हाँ, या फिर उस संस्थान के विषय में क्या कुछ खास है या वहाँ पे कौन कौन से ऑफिस हैं, वहाँ पे कौन व्यक्ति कहाँ पे बैठता है, इसकी जानकारी हमें नहीं होती, हाँ, और वो सारी जानकारी हमें इन रिसेप्शनिस्ट के माध्यम से ही मिलती है, हाँ, तो बहुत जिम्मेदारी भरा वाला ये कार्य है। और हमें जब किसी भी संस्थान में हम एंट्री करते हैं तो पहली झलक हमारी जो होती है इन्हीं रिसेप्शनिस्ट से ही मुलाकातें हमारी होती है, और आज हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और साथ में आज एक और विशेष दिन है जिसकी हम बात करने वाले हैं, और चूंकि ये हमारे फेवरेट चीज है और इसे जुड़ा हुआ है तो हम इसे और भी खुशी के साथ बता रहे हैं।
1: मेरी भी फेवरेट, आपको सही बताऊं दादा, हम जब आ रहे थे सुबह तो मैंने देखा कि रास्ते में लोग बेल का शरबत पी रहे हैं।
0: क्या बात।
1: हाँ, और बेल के शरबत के साथ साथ कौन सा, साथ में लौकी, चुकंदर और इस तरह की जो सब्जियां हैं उनका भी, हाँ, मिक्स जूस, हाँ,
0: क्या बात,
1: ये भी इसका सेवन कर रहे थे। मैंने सोचा अरे सुबह सुबह लोग तो शायद लोग अपनी कसरत वगैरह करके आए थे और वहां पर खड़े होके एक नहीं दो तीन जगह हमें देखने को मिला ही,
0: और शायद आज इसलिए भी पी रहे होंगे क्योंकि आज राष्ट्रीय फल रस दिवस है।
1: आहा, आहा, आहा।

0: साथ।
1: हाँ, और बेल के शरबत के साथ साथ कौन सा, साथ में लौकी, चुकंदर और इस तरह की जो सब्जियां हैं उनका
0: juice.
1: भी हाँ, मिक्स जूस, हाँ
0: क्या बात?
1: ये भी इसका सेवन करे थे। मैंने सोचा अरे सुबह सुबह लोग तो शायद लोग अपनी कसरत वगैरह करके आए थे और वहां पर खड़े होके एक नहीं दो तीन जगह हमें देखने को मिला ही,
0: और शायद आज इसलिए भी पी रहे होंगे क्योंकि आज राष्ट्रीय फल रस दिवस है। जी हाँ, क्योंकि आज राष्ट्रीय फल रस दिवस है,
1: यानी कि नेशनल फ्रूट कॉकटेल डे।
0: क्या बात, और वाकई में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। हाँ। और हर साल यानी प्रत्येक वर्ष ये 13 मई यानी आज के दिन मनाया जाता है, और ये दिन ताजे और स्वादिष्ट फलों के मिश्रण का आनंद लेने और उनके स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। कितना अच्छा लगता है जब इस तरह की चीजें सामने आती है, उनकी विषय में जानकारी मिलती है।
1: सुबह से ये लोगों ने मनाना शुरू कर दिया, जैसे कि मैंने देखा, जाके यहाँ से वापस हम भी ये दिन मनाएंगे।
0: बिल्कुल मनाएंगे, और फलों का रस, मैं आपको बताया रत्ना, फलों के रस में विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होते हैं ये रस, जो शरीर को ऊर्जा और ताजगी प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: गर्मियों के मौसम में ये विशेष रूप से लोकप्रिय होते हैं। आज के मौसम में तो वाकई में गर्मी के मौसम में ये बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि ये शरीर को ठंडक और पोषण दोनों देते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर आप किसी भी तरह का फ्रूट जूस उसका कॉकटेल बना के पीना चाहते हैं तो उसको अगर आप उसके टेस्ट को थोड़ा एनहेंस करना चाहते हैं तो उस पे आप ऊपर से चाट मसाला डाल सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, पिसा जीरा, या नींबू का रस डाल सकते हैं उसके साथ। आप
0: बहुत ज्यादा बता दिया आपने, मुंह में पानी आ रहा है।
1: मैं देख रही हूँ आइसक्रीम की टॉपिंग जो मेरी फेवरेट है वो भी आप डाल सकते हैं, शहद उसमें मिक्स कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें आप उसको टेस्ट को एनहेंस करने के लिए बना सकते हैं।
0: तो वाकई में ये जो फ्रूट जूस है ये वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, और इनका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और जब इसमें अगर तड़का दे दिया जाए, जैसा कि अभी रत्ना ने आपको बताया, इतनी सारी चीजें इस पे ऊपर इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए मिला दी जाए, तो वाकई में ये बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। और वाकई में आज जरूर आप इन जूस को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा और जरूर पीजिएगा, हमारी तरफ से जरूर एक पीजिएगा।
1: तो चलिए हम सबको कहते हैं सो हैप्पी नेशनल फ्रूट कॉकटेल डे टू यू ऑल, है ना। उसके बाद अब एक प्यारे से ट्रैक का नंबर आ गया।
0: बिल्कुल।

0: जी हाँ दोस्तों, 9:54 का समय हो चुका है और अगर आज आपका जन्मदिन है तो आज आपके जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ।
1: बिल्कुल। और बॉलीवुड में कुछ आज पार्टी शार्टी का माहौल चल रहा है, चूंकि एक नहीं दो दो हस्तियों का बर्थडे है। तो बर्थडे की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बर्थडे होता है आज 13 मई को किनका, एक्ट्रेस सनी लियोनी जी का। और इनके साथ साथ जैसे इन्होंने फिल्म जिस्म 2 से और अपना इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, उसके बाद रागनी MMS 2 और कुछ और आइटम सॉन्ग्स भी इन्होंने किए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बेनी दयाल जी का, अच्छे सिंगर है ना
0: जी। हाँ दोस्तों, बेनी दयाल जी वाकई में बहुत अच्छे सिंगर हैं। इनका जन्म भी आज के दिन केरल में हुआ और 1984 में ये जन्मे और इन्होंने कई भाषाओं में गाने भी गाए हैं। बेनी सॉन्ग्स, बेनी ने कई गाने गाए हैं और आज बेनी के जन्मदिन पर हम उन्हें बहुत ढेर सारी शुभकामना और बधाइयाँ देते हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करते हैं। तो 9:55 का
1: जिन जगह घरों में आज बर्थडे की बिल्कुल पुरजोर जोश के साथ तैयारी हो रही है ना, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ।
0: लेकिन इससे पहले बहुत सारी मेल्स भी आपके हम तक पहुंची हैं, उनको भी शामिल करना बहुत जरूरी है। तो हम कुछ मेल्स को शामिल करते हैं और उसके बाद एक छोटा सा सॉन्ग और उसके बाद हम लेंगे आपसे अलविदा। लेकिन हाँ, आपकी मेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सावित्री देवी की मेल हम आप तक पहुंच गई है और ये क्या कह रही हैं कि मुद्दे पर एक कहना है कि हमें प्रसाद खाने के बाद दोना पत्तल निर्धारित जगह पर ही डालना चाहिए, हम ऐसा हमेशा ही करते हैं। कई लोग इसको देखकर प्रेरित होते हैं और वो भी ऐसा ही करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया
1: जावेद अख्तर भी जी, इन्हें बहुत अच्छा समय लिख दिया और हम दोनों को ने जो मुद्दा दिया उस पर कहना चाहते हैं, किसी हमको किसी भी भंडारे में जा नहीं पाए, फिर भी मेरा ये कहना है कि चाहे भंडारे हो या शादी हो या पार्टी हो, साफ सफाई का पूरा ध्यान हमें रखना चाहिए और भारतीय नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए। तो रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से इन्होंने, जावेद अख्तर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन वर्मा जी का भी मेल आ गया, इसके साथ नाम जल्दी जल्दी ले लीजिए क्योंकि
0: साहब की मेल हमारे पास आई है और ये कह रहे हैं कि भंडारे में तो नहीं गया था, पहले भंडारे पत्तल तो वैसे ही फेंकते ही हैं, पत्तलों में भी प्रसाद फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना खाने की ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए और जहां पर ज़रूरत उसकी है उसी जगह उसको फेंकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नीलू यादव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, राधे राधे। और इन्होंने कहा है कि बड़े मंगल के भंडारे में उपयोग किए गए दोना पत्तल उपयोग और निपटान बहुत ही जिम्मेदारी के साथ किया जाता है क्योंकि प्रसाद का हिस्सा होता है वगैरह, इन

0: गाय वगैरह को खिला देते हैं। स्वच्छता केवल घर तक सीमित नहीं, मन के विचारों में भी शुद्धि होनी चाहिए। साफ सुथरा सकारात्मकता और खुशी मानसिक शांति प्रदान करती है। नीलू यादव जी, आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: और बाबू अंसारी जी की मेल हम तक बाराबंकी से पहुंची है, इन्होंने प्रोग्राम की तारीफ की है और गुड मॉर्निंग भेजा है, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नीरज कुमार की भी मेल हमारे पास आई है, रतन सर जी आप माटी की सुगंध कार्यक्रम में कब आ रहे हैं, आपका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। रत्ना मैम जी आप भी बहुत अच्छा माटी की सुगंध कार्यक्रम प्रस्तुत अच्छा करती हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में रत्ना आपके पास आने वाली हैं माटी का सुगंध लेके। और राममोहन गुप्ता जी की भी कुछ पंक्तियां हमारे पास पहुंची हैं, प्रभु वंदन भंडारे शरबत वितरण में रखे, रखते ध्यान कहीं किसी को भी ना हो असुविधा सड़क जाम, विशेषकर साफ सफाई बच्चों बुजुर्गों का ध्यान रखते हम सभी की संस्था JCI महान, यही नहीं पूरे नियम संयम सद्भाव संगम आयोजन करते हैं, रखते नागरिक सुविधा संरक्षा का ध्यान, आयोजन दौरान और उपरांत स्वच्छता अभियान निरंतर रखते जारी की ना हो पाए कहीं व्यवधान, ऐसा नहीं कि अब ये पहले ही सदा रहा है ध्यान, भंडारे प्रसाद जल शरबत चाय वितरण के दौरान, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंची हैं, और वारिस अली जी की भी मेल पहुंची, नीरज जी की भी मेल पहुंची है, मोनू सेठ की दोबारा मेल पहुंची, आंचल सेठ, सोनू परवाना, गीता सेठ और परवीन जी की मेल बहुत पहुंची है हमारे पास, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कि आपने
0: धन्यवाद करते हैं इन सभी का,
1: इतनी प्यारी प्यारी मेल्स हम तक पहुँचाई। और इसी अंतिम गीत के साथ आज की गुड मॉर्निंग लखनऊ से अब अपने दोस्त रतन को दीजिए जाने की अनुमति, अगले कुछ घंटे आपके साथ रहने वाली है रत्ना शुक्ला,
0: तो मैं मिलती हूँ अगले प्रोग्राम में आपसे, लेकिन आप तब तक सुनते रहिए इस गाने को और बस जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ।

नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का अचानक निधन अत्यंत दुखद है। भारत कल से शुरू होने वाले 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर 5% और प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। गोरखपुर के रामगढ़ताल में आज से यूपी सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों में शामिल 275 खिलाड़ी अस्मिता नेशनल महिला

रोइंग लीग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी. लीग में राज्य सीधे भाग लेने के बजाय जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश से मेजबान जिले की टीम गोरखपुर क्वींस अपनी चुनौती पेश करेगी. मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है. विभाग ने पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है. इस बीच प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. इस बुलेटिन में इतना ही. अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित होगा. आप सुनते रहिए FM Rainbow.

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत के मुंह में
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी,
4: चलते रहे इश्क भी बढ़ जाते
5: हैं। हमारी और आपकी साझा कहानी,
3: आपके अपने रेनबो की जबानी,
4: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
6: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
7: ये प्रूफ
8: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
3: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

स्नेह भरा नमस्कार, राम राम भाई बहनी, कैसन हो आप सब लोगों का स्वागत है आप सब श्रोतन के हमारे खास कार्यक्रम सुगंध मिट्टी के में। अगर बात की जाए सुगंध माटी की कार्यक्रम के, सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर यू कार्यक्रम प्रस्तुत होत है। लोक संगीत जौन हमारा अनमोल धरोहर बा, एक ऐसन बगिया आए जहाँ रंग बिरंगे फूल होवत हैं। कतहूँ पहाड़न की ठंडी नदी झरना, कहूँ पंजाब की लोक संस्कृति की धुन, कहूँ राजस्थान का एक घूमर, अलग अलग बोलियन के लोकगीत अपन सुगंध बिखेरिए तो ये सब बढ़िया बा। और ये सब के पहले हम का करे जा रहे हैं जानते हो, हम तोरे सबके लोग के बीच में गौरी के ललनवा का सुमरन कर ले तनिक हम सब मिल के, है ना? तो चलो यूँ करा जाए।

0: यू हमार भी कामना के सभी के अंगना में गौरी के ललनवा का आशीर्वाद बना रहे। और जब यू के पहले हम ले थे ये छोटा सा का कहे थे कमर्शियल ब्रेक कहे थे का कहे थे, तो चलो यू आप सब लोगों तक पहुंचाई दी।
1: में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में पीसीओडी और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
2: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: तो भैया कार्यक्रम कौन चल रहा है, कार्यक्रम में चले चल के साथ साथ कितने लोग अभी भी जुड़ गए हैं 100.7 FM रेनबो पे, वो एक बता दें कि कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आ रहा है सुगंध माटी की। और अगर हम बात करें कल के, जो कल के दिन हमारा बीतवा, उसमें आस्था और श्रद्धा का संगम जैके कहते हैं बड़ा मंगल है बुढ़वा मंगल, कल दियाखा काम का मिला। शहर लखनऊ की संस्कृति में सब कहूँ भजन भंडारा पूजन, हनुमान जी के गीत भजन सब कहे दिल के लुभावत रहे। और लुभावत रहे तो बस ऐसे मन करत रहा कि लाओ सुनन जय भक्ति में लीन रहे, ऐसा कुछ गीत हम चाहते आप सभी लोगों को सुनवाए के। तो चलो पहले ये गीत

जय हो वीर हनुमान की। और आगे बढ़ाते तो कहा था कि बचपन के दिन हम वापस नहीं ला सकते हैं, कहे से कि एक बार जो बचपन बीत गवा हुई के हम याद कर सके थे, वही की चीज़ें याद करके मन का खुश कर सके थे, लेकिन वही बचपन वापस नहीं आवाते है ना। तो हम एक ऐसा गीत आपके सुनवाए जा रहे हैं जिसमें बचपन की बहुत सारी लड़के वाके बातचीत है, और धुन के साथ जब सुना जाता है तो गीत में का आनंद आवत है। तो बचपन में कौन कौन खेल खेलत रहे हैं, कौन कौन चीज़ सैतानी नटखट शरारत करे थे, ये सब सुनो ये गीत में, तो हो सकता है हमारा अर्थ रहे तुम्हों के अच्छा लगे।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम चलते है सुगंध माटी की यही माँ आपका हम सफर आपके दोस्त रत्ना शुक्ला है आप सभी लोगन के साथ और तनिक चलते हैं पहाड़ की ओरिया ठीक है पहाड़ों पर अल्मोड़े की बाल मिठाई नंदा देवी के दर्शन ठंडे पहाड़ों की भीनी सुगंध और हसीन वादियों के बीच दुई दिलन की आवाज़ दुई दिल में काका चहक उठत है वो पहाड़ों के बीच में कत्ती गीत यू नीक लागत है तो चलो पहाड़ों की मीठी धुन सुना जाए

यूं तो रहा बहुत नीक नीक पहाड़ी गीत। अब एक मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। यू मेल आईडी पे आप मेल कर सकत हो, बता सकत हो कि कैसा लागत है आपको यू कार्यक्रम, जेकर नाम है सुगंध माटी की। अनेकता में एकता जो बात कही जाती है ना, तो उसको हम सार्थक करते हुए उसके अंतर्गत बहुत सारे गीत आपको तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कार्यक्रम सुगंध माटी की में, जो कि आता है सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। और इसी प्रोग्राम में बहुत सारे गीत हम आपको सुनवा चुके हैं, बहुत सारे सुनवाने को भी हैं, क्योंकि गीतों का तो बिल्कुल क्या कहते हैं कि हमारे पास खजाना है, तो उन खजाने में से कुछ गीत हम आपके बीच में परोस रहे हैं। और उन्हीं गीतों में एक गीत की बारी है जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं।

और गीत गवने के साथ साथ एक पते की बात हमका पता लगी है। कल हमार पुत्तन भैया गांव से आए रहे। हम कहा भैया कैसे आना हुआ शहर मा, तो बताइन या शहर मा कौनो सामाजिक संस्था बाटे। वही ग्रामीण अंचल के लड़कन बिटेवा के प्रतिभाओं के तराशे निखारे खातिर शहर में एक संस्था है जौन सामाजिक संस्था में सभी का जोड़ती है और कहते हैं जौन जौन ऐसा प्रतिभा है जौन जौन ऐसे लड़कन बिटेवा हैं गांव ते रहते हैं वही सब का स्वागत है। वही शहर आके कछु न कछु अपन कला सीख सकते हैं तो बच्चन के उज्जवल भविष्य बनावे के कामना से ऐसन व्यवस्था के आगे बढ़ावते हमारे पुत्तन भैया। तो सुनो पंचन, अब गावन में कौनो होनहार आपन कौनो प्रतिभा कला के जरूर पहचान सकते हैं। काहे से कि नीक नीक सामाजिक संस्था जौन शहर में बहुत सारी हैं ऐसे वही से जुड़ के उमा में अपना संस्कारण के आदान प्रदान कर सकते हैं और यू सब करके गीत के आनंद गवनई भी जो हम सुनवा रहे हैं कार्यक्रम सुगंध माटी की माँ वही का आनंद लिए जाओ। और यू एक पते की बात हम तुमको बताए देने तो एक ध्यान रखो और आगे बढ़े खातिन शहर की संस्थाओं से जुड़ सकते हो। बहुत कुछ आजकल समाज में आपके खातिर आपके आगे बढ़ावा देके देवी के खातिर।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
2: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
1: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
2: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
1: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
2: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
1: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
2: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
3: लखनऊ की
2: 100.7 FM रेनबो।
4: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: धड़कन लखनऊ की जी आप सुनत हो सुगंध माटी की कार्यक्रम 100.7 FM रेनबो पर। हम हैं ना आपके साथ, आपके दोस्त, आपकी सखी, आपकी हम सफर रत्ना शुक्ला आप सभी लोगों के साथ। और सुगंध माटी की माँ हम मेल करें, मेल का हम स्वागत करते थे, लेकिन है विकास जी। हेलो मैम, चरण स्पर्श में विकास, गांव सली तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से आपका कार्यक्रम सुनना हुआ। कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब चल रहा है मैम जी, और साथ में इतना अच्छा सा आपने कच्चे आम से लदा हुआ ये बिरवा जो है हमारे बीच में भेज दिया है फोटो के जरिए। तो बस आपने तो दावत दे दी कि बस हम लोग भी जिला उन्नाव में आपके बगीचे में आए और वहाँ पर आम के बगीचे में आम का जब पक जाए तो उनको खा के उनका आनंद उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास जी। प्रवीण श्रीमाली जी का भी मेल आया लेकिन उन्होंने कार्यक्रम से संबंधित कुछ भी नहीं लिखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। मिसेस गीता सेठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम हमारे तरफ से। गांव में ई पर कार्यक्रम का बहुत अधिक सुना जाते हैं, माटी की सुगंध में सभी लोग जुड़े हैं, ये बहुत नीक बात कह दी आप गीता सेठ जी, FM दीवानी। और ई कार्यक्रम बहुत भावत है हम सभी लोगों का। गांव में इस समय बहुत व्यवस्था है, काहे से कि सब क्यों शादी विवाह में बिजी हैं, लेकिन रेडियो सुने का बेचैन रहते काहे से कि कार्यक्रम जो उनावत है सुगंध माटी की इवन सब ये लोगों का मन लागत है। तो गीता सेठ जी FM दीवानी आपका बहुत तो स्वागत के साथ साथ हम धन्यवाद करी थे, काहे से कि आप गांव के सभी लोगों का जोड़त हो ये कार्यक्रम और यू चैनल से जोड़त हो और सब मिल के आनंद उठावत हो। तो ऐसे आनंद उठावत रहो, ऐसे ही प्यार इसने लुटावत रहो FM रेनबो के संगे। ग्राम नागर कोहा कोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुना देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्या।

यू मेल तो कधे ने लेकिन कार्यक्रम से संबंधित कछु नहीं लिखिन है तो झग्गा राम साहू जी आपहु के धन्यवाद हम करित है। भैया मोनू सेठ आए गए हैं कार्यक्रम मार रत्ना बहन जी को प्रणाम सुगंध माटी के कार्यक्रम में आपका स्वागत बा। ये प्रोग्राम खातिर हमारे नानी जी बहुत उत्सुक रहते हैं हम जानते हैं आपन आपके नानी बहुत करेजा से सुना थी ये कार्यक्रम का और आज हमारे नानी जी कटहल की सब्जी अरे वाह का कहे कटहली की सब्जी कटहल की सब्जी और बेसन की रोटी बनाई है और हम हूँ आज नानी के हाथे से बना बेसन की रोटी खावे साथे साथ ही प्रोग्राम सुनत रहे तो कटहल और बेसन की रोटी का ऐसा मेल जोल है कि का कही कि बस साथ में हरी चटनी और जोड़ ले अगर हो सके तो बस खाते बखत हमका तनिक रत्ना शुक्ला की याद कर ले कहे से कि हम बहू के जमान में तनिक स्वाद आ जाएगा है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद नानी के हमारे प्रणाम कहियो और यूं ही आपन प्यार जोड़े रहियो एफएम रेनबो के संग मोनू सेठ भैया। आंचल शेठ खालिसपुर से इनका मेल आ गया। नमस्ते दीदी सुगंध माटी में सुगंध ही सुगंध खुशबू बिखेर देवो गवनई बहुत नीक बजावत हो सभी तारीफ खूब करत बा और हमरे सास ससुर भी कार्यक्रम के दीवाने हो गए। अरे वाह सास ससुर भी कार्यक्रम सुनने लगे और लड़कैया गाना बहुत सुंदर लग रहा है। आंचल शेठ खालिसपुर से लिखिन है तो आपन जो पिता माता हैं जो कार्यक्रम सुनते हैं उन्हों के हमार पर नाम पहुंचा दे। आचल सेठ आप बहुत नियमित श्रोता हो एफएम रेनबो की तो आपहू के जरिए बहुत सारे लोग यू मेल सुनत हुई और बहुत सारे लोग जुड़े वाले भी हैं। कैसे कि 10:43 हुई गवा है कार्यक्रम सुगंध माटी के में आपकी सखी रत्ना शुक्ला आप सभी लोगों के साथ है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू परवाला मेल कर दी है माटी के सुगंध कार्यक्रम सभी तक आपन खुशबू भेज रहा है गाँव में दादी नानी चाची भौजी भैया दादा सबका बहुत नीक लाग रहा है। अत्ते लोगों का नाम जोड़ दी ये हुई हम चाहत रहे कि ये कार्यक्रम सब लोग सुने दादी नानी चाची भौजी भैया और भौजी ननद के रिश्ते के तनिक याद आ रहे। चलो आगे बात कही करब रत्ना महीने एकदम जबरदस्त चलत बा प्रोग्राम माटी की सुगंध सोनू परवाना मेल एक्सप्रेस अरिजीत सेठ सोनू परवाना आपहू के बहुत बहुत धन्यवाद सभी के जोड़ दियो और दादी नानी चाची भौजी की यू कार्यक्रम सुन के दिन भर बहुत अच्छा अच्छा बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बीतब यू हमका पूरा पूरा विश्वास है। तो सोनू परवाना जी आप आओगे बहुत बहुत धन्यवाद करी थे। जावेद अख्तर जी मेल कर दिन है ये लिखिन है कार्यक्रम सुगंध माटी की रत्ना दीदी आपकी गुड़ की जैसी मीठी आवाज में सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का भी हमें बेकरारी से इंतजार रहता है और गीत सोहर भारती है गीत बहुत ही पसंद आ रहे हैं रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से। जावेद अख्तर जी आप बराबर मेल करते रहते हैं और कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं ये आपकी बहुत खूबी है तो आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं। इन बातों के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक बहुत ही अच्छा सा बहुत ही नीक सा और कम सुनने को मिला था लेकिन यूँ तो संस्कृति से जुड़ा गीत है तो चलो पहले एक सुन लिया जाए उसके बाद हम एक बारे में बात करें ठीक है।

उतने गीत हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कार्यक्रम सुगंध माटी की जितना उसका समय उतने ही गीत हम आप तक पहुंचा पाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, ये गाना फिलहाल बिल्कुल क्यू करके रखा है और इसमें भी आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आने वाली है, कहाँ की, पंजाब की।

वाह, आप हम क्षेत्र के मिट्टी के महाक संस्कृति और अपनापन जौन हमारे लोकगीत की जान होते मानत हो कि नहीं बतावत है। राजस्थान के संस्कृति और यहाँ के मेहमान नवाजी जबरदस्त होवत है। वहां का पारंपरिक घूमर नृत्य दुनिया में अलग ही रंग बिखेरे थे, हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर देता है। ये घूमर नृत्य एक विशेष शैली का घूमर नृत्य होता है और इसमें कई बार घूमकर चक्कर लगाकर खास घूमर डांस किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और देखने के साथ साथ इस घूमर डांस को करने में भी बहुत आनंद आता है। अब इसके बाद थोड़ा सा रंग बदलते हैं और ये गीत आप तक पहुंचाते हैं। 10:52 हो गए, बहुत ही कम समय है, बहुत

बखर बिल्कुल इजाजत नहीं देवत है कि हम सुगंध माटी की कार्यक्रम को बहुत ज्यादा बढ़ा सके। कहे से कि 10:55 हुई गवा है तो रचनात्मकता से भरपूर माटी के सुगंध चहु दिशा में फैले ऐसा उद्देश्य आप सब मिलजुल कर अपन संस्कृति के अपन संस्कार के अपन माटी के सुगंध का यार वार बढ़ावत रहो यू कामना यू आशा के साथ आपके दोस्त आपके हम सफर रत्ना शुक्ला आपसे लेते हैं अनुमति। तो बने रहो 107.7 FM रेनबो के साथ सुनत रहो जुड़े रहो।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। रविवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक होगी। बैठक वैश्विक परिस्थितियों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद मुख्यमंत्री ने कल ही मंत्रियों के काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कल हुई बैठक में उन्होंने ईंधन की खपत घटाने, सरकारी बैठकें और कॉन्फ्रेंस वर्चुअली करने को कहा है। माना जा रहा है इन्हीं विषयों पर आज आयोजित बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रदेश के परिषदी एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आज से भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 का आयोजन प्रारंभ हो रहा है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में आयोजित ये विशेष शिविर आज से 19 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बच्चों को भारतीय भाषाओं, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा एवं भारतीय भाषाओं की समृद्ध विरासत को समझने और अपनाने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत खरीफ 2026 में किसानों को श्री अन्न यानी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क बीज मिनी किट वितरित किए जाएंगे। चित्रकूट जनपद में कुल 4,757 मिनी किट वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक किसान केवल एक फसल के लिए मिनी किट बुक कर सकता है। इच्छुक किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रशासन ने किसानों से अधिक संख्या में बुकिंग कराने की अपील की गई है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। वे कल से पेचिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन करेंगे। वह द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापार पर विशेष बल दिए जाने की संभावना है। ये बैठक शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की 7वीं आमने सामने की बातचीत होगी और 2017 के बाद किसी अमेरिका के राष्ट्रपति की चीन की पहली यात्रा होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहे 100.7 FM रेनबो।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया।
1: जी हाँ, मुझे मालूम है कि आप सभी मुस्कुराकर एफएम रेनबो से पूरी भरपूर मोहब्बत निभाती रहती हैं और अभी भी निभा रहे हैं। और आपकी ये जो मोहब्बत है ना, ये कहीं कहीं कहीं भी नहीं जाने वाली है, क्योंकि इस मोहब्बत को हम सर आंखों पर रखते हैं। मैं आपके साथ 100.7 एफएम रेनबो पर आपके हम सफ़र आपकी होस्ट एंड दोस्त रत्ना शुक्ला लेकर आ गई हूँ कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। इसी कार्यक्रम में आपके मीनिंगफुल संदेश आपके मेल के जरिए हम पढ़ेंगे, सजेगा आपके मेल के जरिए कार्यक्रम, और आप फोन भी कर सकते हैं हमें। बाईस 38 845 ये है फ़ोन नंबर। इसके पहले आपको कोड लगाना होगा 0522 जो कि लखनऊ का कोड है, उसके बाद 22 38 845 या फिर 22 38 852, ये दो नंबर आप डायल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। तो बस कहना यही चाहूँगी कि दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन ज़माना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है।

0: और देखिए हमने आपसे कहा था आप हमें फोन भी डायल कर सकते हैं, आपके मेल भी बहुत सारे आ गए हैं, प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में, और वक्त हो चला है 11:15 100.7 FM रेनबो जो कि है धड़कन लखनऊ की। कौन जुड़ चुका है बहुत ही प्यारी सी आवाज़ के साथ, उनसे आइए बात करते हैं। हेलो, थोड़ा जोर से बोलिए।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं, अपना नाम बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों से जुड़कर आप लोगों की बातें सुनकर हम लोग और भी अच्छे हो जाते हैं। अपना नाम बताइए। अजमत जी बोल रहे हैं। जी अजमत, थोड़ा जोर से बोलिए।
1: मैम बताएं, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी है तो जोर से बोल रहे हैं।
0: हाँ अब आपकी आवाज़ आई। जी अजमत, क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं। अजमत बोल कहाँ से रहे हैं आप, किस जगह से बोल रहे हैं?
1: लखीमपुर की।
0: अच्छा जी, लखीमपुर से बोल रहे हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप प्रोग्राम संदेश आपकी गीत हमारे में?
1: संदेश ये है कि बड़ों की बात माने और उनको सम्मान दे। अगर बड़ों का सम्मान देंगे तो जो बड़े लोग हैं ना वो आपको भी सम्मान देंगे।
0: वाह, बड़े लोगों की बात सुने, ओबे करें और बड़े लोगों के को सम्मान दें, जब आप सम्मान देंगे तो वो भी आपको प्यार देंगे, ये आपका कहना है ना अजमत जी?
1: जी
0: अब बहुत सोच सोच के थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका फोन मिला, आपको फोन मिला, आपकी बातचीत ऑन एयर हुई तो आपको खुशी हुई कि नहीं?
1: यस मैम, बहुत खुशी हुई, लेकिन पहली बार कॉल मिला तो डर लगने लगता है।
0: इतने अच्छे से, इतने प्यार से आप बात कर रहे हैं एफएम रेनबो पर, आपको खुशी होनी चाहिए, खुशी तो हो रही है आप बता रहे हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है भाई। हम आपसे की बात का हम स्वागत करते हैं और आपसे बात करते हैं और आपकी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आपने जो बड़ों का सम्मान करने की बात

उसका हम दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फोन मिलाने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिएगा 100.7 FM रेनबो के साथ। तो ये तो अजमत जी थे जिनकी हमसे बात हुई और हमने उनकी बात ऑन एयर करी। इसके बाद हम कुछ देखते हैं, अगर कुछ मेल हमारे बीच में आ चुके तो हम ज़रूर उनको ऑन एयर करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे मेल आ चुके हैं भाई, और मेल क्या कहते हैं वो भी हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि मेलों में मेल के ज़रिए आप अपनी कौन सा संदेश या कौन सी बात पहुँचाना चाहते हैं। ये हमें मेल आ गया है, कहाँ से ये आ गया है, कहाँ से आए भाई, एम के राज लखीमपुर खीरी से इनका मेल आ गया। मुनेश कुमार राजी विलेज भानपुर हरहुआ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से, सादर नमस्कार फ्रॉम मुनेश कुमार राज एंड टू रत्ना शुक्ला मैम, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है, थ्रू दिस मैसेज वी वॉन्ट टू से दैट जस्ट लाइक ऑल पीपल स्पेंड मनी एंड गो outside to hotels to eat in any situation and for hobby and understand the importance of food. Similarly, save food and do not waste it in marriage, bhandara, etc. तो चलिए, आपकी बहुत अच्छी सी बात है कि आप कहना चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप कहीं भी जाते हैं या होटल हो या फिर कहीं आप जाते हैं तो आपको किसी भी तरह से खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं। और ये चूंकि वही खाना किसी भूखे को मिल जाता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, चाहे वो थोड़ा सा भी खाना उसको मिल जाए उसकी भूख मिट जाती है। और हाँ, सुबह के मुद्दे पर इन्होंने कुछ बात लिखनी चाहिए थी, तो आपकी बात हमने ऑन एयर करी है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष कुमार जी हमें मेल करने के लिए। सोनू परवाना जी का भी मेल आ गया, आप महानुभाव को नमस्ते, जीवन में माता पिता गुरुजन दोस्त सहकर्मी जीवन साथी और उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहिए हम लोगों को जिन्होंने आपको किसी भी तरह से मदद की है, आपका मार्गदर्शन किया या आपके जीवन को बेहतर बनाया है। जी बहुत उम्दा बात आपने कही कि जिन भी लोगों ने हमें किसी भी वक्त पर साथ दिया है या फिर हमारे जो गुरुजन हैं हमारे माता पिता, उन सबका धन्यवाद करना चाहिए। और जीवन में जो लोग भी आपके साथ जुड़े हैं उनका हमेशा स्वागत और धन्यवाद करते रहना चाहिए। सोनू परवाना जी आपने बहुत अच्छी सी बात लिखी जो प्रैक्टिकली लोग अक्सर भूल जाते हैं और इग्नोर हो जाती है, ये बात नेग्लेक्ट हो जाती है, वो ऐसा नहीं करेंगे जिन्होंने आपका मैसेज सुन लिया है। रामराज जी के मेल का भी हम बहुत स्वागत करते हैं, श्री गढ़शान जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु पप्पू पासी मनीष नीरज मिर्जा इमरान बेग रिजवान भाई, हम सभी लोग आपका कार्यक्रम रोज सुनते हैं, आज हमारी मामा की लड़की की विदाई है, फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं ये कोई, तो चलिए हम आपकी मामा की लड़की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हैं, आज उनकी शादी होने के बाद उनकी विदाई है। और भी लोगों का मेल आ गया भाई, बिट्टू भाटिया जी का भी मेल आ गया है। कई लोग समझ रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो संदेश आपके गीत हमारे जो इस समय FM रेनबो पर चल रहा है ये प्रोग्राम फरमाइश का है, गानों की फरमाइश का, जी नहीं, वो आपका आएगा दोपहर में 1 बजे के बाद आपके बीच में वो प्रोग्राम जब आप अपने गानों की फरमाइश कर सकते हैं, और 2 बजे भी गानों की सॉरी 2 बजे आपको वो गाने की फरमाइश का प्रोग्राम सुनने को मिलेगा, उसमें आप अपने गीत रिक्वेस्ट करिएगा। तो फिलहाल पवन पाल जी ने नमस्ते भेजा है सेवरा बाजार शुक्ल अमेठी से। पवन पाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कोई मेल में आपके कोई भी संदेश नहीं है तो संदेश के साथ अगर मेल भेजेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और इसके साथ वकील अहमद जी ने भी कुछ लिखा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, संदेश यही कि किसान भाइयों की गन्ने की गुड़ाई हो रही है, सुबह जल्दी जाएं दोपहर में जल्दी आएं, धूप तेज़ हो रही है, पानी साथ ले जाएं, गन्ने की सिंचाई हो रही है, तो आम के बाग में बैठे हैं वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी शाजी अंसारी शमा परवीन पिंकी रिंकी महक अंसारी गुलफशा सिद्दीकी अहमद जी, इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने जो सीन यहाँ पर अपनी बातों के जरिए बताया ना वो सीन कि गन्ने की गुड़ाई हो रही है तो हम लोग पानी साथ लेकर जाते हैं और आम के बाग में बैठे हैं तो वो जो आम की सूंधी सूंधी खुशबू कच्चे कच्चे आमों की और उसके बीच में अगर आप बैठे हैं तो यकीनन आपका काम बहुत बखूबी होगा और आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बातचीत करते हुए काम को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। सुनिए ये ट्रैक 100.7 FM रेनबो पर जिस पर चल रहा है प्रोग्राम संदेश आपके गीत, हमारे रत्ना शुक्ला है आपके साथ, जुड़िए और अपना संदेश हम तक पहुँचाइए।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: वेल वेल, अब वक्त आ गया हम फिर किसी से बात करने वाले हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में, और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं आप अपना नाम बताइए पहले।
1: जी मैम, गुलफ्ता सिद्दीकी, सनीला से।
0: सनीला से गुलफ्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम बहुत अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके भला कौन अच्छा नहीं रह सकता, जितने भी श्रोता हैं।
1: यही तो हाल हम लोगों का है, आप लोगों से बात करके हम लोग भी बहुत अच्छे।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सपने बड़े हैं,
2: स्टाइल अलग है,
1: तो ये शो है आपके लिए।
2: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
1: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
2: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
1: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अपनी दोस्ती निभाते निभाते हमको फिर से किसी ने फोन मिलाया है। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। मैं रत्ना शुक्ला आपसे कहती हूँ, क्या संदेश लेकर आई आप?
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रही हैं?
1: मेरा नाम रेशु तिवारी है, मैं ग्राम
0: अपोल
1: जिला लखनऊ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, लखनऊ से बोल रही, रिंकू तिवारी जी बोल रही हैं?

0: मैडम मेरा छोटा फोन है मगर मैं सुनती रोज हूँ और मेरे पास बड़ा फोन नहीं है मगर आपके कार्यक्रम में सारे सुनती हूँ, बचपन से सुनती आ रही हूँ मैम।
1: ये रेडियो सुनने का आपको बहुत शौक है
0: जी? मैम मैं बचपन से सुनती हूँ, जब लकी चॉइस आता था जब जिसमें तीन लेटर नहीं आते थे पहले,
1: हाँ जी,
0: तो मैं
1: हाँ
0: क्या करती थी, लेटती थी तो बाजा अपने पास रख लेती थी छोटा सा बाजा।
1: अरे वाह
0: मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे ये कहना चाहती हूँ क्योंकि गर्मी आ रही है ज्यादा करके पानी ना बर्बाद करें, क्योंकि पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता गर्मियों में बहुत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है। अब देखिए ये सरकारी जो व्यवस्था हो गई है तो इसकी द्वारा से पानी बहुत बर्बाद होता है। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी, प्लीज आप लोग पानी मत बर्बाद करिए, क्योंकि जानवरों को इंसानों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत, हर चीज में पानी मैम लगता है, बस यही कहना चाहूंगी।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने रिंकू तिवारी। और आपका फोन कितनी बार आप कर चुकी हैं एफएम पर?
0: मैम मेरा फोन सिर्फ पहली बार लगा, ट्राई करते हैं, कल भी मेरी दो बार रिंग गई थी उठा नहीं था, और एफएम में भी दो बार गई थी मगर उठा नहीं था। अभी हम लेटे थे तो ट्राई कर रहे थे मगर मैम उठ गया तो आपसे बात होने लगी।
1: जी जी, तो रिंकू जी चलिए,
0: मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे भी लेटे हैं, हाँ। तो मैं बच्चे को कह रही थी देखिए मेरा फोन लग गया, तो बच्चे कह रहे मम्मी आवाज नहीं आ रही, तो मैं आपसे बोल रही थी ना कि मैम मेरी बच्चे की आवाज नहीं आ रही।
1: तो चलिए, मुझे लगा कि रिंकू तिवारी को आज खुशी पहुंचा सकते हैं, तो वो मैंने कोशिश की।
0: रिंकू नहीं ना, रेशू ना, मैं RESHU।
1: अच्छा, रेशू तिवारी जी, ठीक है। लखनऊ में कहाँ से फोन किया आपने? रेशू कहाँ रहती हैं?
0: ग्राम ऑफिस, मेरे गांव का नाम है तेरुआ, ग्राम ऑफिस थाना बंथरा है, और ये हरौनी स्टेशन से पास कर रही हूँ मैं।
1: अच्छा जी, बंथरा से बोल रही हैं आप। तो रेशू तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इसी तरह से आप दोबारा फिर से ट्राई करिएगा और मेल करती रहिएगा।
0: थैंक यू मैम।
1: तो रत्ना आपसे कहती है कि एफएम रेनबो से यूं ही जुड़ी रहिए, सुनती रहिए, थैंक यू सो मच। और रेशू तिवारी जी बहुत खुश हो गई भाई, उनका पहली बार फ़ोन मिला है, और इनके संदेश के बाद कि पानी की बिल्कुल भी आप किसी भी तरीके से पानी को वेस्ट ना करें, इस संदेश को कई लोगों को सुन के लगा होगा कि हाँ थोड़ा बहुत इस पर आप भी अमल कीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइगर खान जी का भी मेल आ गया है, समरीन इनका नाम है, विलेज बेलाई संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से मेल कर रही हूँ। मैम, रिश्ते शीशे की तरह नाजुक होते हैं, होते जा रहे हैं, शीशे की तरह रिश्ते नाजुक होते जा रहे हैं, ठेस लगे तो बिखर जाते हैं और जोड़ो तो निशान रह जाते हैं, और तोड़ो तो किर्चें चुप जाती हैं। और मैं प्रोग्राम अच्छा लग रहा है मुझे, मैं सुन रही हूँ, समरीन इनका नाम है। तो आपने बहुत अच्छी बात लिख दी रिश्तों के ऊपर कि बहुत नाजुक होते हैं और शीशे की तरह होते हैं, उनकी किर्चें अगर हो जाती हैं तो वो चुप जाते हैं और उनको संभाल कर रखना चाहिए। वाकई में आज के दौर में, जो आज का ज़माना है, उसमें रिश्तों को संभाल पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप कुछ कहते हैं, अगला कोई किसी और तरीके से समझता है उस बात को, या मिलने जुलने का सिलसिला थोड़ा कम हो गया क्योंकि सभी लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते समरीन जी आपने बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी सी बात लिखी, रिश्तों को संभाल के रखना हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज हो गया है। भैया मोनू सेठ जी का भी मेल आ गया है, फिर से इन्होंने लिखा है, अभिवादन शीलस से नित्यम वृद्धो सेविना चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो लोग बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करते हैं उनकी आयु, ज्ञान, प्रसिद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है। आज माटी के सुगंध में गीत बहुत सुमधुर बजाए आपने रत्ना बहन जी, और कल शिवम भैया के ने बहुत उम्दा गीत बजाए, उनको भी माटी की सुगंध प्रोग्राम में और रेनबो कैफे में लाने का प्रयास किया जाए। रतन भैया का प्रोग्राम सुबह भजन वाला अच्छा लगा, और बहुत सारे एंकर्स का उन्होंने नाम लिया है, सभी को ये बुलाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ लिखा है कि सभी श्रोता आप सभी का इंतज़ार किया करते हैं, कई एंकर्स का नाम इन्होंने लिखा है, मोना जी, फहीम जी, अनुग्रह जी, इन लोगों को ये सुनना चाहते हैं, तो प्रोग्राम में लोग भी आया करें, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो आपकी बात हमने ऑन एयर कर दी, अब इसके साथ हम मेल किनका शामिल करने जा रहे हैं, आंचल शेठ खालिसपुर से। ओजोन परत बचाने के लिए सबसे पहले हमें पेड़ों की संख्या बढ़ानी होगी, पेड़ों के कटान पर रोक लगानी होगी, और लिस्ट्रिक की जगह आम, जामुन, नीम, बरगद, पीपल, इस तरह के पेड़ लगाने होंगे। जल का संरक्षण करना होगा, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना होगा, झोला का, थैले का इस्तेमाल करना होगा, अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा, गाड़ी से निकलने वाली धुआं भी पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो

आपने बहुत अच्छी बात लिखी, कई सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन की हैं। तो ओजोन परत की जो आपने कही बात वो बहुत दुरुस्त है और कई लोग इस पर अमल नहीं कर पाते हैं, तो ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी आंचल सेठ जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, संदेश आपके गीत हमारे 100.7 एफएम रेनबो पर, वो लोग इसको सोचने और इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो मुझे भी बहुत पसंद, आप तक पहुँचाते हैं।

0: listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: Well, 11:47 हो गए हैं, 100.7 FM Rainbow पर चल रहा है प्रोग्राम संदेश आपके, गीत हमारे, और हमको आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ फोन लाइन से कनेक्ट होना है और मेल के जरिए जुड़ना है 100.7 FM Rainbow के साथ. देखते हैं कि इनकी आवाज हमसे जुड़ चुकी है. हेलो,

0: बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, कौन बोल रही हैं?
1: हेलो रत्ना जी नमस्ते।
0: बहुत बहुत नमस्कार साहिबा जी,
1: मैं अपर्णा तिवारी बोल रही हूँ।
0: अच्छा अपर्णा तिवारी जी बोलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आपकी आवाज़ सलगर के आप बहुत खुश हैं।
1: दिन से ट्राई कर, इससे जुकाम है थोड़ा सा ना।
0: हाँ हाँ, लेकिन जुकाम में भी कभी कभी आवाज़ बहुत सुरीली आती है।
1: इतने दिन से ट्राई कर, आज इतना खुश हूँ मैं, इतना खुश हूँ कि समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ आपसे।
0: अरे बस आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि आपकी खुशी में मैं भी शामिल हो पाई हूँ।

0: हमें इस बात की बहुत खुशी है। अपर्णा क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, वैसे तो मैंने बीएड और टीएटी कर रखा है, लेकिन अभी तक जॉब में नहीं आ पाई हूँ।
0: ठीक है, चलिए आगे इंशाल्लाह आप करेंगे जरूर, अगर आपकी इच्छा है तो।
1: कोशिश कर रहे
0: हैं। जी जी, और अपर्णा क्या संदेश देना चाहती हैं अगर आप प्रोग्राम सुन रही होंगी तो?
1: यही है मैम कि इस टाइम गर्मी और लू बहुत चल रही है, तो सब मतलब अपने साथ में छाता और पानी के साथ जाएं और फुल कपड़े पहन के जाएं, यही कहना चाहती हूँ मैं सब।
0: जी जी, ये तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही एहतियात बरतने वाला संदेश, बहुत अच्छा सा प्यारा सा संदेश है। अपर्णा जी आप इतनी खुश हैं तो हम आपसे कहेंगे कुछ आज मीठा बना के खा लीजिएगा या मंगवा के या बना के। ठीक है,
1: खिलाना सबको बहुत अच्छा लगता है, हर चीज बना के खाना कमी अच्छा लगता है।
0: अच्छा, खिलाना अच्छा लगता है तो फिर हम क्या करें, इस वक्त तो नहीं आ सकते हैं, दूर बहुत हैं, लेकिन हमारी तरफ जी हमारी तरफ से आप एक निवाला जरूर खा लीजिएगा अपर्णा। ठीक है,
1: आपकी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं सारे।
0: जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एफएम रेनबो के सारे कलेवर, आप लोगों को भाएं, बस ऐसी हमारी कोशिश रहती है। तो चलिए अपर्णा, अपना ख्याल रखिए और इसी खुशी को और बढ़ाती रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी लखीमपुर से अभी एक और सखी थी अपर्णा जी और साहिबा जी, अब आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साहिबा आप तो बहुत पुरानी दोस्त हैं एफएम रेनबो की।
2: जी
0: जी, कितने घंटे सुन जी बोलिए।
2: अपने बचपन से हम सुनते हैं, हमारी मम्मी जब सुनती थी तो मम्मी से फोन छीन लेते थे कि हम सुनेंगे।
0: अरे वाह।
2: माजी उतने सके रहे, रात में 10 बजे तक सुनते हैं।
0: रात में 10 बजे तक सुनते हैं, लेकिन हम लोग 12 बजे तक जुड़े रहते हैं आप लोगों से, लेकिन ठीक है।
2: नहीं, नहीं, नहीं, 12 बजे तक जुड़ेंगे तो हम सुबह उठ नहीं पाएंगे,
0: इसीलिए कह रहे हैं जितना आपका समय निकल पाता है उतना ही सुनती हैं और जरूर सुनती हैं और जुड़ी रहती हैं, इसकी हमें बड़ी खुशी है। साहिबा क्या करती हैं आप?
2: जब इस वक्त हम लेस बना रहे थे।
0: अच्छा,
2: हम ट्राई कर रहे थे आपका और लेस बना रहे थे।
0: लेस बना रही, बहुत अच्छी बात है ये, देखिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत चीज़ों को बना देती हैं, निखार ला देती हैं। तो साहिबा आप
2: एक फोन ट्राई कर रहे थे और हम बना भी रहे हैं।
0: हम पास में होते तो ज़रूर देखते और तारीफ़ करते आपकी लेस जो आप बना रही हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं साहिबा, बताइए?
2: संदेश ये देना चाहते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है
0: जी,
2: अपना तो सब लोग ख्याल रखते हैं, जानवर का भी कोई नहीं ख्याल रखता है।
0: अच्छा
2: जी, हम अगर जो रखते भी उसको पानी दे देते हैं कि वो धूप में रखा है कहीं, और उसको हम छाँव में रखे पानी दे, उसका दाने पाने का भी इंतजाम छाँव में करें।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप,
2: मैम आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छे लगते हैं।
0: है? तो प्रोग्राम अच्छे लगते हैं और आप लोग इतना,
2: जब आती है तब हम ही फोन लगाते हैं।
0: जी जी, हम सभी लोग, हम लोग कोशिश करते हैं जितने भी एंकर्स हैं कि आप सभी से हम जुड़ पाएं और आपकी बात लोगों तक पहुंचा
2: पाएं। ऐसे होते हैं कहते हैं नहीं आपसे बात करेंगे, जैसे नाम सुनते कहते हैं नहीं करेंगे आपसे बात,
0: नहीं
2: के कॉल उसके बाद काट दिया।
0: नहीं नहीं, चलिए आज आपकी बात हो गई, आप भी खुश हो गई, आप तो खुशी पहुंची और आपकी बात भी लोगों तक पहुँची। नहीं नहीं, चलिए साहिबा जी
2: का नाम भी लेना चाहती
0: हूं। जी नाम लीजिए जल्दी से।
2: मोहम्मद आसिफ भाई, फैज भाई, वकील अहमद मंसूरी भाई, बाबू अंसारी भाई हैं, जावेद अख्तर भाई हैं, तालिब अंसारी भाई हैं, गुलक्सा से देखिए अप्पी हैं, समा परवीन अंसारी अप्पी हैं, निशा अंसारी हैं, साजिया अंसारी हैं, रिंकी पिंक हैं।
0: चलिए
2: बहुत प्रोग्राम में सब लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सभी दोस्तों का नाम आपने ले लिया और इसी तरह से अब हम कहेंगे कि 11:51 हो गए हैं तो हमें क्या करना है, कुछ लोगों के मेल हम और शामिल कर सकते हैं। फिलहाल जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो पर।

0: और देखिए 11:53 हो रहे हैं, ये वक्त कह रहा है कि हमें बस आप लोगों से कुछ देर और हमारा आपका साथ है, तो इसको हम साथ को बहुत ही खूबसूरती से निभाना भी चाहते हैं, तो हम आप लोगों की मेल शामिल कर लेते हैं। अब हम क्या कहने जा रहे हैं आपसे, अब हम आपके मेल शामिल कर रहे हैं और जल्दी जल्दी आपके मेल हम पढ़ देते हैं। किनका? कौशिक वधवाना जी का मेल आ गया है और इन्होंने, एक कठोर पत्थर हवा से नहीं हिलाता, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से नहीं हिलता। अच्छा जी, इन्होंने ये अपने संदेश भेजा है राजकोट से, कौशिक अस्मिता वडवाना परिवार। नमस्कार रत्ना शुक्ला जी, केम छो, मजे में छो? और आज का मौसम 42 डिग्री हो गया है और इन्होंने बहुत अच्छा मेल किया है कि एक कठोर पत्थर हवा से नहीं हिलाता, वैसे बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से नहीं हिलता है। बहुत प्यारा संदेश आपका, वधवाना परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया। माधव राज जी का भी मेल आया है, बहराइच की मिट्टी से एक सुरीला सलाम संदेश आपके गीत हमारे के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लाइन है। आदरणीय आरजी और एफएम रेनबो लखनऊ की टीम, सादर प्रणाम। मैं माधवराज बहराइच के छोटे से गांव राजपुर गौरिया पिपरिया महिपाल सिंह से आप सभी से जुड़ा हूं। आपके कार्यक्रम की तारीफ में बस इतना ही कहना चाहूंगा, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में ऐसे जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, यही बहुत खूब बात आपने लिखी। रिश्तों को आजकल संभाल के रखना या रिश्ते बनाना अब दोनों बहुत मुश्किल हो गया है, चूंकि उन पर बहुत ज्यादा समय लोग नहीं दे पाते हैं। मेरे लिए कुछ ऐसा ही रिश्ता बन गया रेनबो से और कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हमें बहुत पसंद आ रहा। छोटा सा पैगाम आपका यहाँ आया और लोगों तक पहुँचा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और हम क्या कहना चाहते हैं आपसे, आपके मेल को हम शामिल करते हैं, मेल शामिल करते हैं और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको बता देते हैं, वक्त 11:55 हो गए हैं और कई लोगों का मेल आ गया, हम फटाफट नाम ले लेते हैं। अनिल कुमार ठाकुर जी का भी मेल है, आपका शुक्रिया। जयप्रकाश राजपूत जी का भी मेल आ गया है, पवन वर्मा जी का भी मेल आ गया है, कोमल तिवारी जी का भी मेल आ गया है, मिसेस गीता चेट का मेल आ गया है और माधव जी का मेल तो मैंने शामिल कर लिया है। तो कोमल तिवारी जी क्या लिखती हैं कि कार्यक्रम बहुत प्यारा लग रहा है और सुगंध माटी के प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लगा है, बार बार आया करिए। और आप कहाँ आजकल रह रही हैं? और शाम के समय पॉप टाइम रेनबो कैसे कार्यक्रम, इसे भी कोमल तिवारी इसमें भी आ पाए आप, तो इसके साथ केसरगंज से इन्होंने ज़िला बहराइच से लिखा है। अनिल कुमार जी ठाकुर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे नाम, सबके नाम हमने शामिल करिए जिन्होंने फ़ोन किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में अगले कुछ घंटे आपके साथ जुड़ने वाली रहने वाली हैं शालिनी। तो शालिनी, आपको, आप जब आ रही थी तो ठंडी हवाओं से आप व्यवस्था हुई, आपको रूबरू हुई, ठंडी हवाएं थी आपके साथ?
3: नहीं, लग तो गर्म रही थी लेकिन हमें एहसास ठंडा हो रहा था
0: क्योंकि आपको यहाँ पर स्टूडियोज में ठंडे ठंडे में बैठना है और लोगों से बातचीत करनी है, एंटरटेनमेंट का सिलसिला आप जारी रखेंगी, लोगों से जुड़ेंगी, तो शालिनी इसी तरह से आपके साथ जुड़ी रहेंगी। तो हम ये गीत आप तक छोड़ के जाते हैं और फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। रत्ना कहती है अपना ख्याल रखिए।
4: मैं खुद ये दावा करता हूँ अगर इसे कोई नकली साबित कर दे तो मैं दुगने पैसे वापस,
5: कोई दिल सिर्फ
4: 990 रुपए में।
6: पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर 5% और प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातुओं के प्रत्येक उत्प्रेरक पर 4.5% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मल्लाडी कृष्णराव और भाजपा के ए नमिसयम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतीक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बिजनौर के जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मध्य गंगा बैराज के बाएं अफ्लक्स बंद पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाए। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण और जन सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित होगा।

उफ ये गर्मी, हाय ये गर्मी, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, क्या खाएं क्या पिएं, हर एक सवाल का एक ही जवाब। हाँ, एफएम रेनबो सुनिए, सब कुछ बताया जाता है बढ़िया तरीके से, आपको इंटरटेन भी किया जाता है ना। गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, कैसा भी आपका माइंड हो, बस आप एफएम रेनबो सुनते रहिए। और इस वक्त 12:04 और 27 सेकंड हो चले हैं। शालिनी आ चुकी है लेकर प्रोग्राम शत्रुपा। तो आज क्या होगा शत्रुपा में खास, पता है ना आपको, आज है बुधवार। तो आज हम बातें तो चटपटी करते ही करते हैं, साथ ही आपके खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन आज कौन सा ध्यान रखने वाले हैं आपका? कोई हम चटपटी वाली डिशेस के बारे में आज नहीं बात करेंगे, आज हम बात करेंगे आपसे आपके सेहत को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ, अब आप कहेंगे आज कौन सी सेहत की बात आ गई, आज बात सेहत की नहीं है, आज बात टेस्ट की है, गर्मी की है। तो बस आज हम खाने की नहीं, सिर्फ पीने की बात करेंगे, यानी कि घर का हेल्दी ड्रिंक्स कैसे बनाएं और क्यों पिए, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कहते ना कि कागज कलम दावत ला, और कागज पे ही लिखना, दिल पर कुछ नहीं लिखना है आपको। और अगर आप इतने अच्छे हैं, आपको सुनकर ही हमारी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, याद रह जाएंगी तो और भी अच्छा है। लेकिन आज जो बात हम करने वाले हैं वो हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी हैं जिसका जवाब आपको वो देंगे। सीनियर डाइटिशियन है विद्या प्रिया जी, हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। तो सबसे पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत, उसके बाद हम शुरू करेंगे घर का हेल्दी ड्रिंक कैसे बनाएं और क्यों पिएं।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

0: जब हम सुकून में होते हैं और इस तरह से मीठी सी आवाज़ म्यूजिक हमारे कानों में आती है, कितना सुकून मिलता है ना। चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम को, जिसमें हम बात करेंगे आज सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से, जो कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में है, और हमें बताने वाली हैं ये घर का हेल्दी ड्रिंक कैसे बनाएं और क्यों पिए, ये बहुत खास बात है। मैम आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: आकाशवाणी में हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं विद्या प्रिया, मैं KGMU में सीनियर डाइटिशियन के पद पर कार्यरत हूँ।
0: मैम गर्मियों में घर के बने जो ड्रिंक्स होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, जो बाजार के पेय पदार्थ होते हैं, उनसे बेहतर कैसे होते हैं? वैसे सबको पता है कि घर में ही आप हर एक चीज़ बना के खाइए पीजिए, लेकिन फिर भी लोग बाहर का खाते पीते हैं, तो जब आप कुछ बताएंगे ना तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा।
1: जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो बाजार के ड्रिंक से घर का बना जो ड्रिंक होता है वो उससे बहुत बेहतर होता है। इसके कई कारण हैं। एक तो इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं होता है, आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं होते हैं, शुगर अतिरिक्त शुगर नहीं यूज़ होता है, तो और इसके अलावा ये हमारा कूलिंग इफेक्ट देता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, तो और शुगर को भी कंट्रोल करता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है हमारी, और इसके अलावा इसमें विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।
0: अच्छा घर में ही मौजूद जो चीज़ें होती हैं उनसे क्या हम हेल्दी ड्रिंक्स बना सकते हैं? मतलब ड्रिंक तो बना ही सकते हैं, पेय पदार्थ कोई भी, लेकिन वो हेल्दी हो, इसके बारे में बताइए।
1: जी हाँ बिल्कुल बनाई जा सकती है। आपके हर किचन में जो है आपको आम मिल जाएगा, इस समय आम का सीजन है, कच्चा आम मिल जाएगा, आपको पुदीना मिल जाएगा, नींबू मिल जाएगा, दही मिल जाएगा जिसका आप छाछ बना सकते हैं, सत्तू मिल सकता है।

0: जो कि बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ है। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो आपको आपके आपके ही किचन में प्राप्त हो जाएंगी, जिसे आप बहुत हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं।
1: मैम, जैसे आपने बताया कि नींबू तो घर में मिल ही जाएगा और नींबू पानी हम सभी पीते भी हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जो पुदीना आपने बताया ना, तो क्या नींबू पानी में पुदीना मिलाने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता है या कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है हम सबको?
0: जी, नींबू पानी, जैसे आप नींबू पानी सिकंजी बना सकते हैं, जिसमें जो है नींबू आपका, उसमें आप पुदीना ऐड कर सकते हैं। नींबू क्या है, आपका विटामिन सी रिच होता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और पुदीने की बात करें अगर, तो पुदीना जो है वो आयरन से भरपूर होता है, एक तो दूसरा ये गैस, अपच, एसिडिटी, इन सारी चीज़ों से भी हमें राहत दिलाता है। तो ये एक बहुत अच्छा हेल्थ ड्रिंक है।
1: अच्छा मैम, इसे बनाने का जो सही तरीका है वो बता दीजिए, और हम कैसे बनाएं ताकि इसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं ना वो बरकरार रहें।
0: जी हाँ, ये बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। इसको बनाने का सही तरीका ये है कि कभी भी ना तो गर्म हो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो, नॉर्मल टेम्परेचर लेना चाहिए, जिससे उसमें मौजूद जो विटामिन सी है वो नष्ट ना हो। तो नॉर्मल टेम्परेचर लें, उसमें आप जो है आप शुगर या शुगर की जगह जो है आप गुड़ शहद ऐड करें तो और भी अच्छा रहेगा, और पुदीनों को निचोड़ के उसको उसमें ऐड करके उसको आप बाद में कूल कर सकते हैं।
1: मैम, जैसे कि बताया ना कि शुगर की जगह यानी कि चीनी की जगह गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें, तो इन दोनों में सबसे बेहतर क्या चीज़ है?
0: बिल्कुल बेहतर माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शुगर ही यूज़ करते हैं। जो सिंपल शुगर होता है वो एम्प्टी कैलोरी होता है, उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते हैं। तो इसकी जगह अगर आप शहद और गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो मिनरल से भरपूर होता है, तो आप उसको इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कि शुगर, सिंपल शुगर के।
1: 12:15 का वक्त हो चला है दोस्तों, बात हो रही है सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से हो रही है, और इनसे हम जान रहे हैं कि कैसे हम घर में हेल्दी ड्रिंक बनाएं और क्यों बनाएं और क्यों पिए ये सारी चीज़ें। और अभी आपने नींबू पानी के साथ में पुदीने की बात जान ली है, और अब आ रही है छोटे से गाने की, और उसके बाद हम करेंगे ढेर सारी बातें।

0: बहुत ही प्यारा सा गीत था ये, नायक फिल्म का था और जो ये पिक्चराइज किया गया है ना, खेत के अंदर प्याज और रोटी का स्वाद, क्या बात है, मुंह में पानी आ जाता है ना। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, चारों तरफ पेड़ पौधे, लेकिन वापस आते हैं हम गर्मी पे। और जब गर्मी की बात करेंगे तो पानी की, पीने की, ठंडी चीज़ों की बात खुद ब खुद हो जाएगी। तो अभी हमने जाना सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से कि नींबू पानी के साथ पुदीना ऐड कर सकते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे, और अब हम जानेंगे छाछ के बारे में। ये वाला छाछ नहीं है कि बिल्ली जब दूध से जल जाती है तो छाछ भी फूक फूक कर पीती है, बहुत मशहूर मुहावरा है ना लेकिन ये वो वाला छाछ है जिसे मॉर्निंग में हम पीते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। कई सारे फ़ायदे हैं इसके, और क्या फ़ायदा है इसमें और क्या हम ऐड ऑन कर लें जो इसका फ़ायदा और बढ़ जाएगा, ये हम जानेंगे सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से। तो मैम, छाछ में भुना जीरा डालने से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पाचन में कैसे हेल्प मिलती है, इसके बारे में बताइए ज़रा।
1: जी शालिनी जी, हम जैसे कि आपने कहा कि छाछ में, छाछ अपने आप में बहुत अच्छा होता है, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो डाइजेशन में बेहतर होते हैं, डाइजेशन को आपके बेहतर इम्प्रूव करते हैं। इसमें अगर आप भुना जीरा मिला लेते हैं तो भुना जीरा जो है ये वो क्या करता है, गैस अपच ये सारी चीज़ों को कम करता है, एंजाइम को एक्टिव करता है, तो इससे आपका पाचन बेहतर होता है, तो इसलिए छाछ में भुना जीरा मिलाना बहुत

0: अच्छा ऑप्शन है।
1: अच्छा मैम, ये छाछ किस समय पीना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ना? सबका समय अलग होता है, कुछ चीज़ें मॉर्निंग में लेनी चाहिए, कुछ आफ्टरनून में, कुछ इवनिंग में, तो आप इस छाछ हम किस समय पिएं?
0: वैसे तो आप दिन में कभी भी पी सकते हैं, लेकिन जो है खाना खाने के बाद पीने से डाइजेशन, जो भी आपने खाना खाया वो भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा और जो है आपको हाइड्रेशन भी, मतलब डिहाइड्रेट नहीं होंगे, हाइड्रेशन बेहतर रहेगा।
1: क्या जो छाछ है ना, अगर हम रोज़ पियेंगे तो हमारा शरीर ठंडा रहेगा, मतलब गर्मी कम लगेगी, ऐसा कुछ है?
0: जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। रोज़ जो है आप 1 से 2 ग्लास छाछ पी सकते हैं, जिससे आपका शरीर ठंडा रहेगा। ये कूलिंग इफेक्ट देता है हमारे जो स्वेटिंग वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों के सीज़न में, तो उसके जो है उसके साइड इफेक्ट से हमें बचाता है, और जैसा कि बताया मैंने पाचन को तो बेहतर करता ही है। तो 1 से 2 गिलास छाछ आप रोज ले सकते हैं।
1: तो दोस्तों, नींबू पानी की बात हो गई, छाछ की बात हो गई, और आप आते हैं एक ऐसी बात पर जिससे जिसकी बात किए बिना हम गर्मियों में रह ही नहीं सकते। हाँ लगाइए, तुक्का लगाइए जरा, क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, आम का पन्ना। जी हाँ, और ये बहुत आसान रेसिपी है, घर में बनाते हैं सब लोग। इससे हमें लू से बचाओ कैसे ये हमारी करता है, इसे स्टोर करके कैसे रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी अभी हम जानने वाले हैं। किससे? अपनी सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया मैम से। और मैम, आम पना बनाने की आसान घरेलू रेसिपी क्या है, थोड़ा सा बताइए।
0: ये बहुत ही आसान है, जिसको हर महिला या हर बुजुर्ग या बच्चे भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। और जैसे कि कच्चे आम को उबाल लें, उसका गूदा निकाल लें और उसमें भुना जीरा मिलाएं और काला नमक मिलाएं और पुदीना, और थोड़ा थोड़ा करके अगर डायबिटिक नहीं है तो गुड़ भी मिला सकते हैं, और इसको पानी डाल के फिर इसको आप रख सकते हैं और पी सकते हैं 1-2 दिन तक फ्रिज में रख के। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये बहुत ही आसान रेसिपी होती है, जैसे कच्चे आम को उबाल लें, उसका गूदा निकाल लें और उसमें भुना जीरा मिलाएं, जो कि गैस एसिडिटी से आपको बचाएगा, और काला नमक डाइजेशन को बेहतर करेगा, पुदीना जो कि आपको कब्ज वगैरह से भी राहत दिलाएगा, आयरन से भरपूर होता है, और थोड़ा एनर्जी के लिए आप उसमें गुड़ मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा हेल्दी ड्रिंक बन के तैयार हो जाएगा।
1: अच्छा मैम, ये लू से कैसे बचाता है हमें, उससे बचाने में हमारी हेल्प कैसे करता है?
0: आम पना जैसा कि बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, इसमें ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, शरीर को कूल करता है, और जो भी पसीना हो रहा है उससे हमारे जो स्वेटिंग हो रही है तो हमारे शरीर का पानी बाहर निकल रहा है, तो इससे हमारे कूलिंग इफेक्ट को बनाए रखता है, हाइड्रेट रखता है। इस तरह से आपको जो है वो लू से बचाता है आपको।
1: मैम अभी आपने बताया इसे हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रख के, तो इसे स्टोर कैसे रखा जा सकता है, कितने दिनों तक, जरा एक बार फिर से बता दीजिए।
0: जी इसको फ्रिज में 2 से 3 दिन तक आराम से आप स्टोर करके रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं।
1: दोस्तों 12:26 और 45 सेकेंड हो चले हैं और बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, और नींबू पानी से हमें ये प्यारा सा ट्रैक याद आ गया है, तो बस सुनिए और इंजॉय कीजिए।

0: 12:33 का वक्त शत्रुपा में आज बात हो रही है घर का हेल्दी ड्रिंक कैसे बनाएं और क्यों पिएं। और एक्सपर्ट है हमारे साथ सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। हम बात कर चुके हैं नींबू पानी प्लस पुदीना की, छाछ प्लस भुना जीरा की और आम पन्ना की। और दो चीज़ें अभी भी रह गई हैं बात करने के लिए, बताइए तो क्या, जो बहुत खास होती हैं, बाहर से भी आपको मिल जाती हैं बनी बनाई, लेकिन अगर आप घर पे बनाते हैं बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए तो जो पीने का फ़ायदा है ना वो दोगुना हो जाता है। क्या है वो चीज़? बेल। जी हाँ, बेल का शरबत कितना अच्छा होता है ना। जब हम बात करते तो बस मन करता है आहा मिल जाए और दो तीन ग्लास पी लिया जाए, बाद में देखा जाएगा। तो बेल का शरबत जो है उसके बनाने की जो सही विधि वो क्या है वो हमें बताएंगी विद्या प्रिया मैम।
1: जी, बेल का शरबत जो है बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारे डायरिया में भी आपको हेल्प करता है, कब्ज को दूर करता है, एसिडिटी के लिए बहुत लाभकारी है और आपके आंतों को शांत करता है। तो इसके बनाने की विधि बहुत ही आसान है। बेल को तोड़ लें, उसका गूदा निकालें, उसको पानी में मिक्स कर लें, उसके बीज वगैरह को छान लें अच्छे से, फिर उसमें आप अपनी स्वाद अनुसार गुड़ और काला नमक मिलाकर ले सकते हैं।
0: तो दोस्तों अब तो इतना करना ही पड़ेगा कि भाई गूदा निकालना है, उसे पानी में मिक्स करना है, छानना है, बीज उसके निकाल लेने हैं। कितना ही देर लगेगी? इतनी ही देर लगेगी जितनी हम बाहर के पेय पदार्थ लेने में लगाते हैं ना भाई, उसको ऑर्डर करते हैं तब वो बनाते हैं तब हमें देते हैं, उतना ही टाइम घर पर लगेगा। तो थोड़ा सा अपने लिए समय ज़रूर निकालें। मैम, जैसा कि आपने कहा कि पेट की समस्याओं से ये हम काफ़ी असरदार होता है, ये कितना असरदार होता है पेट की समस्याओं से संबंधित?
1: जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कब्ज में, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत भरपूर मात्रा में होता है, तो फाइबर डाइजेशन को भी बेहतर करता है और जो है आपके कॉन्स्टिपेशन को भी बेहतर करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिनको भी डायरिया या जो इनको कब्ज है उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। तो बेल के शरबत को अपने डाइट में शामिल करें, एनर्जेटिक महसूस करेंगे और विटामिन सी से भरपूर होता है, तो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है आपकी।
0: और दोस्तों इतनी गर्मी में हमें क्या चाहिए, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर ना पड़े, नहीं तो कई सारी बीमारियां हमारे चारों तरफ घूमती रहती हैं हम पर अटैक करने के लिए। लेकिन हमें क्या करना है, उनको दिखाना है कि हम कितने मजबूत हैं, कितने हेल्दी हैं।

0: और हमारा इश्क आपसे है 12:41:45 का वक्त हो चला है। समय की सुइयों पर ध्यान दे दीजिए, कहीं कोई काम आपका रुका है या आपको करना था, तो बार बार जो समय हम बताते हैं उसी का रिमाइंडर देते हैं कि एक बार ध्यान दे लीजिए। दोस्तों, नींबू पानी की बात, छाछ की, आम पना की, बेल के शरबत की बात हो गई, और जो सबसे अहम बात है वो अभी बाकी है, सत्तू का शरबत। जी हाँ, जो कि सत्तू भी आप घर पे आसानी से बना सकते हैं, और उसके बाद उसको आप किसी भी तरीके से, बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ें हैं सत्तू, ऐसे ही घोल कर खा सकते हैं, नमक के साथ खा सकते हैं, शक्कर के साथ खा सकते हैं, और चटनी के साथ खा सकते हैं, शरबत भी बना सकते हैं, उसके लड्डू भी बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, और सब कुछ बिना किसी देरी के, है ना। इतनी सारी चीज़ें पता थी हमें, आपको भी पता है, लेकिन मैम क्या बताने वाली हैं वो जानना है कि जो सत्तू का ड्रिंक है वो कैसे बनाएं, मीठा और नमकीन दोनों का हो सकता है, आप जैसे बनाते हो, मैम के बताने का तरीका अलग हो। जो कि कौन है मैम हमारे साथ, सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से।
1: जी, सत्तू तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये बिहार, पटना, पूर्व

0: साइड में बहुत ही ज्यादा इसका गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हमें ऊर्जा देता है। क्योंकि चने का सत्तू है तो वो हाई प्रोटीन होता है, फाइबर इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो सत्तू को आप पानी के साथ मिक्स करें, उसको अगर मीठा बनाना है तो आप उसमें गुड़ मिक्स कर सकते हैं या शहद मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं। तो और इससे आपको लंबे समय तक आपको भूख का एहसास नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन स्लो होता है, तो आपको एनर्जेटिक महसूस करेंगे दिन भर, आपका इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस रहेगा।
1: जैसे आपने मैम ऊर्जा की बात की ना, ये तुरंत ऊर्जा देने में कैसे काम करता है, इसके बारे में भी बताएं।
0: तुरंत एनर्जी के लिए मैंने जैसा कि बताया, आपको इसमें गुड़ मिला सकते हैं या शहद, क्योंकि इसमें जो है आपको एनर्जी मिलेगी। और सत्तू जो है वो प्रोटीन का सोर्स होता है और ये स्लो डाइजेशन होता है, तो आपको दिन भर जो है पेट भरा महसूस होगा और जल्दी भूख नहीं लगेगी और आपको किसी तरह का लू नहीं लगेगी।
1: मैम इतने सारे ड्रिंक के बारे में बात हो चुकी है, तो बस एक और चीज़ हमारे लिसनर्स को बताइए कि जो घरेलू ड्रिंक हैं उन्हें पीने से शरीर को क्या मुख्य फायदे मिलते हैं।
0: इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, सबसे पहला यही है कि हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, कूल रखता है और डाइजेशन को सुधारता है। और इम्यूनिटी जो कि जो है जैसा कि बताया विटामिन सी से भरपूर होता है, तो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है आपकी, और एनर्जी तो आपको मिलती ही है इससे, और हीट स्ट्रोक से भी आपको बचाता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत सारे फायदे हैं इसमें।
1: मैम कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो क्या इसके भी ड्रिंक्स के भी दो पहलू, यानी कि नुकसान क्या हो सकते हैं घर के बने ड्रिंक को पीने से अगर ज़्यादा पिया जाए तो।
0: जी देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा तो हर चीज़ नुकसानदेह होती है, अगर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है वो भी नुकसान करेगी, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी पीते हैं तो वो भी नुकसान करता है। तो एक लिमिट में एक पोर्शन साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग ही लें। जैसे कि अगर बीपी का पेशेंट है तो नमक बहुत ज़्यादा ले रहा है तो उसका बीपी बढ़ सकता है, अगर शुगर का पेशेंट है तो बहुत ज़्यादा अगर उसने मिठास डाल दी उसमें तो उसका शुगर बढ़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देकर संतुलित मात्रा में इसका इस्तेमाल करें।
1: और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है और अभी तो मई का ही महीना है, अभी बाकी जो जून का महीना है वो तो बाकी ही है, लेकिन अगर आप अपने खान पीन का ध्यान रखेंगे ना तो गर्मी आपको कम महसूस होगी, इस बात की है गारंटी। उसके लिए क्या करना है, बस सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: दोस्तों 12:52 और 12 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी अब ज़्यादा समय इस प्रोग्राम के लिए नहीं बचा है, लेकिन जो भी समय बचा है उसमें हम अपनी सीनियर डाइटिशियन विद्या प्रिया जी से कुछ चीज़ें और जानना चाहेंगे। मैम, अगर किसी को रोज़ सिर्फ 2 ड्रिंक चुनने की बात की जाए कि वो 2 ड्रिंक पियेंगे तो वो कौन सी होंगी, इसमें थोड़ी सी हेल्प करिए प्लीज़।
1: जी, 2 सबसे जो है जो ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होता है, जो कि आपको हैवीनेस भी नहीं लाता है, आप बहुत लाइट फील कराता है और एनर्जी भी मिलती है। तो पहला आप छाछ सबसे अच्छा होता है, जो खाना खाने के बाद आप लेते हैं उसमें भुना जीरा काला नमक डाल के, तो डाइजेशन भी बेहतर करेगा और आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन भी मिलेगी और आपको हाइड्रेट भी रखेगा। दूसरा है आप नींबू पानी, उसको शिकंजी बना के भी ले सकते हैं, नींबू पानी में जो है पुदीना या जीरा इस तरह से मिला के ले सकते हैं। तो ये दोनों ड्रिंक जो है वो किसी को ले लेना चाहिए, इससे कोई भी नुकसान नहीं है।
0: मैम, अब वक्त कह रहा है कि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें, लेकिन उससे पहले श्रोताओं के लिए आपका एक आसान समर हेल्थ टिप क्या होगा?
1: सबसे पहले तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको हाइड्रेट रहना है, आपको 8 से 10 गिलास पानी रोजाना पीना है और 1 से 2 गिलास आपको कोई भी मतलब ये हेल्थ ड्रिंक्स लेने हैं, जैसे छाछ है, मट्ठा है या सत्तू है, इस टाइप की चीजें अपने डाइट में जरूर शामिल करें और घर से निकलने से पहले कुछ ना कुछ खा के निकलें, खाली पेट घर से ना निकलें, नहीं तो लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी जानकारी दी और उम्मीद है दोस्तों कि नींबू पानी प्लस पुदीना छाछ भुना जीरा और आम पना बेल का शरबत सत्तू का शरबत, ये सारी चीज़ें हैं ऑप्शन में, आप इनमें से कोई 2 तो आप अपनी दिनचर्या में शामिल ही करेंगे जब तक गर्मी कम ना हो जाए और हैबिट में डाल लीजिए। और शुरुआती तौर पे जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं ना तो 1-2 दिन थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जब लगातार करते रहते हैं ना तो खुद से हैबिट बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, अच्छी वाली हैबिट्स डालनी हैं, जब हम अच्छे बनेंगे तो अब हमारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और पहले से दिमाग में ये नहीं लाना है कि अरे ये सत्तू तो बच्चे खाएंगे नहीं। भाई, आप देखिए उनका टेस्ट कैसे है, मीठा पसंद कर रहे हैं, नमकीन पसंद कर रहे हैं, खेल खेल में खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। बस एक माँ ऐसा काम कर सकती है और इस काम को करने में मौसी बुआ और दादी और नानी भी पीछे नहीं है ना, बच्चों को हंसी हंसी में आप पेट भरा ज़रूर देती हैं उनका। तो चलिए इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम

पे तेरी बात, आपकी ही बात हम आप तक ही पहुंचाएंगे। और आज जब दादा दादी नाना नानी की बात हो ही गई है, तो आप बताइए तो ज़रा, गर्मियां शुरू होते ही हम लोगों को दादा दादी नाना नानी के घर याद आ जाते थे और हम वहाँ चले जाते थे, तो क्या आज भी है? आप याद करते हैं? अगर याद करते हैं तो क्यों, क्या ख़ास है बात उन यादों में? बस ये हमें आपको मेल करना है, 100 मेल किस पे करना है, एफएम मेल आईडी हमारी कौन सी है आपको याद है ना, FM रेनबो लखनऊ, FM आकाशवाणी या रेनबो लखनऊ कौन सी है बताइए तो ज़रा, याद है ना आपको? FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे आपको मेल करना है, हमारा साथ ऐसे ही देते रहना है, सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन व

शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूर्ण किए जाना लक्षित किया है। जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि क्रिकेट स्टेडियम बन जाने से गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर बहुआयामी विकास का नया मॉडल दिखेगा। बस्ती में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ल ने कहा कि गौ आश्रय का अब 5 और 7 हेक्टेयर में निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पशुपालकों की संख्या निरंतर घट रही है, लोगों को पशु पालने के साथ निराश्रित पशुओं की देखभाल को जन आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निराश्रित और असहाय गोवंश के संरक्षण देखभाल के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम प्रदेश भर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इटावा में जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बाल विवाह रोकथाम पर जोर देते हुए बताया कि जिले में 12 बाल विवाह रोके गए हैं, अब अभिभावकों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी प्राइमरी स्कूलों में गाइड चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर लिखवाने को कहा है, साथ ही मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा पर चिंताजनक बताकर उन्हें योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। इसी क्रम में अमरोहा में आज तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियां टूटकर गिर गई। मौसम विभाग ने प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। नर सप्ताह समारोह 2026 के अंतर्गत कमान अस्पताल मध्य कमान लखनऊ ने स्वास्थ्य सेवा, रोगी सुरक्षा और सामुदायिक कल्याण में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शैक्षणिक और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। यह समारोह अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 के विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं के अनुरूप आयोजित किया गया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: चार मिनट और 17 सेकंड का वक्त, और ये वक्त बता रहा है कि प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत। और आप सभी को ईमेल करना है कहाँ, fmakashwani@gmail.com पे, और उसमें आपको बताना है कि क्या आज भी आपको अपनी गर्मियों की छुट्टी में जहाँ घूमने जाते थे, दादा दादी के घर या नाना नानी के घर, उसकी याद आती है। अगर आती है तो क्यों आती है, ये बस फटाफट बताना है। उसमें से देखिएगा कितने इमोशनल टच आज भी हमें दिखाई देंगे और उन्हें हम महसूस कर पाएंगे और अपने बच्चों को भी बता पाएंगे। ये यादें बहुत ज़रूरी होती हैं दोस्तों हमारी लाइफ के लिए। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके ईमेल का, और फिलहाल तब तक के लिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, और इसके बाद होंगी आप

आपके ही बातें आपके ही में। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखें, ये प्रोग्राम फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, तो आप हमसे जुड़ें, ज़रूर जुड़ें अपनी बातों के साथ, अपनी दिल की बातों के साथ जुड़ें। और 2 बजे से होगा प्रोग्राम हॉट मेल, जिसमें आपके ही फरमाइश के गाने आप तक हम पहुँचाते हैं। जी हाँ, आप तक ही तो पहुँचाते हैं, और अगर नहीं पहुँचाते हैं तो दूसरे जो गाने हैं वो आपकी पसंद बन जाते हैं, क्योंकि 1 घंटे में कितने ही गीत प्ले किए जा सकते हैं ना दोस्तों। तो बस इन सभी बातों का रखना है आपको ख्याल, और सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की शालिनी के साथ।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में ईंधन की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को लेकर रियासत के लोगों से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने के साथ ही कई अहम हिदायत दी हैं। एक रिपोर्ट।
1: सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पुलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कक्ष से अरुण।
0: मरकजी जांच एजेंसी CBI ने नीट इम्तिहान 2026 के मुबैना पेपर लीक होने के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। इस मामले में मुल्क भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने आला तालीम महकमे की तहरीर की बुनियाद पर मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए CBI की खसूसी टीमें मुख्तलिफ मकामात पर भेजी गई हैं। इस दरमियान NTA ने वाजह किया है कि दोबारा इम्तिहान के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी।
2: NTA ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्हें आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। मौत की वजह अभी वाजह नहीं हुई है। प्रतीक यादव की अहलिया अपर्णा बिष्ट यादव इस वक्त रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश रियासती खवातीन कमीशन की नायब सदर अपर्णा यादव के शौहर प्रतीक यादव का अचानक इंतकाल इंतहाई अफसोसनाक है। भारत कल से शुरू होने वाले दो रोज़ा ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास की मेज़बानी करेगा। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मीटिंग की सदारत करेंगे। इजलास में ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद शिरकत करेंगे। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान ब्रिक्स रुकन ममालिक के वज़राए खारजा बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों को जदीद बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी के क़याम का ऐलान किया है। हुकूमत से इस मकसद के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए मख्तस करने को कहा गया है। कमेटी 31 अगस्त तक वज़ीर आज़म की इक्तसादी मशावरती काउंसिल के रुकन संजीव सान्याल को अपने तफसीली नतायज और मतलूबा फंडिंग की तफसीलात पेश करेगी। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदादी ड्यूटी बढ़ा दी है, जो आज से लागू हो गई है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर दरामदादी ड्यूटी 5% और प्लेटिनम पर 5.4% होगी। मजीद बरां तामील के उसूलों के तहत कीमती धातुओं में इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट पर बरामदादी ड्यूटी 4.35% होगी। रियासत के काउंसिल और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूलों में आज से इंडियन लैंग्वेज समर कैंप 2026 शुरू हो रहा है। यह खसूसी कैंप वजारत तालीम हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक मुनक्किद किया जा रहा है, जो आज से 19 मई 2026 तक जारी रहेगा। कैंप का अफ्तताह मरकजी वजीर तालीम करेंगे। रियासत के बुनियादी तालीम के वजीर संदीप सिंह ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक बच्चों को भारतीय

1:21 का वक्त हो चला है। ढेर सारे ईमेल्स हमारे बीच में आ चुके हैं और मेल किसका आया हुआ है? सुल्तान रजा का मेल है और ये हमें कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से लिखकर भेज रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में हम जाते थे नाना के यहाँ और वहाँ जाकर गर्मियों में आम के बाग में बैठकर आम तोड़ते थे, खाते थे और बहुत मज़ा आता था। और अब तो ना नाना है ना नानी है और ना पहले जैसा माहौल है। अब तो छुट्टियाँ गर्मी की बस कूलर और पंखे के नीचे ही बीतती हैं। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं रजा, एसी के नीचे बीतती हैं। इसीलिए तो बस आज का विषय रखा हमने पुरानी यादों को ताजा करने के लिए कि जब हम बात करेंगे तो कुछ लम्हे तो पुराने जी लेंगे, है ना। और एमन का भी ईमेल आ चुका है, कहाँ से? नवाब संडीला से। अच्छा, एमन नवाब संडीला से हैं और इन्होंने लिखा है कि आज के टॉपिक पर ये क्या कहें, क्योंकि कभी गर्मियों की छुट्टी पे ही अपनी नानी के घर नहीं गई, इन्होंने नानी को नहीं देखा और जब बहुत छोटी थी तब नाना को देखा था, वो भी इन्हें याद नहीं है। और बात आती है दादा दादी जी के घर पे, तो अहमन उन्हीं के साथ रहती हैं, उन्हीं के घर पे ठंडी गर्मी बरसात सारे सीज़न दादाजी के साथ ही बिताती हैं और दादाजी को बहुत सारी बातें घुमा फिरा कर भी बताती हैं। क्यों अहमन, कई बार आपने कहा कि हमने आपके लिए रिक्वेस्ट भी की है आपके दादाजी से। वैसे आपके दादाजी बहुत अच्छे हैं और हमेशा आप दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और बाकी मेल पढ़ने से पहले ये प्यारा सा ट्रैक, क्योंकि अमन ने हमें लिखकर भेजा था गर्मा गर्म दोपहरिया की शुभकामनाएं और ये गाना उस पर फिट बैठता है।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।

1:32 हो चले हैं। रामेश्वर जी का मेल आ चुका है कानपुर देहात से, मुंगिसापुर नाम है, और इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और ये आज ही अपने नाना नानी के घर जा रहे हैं घूमने के लिए, क्योंकि इन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगता है और नाना नानी की याद भी आती है। और इनके साथ में रामेश्वर, उमाकांती, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और पूरी फैमिली की तरफ से इन्होंने हमें मेल किया है और उम्मीद है कि आप पूरी फैमिली के साथ नाना नानी के घर जा रहे होंगे। भाई पलक झपकते ही ढेर सारे ईमेल्स आ चुके हैं। बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं। अच्छा, आप टॉपिक ही नहीं सुन पाए इस बार। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको बताना है कि जब आप गर्मियों की छुट्टी में नाना नानी या दादा दादी के घर जाते थे तो आपको कैसा लगता था। आज आप उन यादों को याद करते हैं और याद करके कैसा महसूस करते हैं। हाँ, और उम्मीद है ये नीरज जी आपको भी अच्छा। ये रिंकी पिंकी जगदीशपुर शिवगढ़ से हमें लिख रही हैं, रायबरेली से, आपने भी सुन लिया होगा और आपको भी आज का टॉपिक पसंद आया होगा। फटाफट आप हमें मेल करिए। और ये मेल आ चुका है कहाँ से, बहराइच से इन्होंने हमें मेल किया है और इन्होंने लिखा है कि गर्मियों की छुट्टियाँ, शब्द सुनते ही पहले सिर्फ स्कूल की छुट्टियाँ याद आती थी, लेकिन अब बड़े होने के बाद समझ आता है कि छुट्टियां सिर्फ स्कूल की नहीं होती बल्कि वो वक्त होता है जो हम अपनों के साथ सुकून से बिताते हैं। बिल्कुल सही लिखा है। आज भले ही हम कामकाज और जिम्मेदारियों से बंधे हैं पर इस तपती गर्मी में भी अगर दोस्तों का साथ मिल जाता है तो वो पल किसी ठंडी छांव से कम नहीं होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि पक्के दोस्त सिर्फ बचपन में बनते हैं, पर मुझे जिंदगी के इस पड़ाव पर भी अपनी ये महफिल मिली है और जिन्होंने साबित किया है कि दोस्ती के लिए सालों का साथ नहीं बस दिलों का मिलना जरूरी है। बिल्कुल सही बात लिख रहे हैं। और आप अच्छा अपने दोस्तों का नाम भी गर्व से लेना चाहते हैं राजन जी। और भाइयों, भले ही अपने बचपन की उन गलियों में साथ दौड़ ना लगाई हो पर जो आज हम साथ हैं वह मेरी असली समर वेकेशन है। आप सबके साथ बैठकर दो पल की हंसी मजाक होती है, वो हमें सबसे बड़ी राहत मिलती है। भाई बहुत बहुत अच्छी बात लिखी है। और माधव राज हैं हर राजपुर बहराइच से ये हमें लिखकर भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, दोस्ती तो उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता ना, दोस्ती तो दोस्ती होती है। और किसका मेल आया हुआ है, अच्छा और भी मेल हम जरूर लेंगे लेकिन ये प्यारा सा ट्रैक सुन लेते हैं उसके बाद।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और दोस्तों 1:45 हो चले हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी बातों को क्या शेयर करें कि क्या ना करें, लेकिन आप कर दीजिए। जी हाँ, अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। जावेद अख्तर जी का मेल आ चुका है और इन्होंने हमें कहाँ आज़मगढ़ से मेल किया है और ये लिख रहे हैं कि अच्छा, ये मोबाइल ऐप पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और गर्मियों की छुट्टी में ये नाना नानी के घर बहुत शौक से जाया करते थे और बागों में आम की खूब बहार हुआ करती थी और खूब इंजॉय करते थे। भाई यही तो मज़ा था जो आज कम हो गया है। और बहुत सारे आजकल के बच्चे भी हैं जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा है, कभी आम का बाग नहीं देखा है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने लिसनर से कोशिश करें बच्चों को ज़रूर ले जाएं। अगर आप कहेंगे कि हमारा कोई गांव है ही नहीं, हम कैसे जाएं, कैसे बच्चों को वहां की लाइफ को दिखाएं, कैसे हम आपके आम के बाग ले जाएं, तो कोई ना कोई आपका रिलेटिव, आपका जानने वाला किसी ना किसी के यहाँ घर ज़रूर होगा, कोई ना कोई गांव से ज़रूर जुड़ा होगा। और एक दिन समय निकालिए, ज़रूर बच्चों को ले जाइए और देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। गुलाबसा सिद्दीकी जी का मेल आ चुका है संडीला से और ये कह रहे हैं कि अच्छा, हमने एक ऐसा गाना बजा दिया जिससे कि बादल आ गए हैं और मौसम का मूड ख़राब हो गया है, बारिश होने वाली है। भाई ऐसा तो हमने मूड ख़राब करने की तो हमने किसी की कोशिश नहीं की है, लेकिन अच्छा है, बारिश आएगी तो अच्छा है। और ये वकील अहमद जी का है, अच्छा ये मुद्दा नहीं सुन पाए हैं आज का, और इनके यहाँ आंधी बारिश और पत्थर गिर रहे हैं, इस समय खेत में हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं, ये हथूरी ज़िला सीतापुर से बात करें। भाई ध्यान रखिए अपना, अगर पत्थर गिर रहे हैं तो बाहर खुले में ना निकले, ना बच्चों को निकलने दे। और बसंत कुमार सिन्हा का भी मेल आ चुका है और ये हमें रेखा देवी, अजय कुमार और सिम्मी तनुश्री के साथ लिख रहे हैं। ये दमदर एयरपोर्ट कोलकाता से मेल कर रहे हैं और ये लिखते हैं कि पुरानी यादों को ताज़ा करना, और यादें तो वैसे भी ताज़ा हो चुकी हैं। मैं गर्मी की छुट्टी पर अपने घर गांव जाना इन्हें बहुत अच्छा लगता था, गाँव की जो मिट्टी की खुशबू और इन अपनी जन्मस्थली भूमि की खुशबू मन को बहुत ताज़ा कर देती है। गांव में अपने पुराने रिश्ते वालों के घर जाना मन को बहुत भाता है। घर के सभी देवी देवता का पूजा करना और राजगीर की जल प्रताप की सैर करना, उलन खटोले से पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचकर भगवान के दर्शन करने का मन को शांति मिलती है। भाई बहुत अच्छी बातें हैं और पुरानी यादें ताज़ा ज़रूर होंगी। ये किसका मेल आया है, शिवा जी का मेल आया है और इन्होंने काकोरी लखनऊ से हमें मेल किया है। गर्मी बहुत हो रही है, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, चिड़ियों के लिए दाना ठंडा पानी रखें, गर्मी बहुत हो रही है। भाई सभी ख्याल रख रहे हैं और सभी एक दूसरे से कह रहे हैं, लेकिन केवल कहने से काम नहीं होता है, करना भी पड़ता है ना। और नीरज कुमार जी का मेल आ चुका है, बचपन की शरारतें भी बहुत करते थे हम लोग और एक अलग सी खुशी मिलती थी, नाना नानी भी तो इस दुनिया में नहीं है, समय के साथ सब बदल गया है, अब वो सुकून की खुशी नहीं मिलती है, अब तो हम अपनी नानी के यहाँ बहुत कम जाते हैं, अपने घर में ही रहते हैं। भाई वही तो ना, यादें याद कर रहे हैं आज हम। और प्रवीण जी का भी मेल आ चुका है, इन्होंने लिखा है कि मेरी दादी तो हमारे साथ ही रहती हैं, दादा को

उनकी खुशी नहीं मिलती है, अब तो हम अपनी नानी के यहाँ बहुत कम जाते हैं, अपने घर में ही रहते हैं। भाई वही तो ना, यादें याद कर रहे हैं आज हम। और प्रवीण जी का भी मेल आ चुका है, इन्होंने लिखा है कि मेरी दादी तो हमारे साथ ही रहती हैं, दादा को मैंने देखा नहीं, नानी क्या मैं अच्छा और नानी नानी को नाना नानी को देखा है। गर्मी की छुट्टियों में मामा के घर जाते थे, बहुत बोर होता था, अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वहाँ कोई दोस्त नहीं बनता था, अकेले पड़ जाता था, इसीलिए मामा के घर केवल टीवी ही देखता रहता था। अच्छा चलिए, ये भी एक नया चीज़ आपसे पता चली, नया एक्सपीरियंस रहा आपका सुनकर। और दोस्तों अभी मेल को थोड़ा सा रोक देते हैं क्योंकि गाना शुरू हो चुका है।

और दोस्तों गुलाब साहब सिद्दीकी का फिर से मेल आया है और इन्होंने लिखा है कि ये नाना नानी के घर जाती थी, मलिहाबाद के पास एक गांव है कचौली, वहीं पर था और ये बहुत दिन तक वहां पर रुकती थी और इन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शायद अब गुलाब साहब टाइम नहीं मिलता होगा या समय बदल गया है, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है ना। तो देखिए दोस्तों, आज अच्छा लगा, आपने बहुत सारे लोगों ने हमें मेल किया, हमसे जुड़े, और आपको भी अपनी यादों को ताज़ा करके अच्छा लगा होगा, वो दिन महसूस किया होगा, उसका एहसास हुआ होगा जो दिन बीत गए हैं। और इसी के साथ 1:55 और 8 सेकंड हो चले हैं दोस्तों, ये वक्त हो गया है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। नेक्स्ट प्रोग्राम हॉट मेल में शालिनी रहेगी आपके साथ, आपके ही गीतों के साथ। तो फटाफट मेल करना शुरू कर दीजिए, एक ही बार प्लीज़ मेल करिएगा, इतनी रिक्वेस्ट हमारी है। fmakashwani@gmail.com पर मेल करने, बढ़िया से प्यारे से सॉन्ग सेलेक्ट करके भेज दीजिए।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। सीबीआई से वांछित भगोड़े प्रवदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यापित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित तालनादौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। लोक निर्माण विभाग ने स्टेडियम का निर्माण 23 दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि क्रिकेट स्टेडियम बन जाने से गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर बहुआयामी विकास का एक नया मॉडल दिखेगा। नर सप्ताह समारोह 2026 के अंतर्गत कमान अस्पताल मध्य कमान लखनऊ ने स्वास्थ्य सेवा, रोगी सुरक्षा और सामुदायिक कल्याण में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शैक्षणिक और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। यह समारोह अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 के विषय हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं के अनुरूप आयोजित किया गया। सोने और चांदी की कीमतों में आज 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में सोना लगभग 6% बढ़कर 162,597 रुपये प्रति 10 ग्राम तक कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सरकार ने सोने और चांदी पर आया शुल्क 6% से बढ़कर 15% कर दिया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

दोस्तों 2:03 हो चले हैं और बिना किसी देरी के हमने प्रोग्राम की कर दी है शुरुआत। उत्तम कुमार भगत जी का मेल आ चुका है श्वेता भगत किसु तासु अर्णव आनंद सत्यम के साथ और मुन्ना गुड्डी भी है पश्चिम बंगाल से और बाकी लोग झारखंड से हमें मेल कर रहे हैं। मेरा नाम अवश्य शामिल करें, भाई नाम तो सभी के शामिल होते हैं, वो बात अलग है कि गीत हम थोड़ा कम शामिल कर पाते हैं क्योंकि भाई किसके प्ले किए जाएं और किसके ना किए जाएं ये भी थोड़ा सा परेशानी वाली बात हो जाती है ना। और देखिए दिलीप कुमार का भी मेल आ चुका है कमला किशोर शाह के साथ भगलपुर बिहार से। जावेद अख्तर जी ने भी हमें मेल कर दिया है और इनके साथ में शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा साहिन तुबा आफरीन शमीम

अख्तर अंसारी सभी लोग हैं आजमगढ़ से ये हमें मेल कर रहे हैं। संदीप मकर का भी मेल आ चुका है। भरत कमल मन्नत के साथ इन्होंने हमें जालंधर से मेल किया है। भाई ज्योति भी हैं साथ में हमें मेल कर रही हैं। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन दीपांशु ने हमें मेल किया है। और अब बारी है ये इस प्यारे से ट्रैक की।

0: बहुत ही प्यारे से ट्रैक की थी फरमाइश। और अब बारी है सतीश अनिजा की ईमेल की। इन्होंने विमला के साथ चंडीगढ़ से हमें मेल किया है। पॉसिबल प्लीज लेट अस हियर आवर सॉन्ग। पॉसिबल होता है तो जरूर चीजें पूरी करते हैं हम। यासीन अनजान जी का मेल आया है। साइमा हसन बाबू मिफ्रा और बेबी चाह सादिया के साथ में, और ये झारखंड से इन्होंने हमें मेल किया है। और सुदर्शन शाह का भी मेल आ चुका है, और इन्होंने प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्वनी मंगलाबेन राजेंद्र के साथ नेपानगर से हमें मेल किया है। और किसका मेल है, मंसूर हसन का भी मेल आ चुका है। साइना हसन नाजिया के साथ सहारनपुर कुमार हेड़ा के से इन्होंने हमें मेल किया है। सीबा बानो का मेल आ चुका है। उमरा हुस्मा श्रीनगर लखीमपुर से ये हमें मेल कर रही हैं। फूलों का गुलदस्ता भेजा है, और प्लीज़ न जाने कितनी बार लिखा है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं, और गाने की फरमाइश इन्होंने हमें भेजी है। और इनके साथ में नसीम मुनान और कुलदीप साथ में है। और अब बारी इस प्यारे से ट्रैक की।
1: नमः शिवाय। अरे कोई पूजा पाठ वाला भी तो ले जाओ हमें, ये चिड़ियाघर में यही मिला तुझे?
2: पूरे इंडिया का दर्शन करा रखे। चलो आ जाओ बेटा।
1: जय शिव शंभो।
2: जय शिव शंभो।

2:18 का वक्त, प्रोग्राम हॉट मेल में शालिनी है आपके साथ और ढेर सारे ईमेल्स मेरे साथ हैं। और क्या कहें क्या ना कहें कि आप मेल भेजें या ना भेजें, लेकिन हाँ भेजिए, देखा जाएगा, सभी के नाम एटलीस्ट तो सब तक पहुंचाए जाएंगे। और साथ ही मेल आ चुका है बुलडाणा से, महाराष्ट्र से आया है, और इन्होंने संतोष, तेजस, लोकेश, राजू और गजानन जी ने हमें मेल किया हुआ है। और मोहम्मद फरमान, सलमान, इफ्रान, इसरान, नरगिस खातून, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं, किसी भी गीत में इनका नाम शामिल कर लिया जाए। और मेल आ चुका है, किसका है?

आफ्ताब अंसारी का रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना आलिया के साथ गंज ढुणवारा उत्तर प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं, और किसका है, बोधराज खोरवाल जी का भी मेल आ चुका है, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी भानु प्रकाश गीतिका खोरवाल के साथ इन्होंने हमें मेल किया है। राजकोट गुजरात से कौशिक अस्मिता, मम्मी पापा महेश, बड़वाना परिवार से हमें मेल किया गया है। ये अच्छी लाइनें लिखते हैं ना, केम छो मालूम अच्छे कुछ इसी तरह से बोला जाता है ना आपकी तरफ। और किसका मेल आया हुआ है, बिट्टू गगनेजा जी का मेल है, सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित के साथ जलालाबाद से। भाई समय पे मेल करने के बाद भी हमें साइड लाइन में बिल्कुल नहीं किया, बारी आ रही है। हीरामणि वर्मा, पारस मनी, पुष्पेंद्र नोखेलाल भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं। शाहजी ने भी मेल कर दिया है, नंदा के साथ हनुमान बोड़खे और हिंगोली महाराष्ट्र से हमें मेल कर रहे हैं। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की, सुनिए और एंजॉय कीजिए।

अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल दीपिका और भाई सुच्चा सिंह पाठक जी ने हमें मेल किया था गाने की फरमाइश के साथ में। और इसके अलावा और मेल आ चुके हैं, ये संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता के साथ महाराष्ट्र से ये हमें मेल कर रहे हैं। रियाज फैजान का भी मेल आ चुका है और ये हमें कहाँ से मेल कर रहे हैं ऐसा कुछ इन्होंने नहीं लिखा है। और रियाज टिक्का मेरा दोस्त, रेहान फैजान, मतलब कई लोग हैं एक साथ जिन्होंने हमें मेल किया है। प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रांजलि, छत्रपति सामाजी नगर औरंगाबाद से हमें मेल कर रहे हैं। और सदानंद विराज, अंशुमन बेबी ओवी के साथ में इन्होंने हमें मेल किया है। राजेश वर्मा का भी मेल आया है और देखिए राजेश वर्मा कहाँ चले गए आप, ये प्रीति कार्तिक आर्यन, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। और भाई क्या लिखा है आपने ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और राजकुमार जूरी, प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र के साथ में फ्रांसी इजार से हमें मेल कर रहे हैं। ये भाई दो दो मेल जब आप कर देते हैं तो आपके ही मेल बार बार क्लिक होते हैं। विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर, रामगढ़ चीनी मिल, जिला सीतापुर से हमें मेल कर रहे हैं। शुभ दोपहरिया कह रहे हैं, इन्हें गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपने इन्होंने भी फरमाइश की है। और ये इनके कई सारे दोस्तों के नाम इन्होंने लिख लिए हैं और भाई हमने दोस्तों के नाम बता ही देते हैं। आजाद, सिमरी, ओमकार, संतोष, सुरभि, परवीन अंसारी, सीमा और ममता, कई सारे लोग हैं। जाकिर जी का भी मेल आ चुका है मुंगसापुर से, मंसूर जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, सबिस्ता, नसीम, पलका, लुबना, यश के साथ ये मेल कर रहे हैं। रोहित सक्सेना जी का भी मेल आया है, लखनऊ में बादल तो छाए हुए हैं मगर गर्म हवा चल रही है, थैंक यू मौसम का हाल बताने के लिए। और विजय पाल यादव जी का भी मेल आ चुका है, ललहौल जिला खीरी से इन्होंने हमें शुभम, ऋचा, शिखा, गुड़िया, सुरभि, राजेश, विजय पांडे जी के साथ मेल कर रहे हैं। और अब बारी इस प्यारे से ट्रैक की।

दोस्तों आप सभी सुन रहे हैं फिल्म रेनबो धड़कन लखनऊ की और प्रोग्राम हॉटमेल में शालिनी है आपके साथ। गुलाबसा सिद्दीकी का मेल आ चुका है संडीला से और इनके यहाँ अभी बारिश हुई है और अच्छा पत्थर भी गिर रहे हैं भाई, ध्यान रखिए आप अपना। ये नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाटू कोयल, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष और कोयल जुग्गू भौमिक का मेल आ चुका है। बाकी लोगों ने पानीपत से हमें मेल किया है और मोहम्मद रिजवान का संडीला से मेल आया है। फरिंदा हरदोई, आप कैसी हो? अच्छा, ये कुछ समझ में नहीं आया कि कहां कहां से आपने मेल किया हुआ है। रामराज का भी मेल आया है और इन्होंने ज़िला रायबरेली पहाड़ीपुर से मेल किया है। और राजू, भानु, पप्पू, मनीष, मिर्जा, इरमान, नीरज, रिजवान सभी लोगों ने मिलकर एक साथ मेल किया है। अहमद भाई फुलवाले मुंबई से, दुखनी सफ़त, आरजू, जुही, इकबाल, इमरान, बिठिया, आमना, नसरीन, आसमा, राबिया, मंतशा, आशु सभी लोगों ने एक साथ मेल किया है। दंद्रेंगी से भागवत वर्मा, शांति, लीलावती, विनीत, रुद्र ने मेल किया हुआ है। दीपेश वर्मा जी का भी मेल आया है। पूनम, ज्योति, शिवांश के साथ में पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हम

में मेल कर रहे हैं। और स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज का ठाकुरावाला से मेल आया हुआ है। तुलसी मस्कीन जी का भी मेल आया है। और क्या बात है, कहाँ से इन्होंने किया है, शाहदरा दिल्ली से वीना आशीष, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित केशु रिधान खुराना के साथ में मेल आया हुआ है। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास आशा जी का मेल आया हुआ है। भाई तुरंत मेल पढ़ा ही नहीं कि आपने तुरंत ही मेल फिर से एक कर दिया। सिद्धार्थ गुड़ा ने अर्चना ताई हीरामणि का मेल प्रणय प्रतिभा के साथ अमरावती से ये हमें मेल कर रहे हैं। और किसका मेल आया है, अमरावती महाराष्ट्र से ही हर्षा रामेकर दिल्ली, पक्षय रुद्रा रुचिका रामेकर परिवार की तरफ से मेल है। और ये मेल आ चुका है। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलहत जहां नाज, फरहत जहां रिफहत, नूर नुजरत जहां, साजिया शाहीन और नाजिया नूरजान। भाई इतने सारे नाम और सब में एक ही तुकबंदी वाले नाम, मतलब लग रहा है सभी बहने ही बहने हैं। क्यों, दिग्दर्शन कौर जी का भी मेल आ चुका है कविता गौड़ के साथ। मेरठ कैंट से इन्होंने हमें मेल किया है। कई सारे ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन के साथ गाने की फरमाइश भी की है। शंभू दयाल जी का मेल जाखौत से विमला देवी पूजा के साथ में आ चुका है। और संजय डिगिया जी का भी मेल नमन अपार के साथ में आया है। और बागपत उत्तर प्रदेश से ये हमें मेल कर रहे हैं। और मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, तन्वी, मानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितक, बलवीर का मेल दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। भाई दूसरा ही मेल है, अभी तो हमने इसी मेल को पढ़ा था। क्यों, शाहरुन और अंसारी का भी मेल आ चुका है मचकली जिला बरेली से। फरियाज, शकील, मोइन, तस्लीम, डीजे प्रधान के साथ। भाई फटाफट सोचते हैं ना कि आप सभी के मेल आप तक पहुंच जाएं। और ये राजेश वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा से मुन्ना भाई, अरे इनका तो मेल आ चुका है। कई सारे मेल आप भेज देते हैं भाई। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्षर, हरिद्वार से इन्होंने हमें मेल किया है। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की, सुनिए और इंजॉय कीजिए, उसके बाद हो सकता है आपकी पसंद का गाना हो।

49 मिनट और 23 सेकंड का वक्त हो चला है। ताज मोहम्मद जी का, अच्छा इनका मेल आ चुका था, राधे कुमार विद्यार्थी का भी मेल आया हुआ है और कई सारे लोगों के साथ बिहार से ये हमें मेल कर रहे हैं। धर्मेंद्र विश्वकर्मा जी का भी मेल लखीमपुर खीरी से आया हुआ है। शिवा लोधी का भी मेल आ गया है लखनऊ काकोरी से। सुरेश नागर का सहारनपुर से आशा नारंग के साथ में, और ये सुधाकर, राजीव जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश जाफराबाद से, ये हमें इतने सारे लोग मेल कर रहे हैं।

सागर का सहारनपुर से आशा नारंग के साथ में, और ये सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश जाफराबाद से, ये हमें इतने सारे लोग मेल कर रहे हैं, शंकर लाल जायसवाल और गणेश लाल, शुभम प्रसाद दुर्गेश्वरी के साथ में, ताला महाराष्ट्र से इन्होंने मेल किया है, प्रिंसी सिंह का भी मेल आया है, हरदोई से इन्होंने हमें मेल किया है, विजय लक्ष्मी कुशवाहा के नाम से है, और कौशल प्रजापति जी का भी मेल आ चुका है, और इन्होंने यशोदा नगर कानपुर से हमें मेल किया है, और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की, सुनिए और एंजॉय कीजिए।

और ये जो गाना था ना बारिश के लिए था, और सभी के यहाँ अक्सर कई सारे मेल आए हैं कि हमारी तरफ बारिश हो रही है, हमारी तरफ बारिश हो रही है, उन सब के लिए गाना। और जोन डिकोस्टर रोजी पर्ल विलिस जनकपुरी सहारनपुर से हमें मेल कर रहे हैं। और किसके किसके मेल हैं फटाफट से, एक मूसा जी का मोहसिन सनावत से मेल इन्होंने किया हुआ है। परवीन नानपारा गुजरात गांधी ग्राम से आया हुआ है, पूजा पायल जगदीश जोहरी के साथ में। और मेल सुनील पाठक जी आपने दूसरे मेल से फिर किया है। ये मेल है मोहम्मद आमीन जी का, और इन्होंने गंगागंज लखनऊ से इन्होंने हमें मेल किया है। प्रवीण मोहम्मद फैज़ भाई रिंकी पिंकी सभी के लिए इन्होंने हेलो बोला है। और किसके किसके मेल हैं और देख लेते हैं। अच्छा, ये मेल आया है इरफान गौरी जी का है, लहरपुर सीतापुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें मेल किया हुआ है। एक ही जैसे मेल हैं और सभी ने बार बार मेल करके रखा है। मेहर अरोरा जी का मेल है, और रणधीर गुप्ता हैं। बबीता रॉय जी का मेल आया है, टीटी मल्होत्रा जी का मेल है, रोशनी रावत है, नरेंद्र विजयपाल यादव का मेल आया, आफ्ताब अंसारी, गुरमीत, सुजीत, ब्रिजेश और रामेश्वर, पंकज शर्मा, सदानंद, शमशुल कमर राही और पूना जी नावकर का भी मेल है, मुकेश कश्यप का मेल आया हुआ है, और राजू मिगलानी, अनिल वर्मा, अहमद फुलवाले और सतीश अनेजा, दादर सिंह, गगनदीप थांदी और राधेश्याम शर्मा, महेंद्र प्रसाद मोदी और वकील अहमद, अनिल कुमार का मेल आया। सभी लोग ऐसे हैं ना जो फटाफट मेल कर देते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही कई सारे लोगों का मेल आ जाता है। तालिब अंसारी का भी मेल आया हुआ है, और कमलकांत गुप्ता, उत्तम कुमार भगत, अक्रम हुसैन, नितेश देवांगन, तनुजा और भाई, इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में भी शालिनी रहेगी।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही घरेलू दौरे के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। यह कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE में आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। अयोध्या के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में जनता दर्शन में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ समाधान किया जाए तथा पीड़ित व्यक्ति को त्वरित राहत उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नारखुर्द में आज दोपहर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम विभाग ने कानपुर नगर, उन्नाव, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आसपास के क्षेत्रों में भी तेज हवा के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। सोने और चांदी की कीमतों में आज 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सरकार ने सोने और चांदी का आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।

बजकर 10 मिनट और 55 सेकंड का वक्त दोस्तों, शुरू हो चुका है सतरंगी दुनिया प्रोग्राम। और जिस तरह से प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, उसी तरह से मौसम ने भी अपना रुख बदल लिया है। और रंगों का तो नहीं पता है, लेकिन हवाएं अजीबोगरीब चल रही हैं और कुछ कुछ बदला सा है, कुछ बदलने वाला है, कुछ इस तरह का मौसम नज़र आ रहा है।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव।
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

8:11 का वक्त हो चला है दोस्तों, मौसम का मजा लीजिए जैसे आप लेना चाहते हैं, लेकिन घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, कब क्या हो जाए किसी ने देखा नहीं है ना, कब पत्थर गिर जाए क्या हो जाए, घर पर रहकर आप चाय बनाइए और उसके साथ जो भी आपको पसंद है, हाँ चाय नहीं भी पियेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि अगर लंच नहीं किया है तो 3:30 टाइम हो चला है, अभी भी देर नहीं हुई है, फटाफट कर लें और इसके बिल्कुल ना करें और उसकी जगह किसी और को ना दें।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

मौसम को देखकर आपको कुछ याद आता है अपनों को, जब इसी पल हमने किसी अपने खास के साथ दिन को बिताया था। हाँ, वो जरूरी नहीं कि आपका प्यार हो, इश्क हो, मोहब्बत हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है। कभी हमने अपनी नानी के घर में ये पल बिताए हो, कभी मम्मी के पापा के साथ कहीं दूर घूमने गए हो, या अपने भाई बहनों के साथ। पल तो पल होते हैं, कभी भी याद आ जाते हैं। तो इस मौसम को देखकर कुछ उन बीते पलों को याद करें जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: हर रोज सफर की हमारी यूं शुरुआत होती है, सुबह 6 बजे पुष्पांजलि से पहली मुलाकात होती है, दिन भर का समय कैसे बीत जाता है, रेनबो अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है,
4: रंग दे
3: रात में तब सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है,
5: मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को।
3: तमाम सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर सुनना ना भूलें, सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
6: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.

किसी ने बहुत खूब कहा है कि ऐ मौसम तू जितना चाहे बदल ले, पर इंसानों जैसे बदलने का हुनर तुझ में कभी नहीं आएगा, है ना।

0: only 100.7 FM Rainbow.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: अरे अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये प्लेन
3: हो गया,
2: ये प्लेन क्रैश हो जाएगा.
4: हे भगवान,
3: कुछ खराबी आ गई लगता है इसमें. अरे अरे भाई, किसी को बचने की दुआ आती है क्या?
5: हाँ मुझे आती है.
3: अरे तो भाई आप दुआ कीजिए, पैराशूट वैसे भी है कम है.

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
2: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
3: जोर का झटका है जोरों से लगा।
1: अंदाज है सबसे निराला,
2: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
1: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

आपके यहाँ के मौसम का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ अगर हम अपने स्टूडियो से बाहर निकल कर देखें तो मौसम ने फिर से एक बार करवट ले ली है। जितना गर्म था वो फिर गर्मा गया है। और 3:54 और 54 सेकंड हो चले और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी अब आपको यहाँ से टाटा बाय बाय कहना होगा, क्योंकि अलका आ चुकी हैं नेक्स्ट प्रोग्राम को लेकर। तो आप रहेंगे उनके साथ। शालिनी करती है टाटा बाय बाय इस उम्मीद के साथ कि हमारा आज का साथ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट आपसे होगी मुलाकात किसी और दिन किसी और समय। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मौसम का आनंद ऐसे ही लेते रहिए।

नमस्कार, 4 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन

अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिससे पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। CBSE ने बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। औरैया जनपद में जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने 50 बेड अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं को परखा। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवाओं की स्थिति और मरीजों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अस्पताल में कुछ कमियां भी सामने आई हैं, जिन्हें तत्काल दूर करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। UPSTF की टीम ने मेरठ जिले के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह 1,00,000 रुपए की इनामी बदमाश जुबैर को मुठभेड़ में मार गिराया। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शिक्षक की हत्या में फरार चल रहा था। एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक विमल कुमार सिंह ने बताया कि जुबैर कुख्यात मुनीर गैंग का सक्रिय सदस्य और हत्या, लूट और डकैती सहित 24 से अधिक संगीन अपराध दर्ज थे। मौसम विभाग ने पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कई स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कल से अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। इस बीच सीतापुर और कानपुर देहात में कुछ स्थानों पर आज दोपहर तेज आंधी और बारिश के साथ कई स्थानों पर ओले गिरने का समाचार प्राप्त हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

With this beautiful track, आगाज हो गया है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम यूथ वेव का और आज आपके साथ यूथ वेव में पूरा एक घंटा मैं रहूंगी। मैं कौन? मैं हूँ आपकी आरजे दोस्त सलका और 100.7 FM रेनबो पर आज यूथ वेव में करेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई होंगी। तो आज बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में साइंस अर्थ साइंस के बारे में, बहुत सारी ऐसी बातें तो शायद अभी तक आपको नहीं पता है, शेयर करूंगी आपके साथ। ट्यून रखिए 100.7 FM रेनबो विद आरजे।

जी हाँ, हम बात कर रहे थे अंतरिक्ष के बारे में कि आज आपके साथ शेयर करेंगे अंतरिक्ष की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता हो या शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में पता नहीं होगा, या कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ नाम तो सुना है लेकिन एक्चुअल में ये क्या है इसके बारे में नहीं पता है। पूरी कोशिश होगी मेरी कि इसके बारे में आपको सही और सटीक जानकारी मैं देने की कोशिश करूँ। हमेशा से जब भी अंतरिक्ष की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी बनी होती है, एक जिज्ञासा बनी होती है, कौतूहल बना होता है मन में कि क्या होगा वहाँ पर, ऐसा होगा अंतरिक्ष। जो लोग जाते हैं और वहां से आपको ये पता चलता है कि अंतरिक्ष में एक्चुअल में क्या चीजें हैं जो देखने लायक हैं, उनके क्या रहस्य हैं, उनमें क्या छिपा है। तो जो भी वैज्ञानिक वहां तक पहुंचते हैं, जो भी एस्ट्रोनॉट वहां तक पहुंचते हैं, उनके जरिए हमें वहां की सही जानकारी मिल पाती है। इतनी विशाल दुनिया है हमारी, कितनी बड़ी दुनिया में बाहर से ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो छिपे हैं, अभी भी रहस्य ही हैं। आज भी वैज्ञानिकों को ये रहस्य हैरान करते आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लैक होल से। जी हाँ, ये वही ब्लैक होल है जिसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन ब्लैक होल ही क्यों कहते हैं इसे और

क्या खासियत है इसमें जो अंतरिक्ष में ये है, और ये एक्चुअल में कैसा दिखता है, क्या होगा यहाँ पर? ये अंतरिक्ष का एक्चुअल में वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पर एक कहते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स, एक गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि प्रकाश जो लाइट है वो भी इससे बाहर नहीं आ सकता है। इसमें एक घटना क्षितिज यानी कि इवेंट हॉरिजोन है, ये ब्लैक होल की वो सीमा है, यानी कि ब्लैक होल में ही एक घटना क्षितिज होता है जिसे हम इवेंट हॉरिजोन कहते हैं। ये ब्लैक होल की वो जगह, वो सीमा होती है जहां से अगर एक बार कोई चीज अंदर चली जाती है तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकती, नेवर। और एक रहस्य की बात यह कि इसमें केंद्र में जो पदार्थ होता है वो इतना ज्यादा सघन होता है कि जो फिजिक्स के सारे नियम यहां पर आकर काम करना बंद कर देते हैं। एक्चुअल में जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, इन सब में छिपे रहस्य ही ऐसे हैं कि जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इनमें कहीं ना कहीं आपको वो रहस्य छिपे मिलते हैं जहां पर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर ही देता है। ऐसे और भी बहुत से रहस्य भी शेयर करूंगी आपके साथ, कुछ बातें बताऊंगी आपको हमारे अर्थ साइंस से जुड़ी हुई। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो विद आरजे अलका।

4:16 हो चुके हैं दोस्तों, और अब आगे अगली जानकारी की तरफ आगे बढ़ना है। अगली बात जो मैं आपके साथ अंतरिक्ष से जुड़ी हुई शेयर करने वाली हूँ वो क्या है, चलिए बताते हैं आपको डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में कि आखिर डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है, जो ये दोनों ही शब्द अंतरिक्ष से जुड़े हुए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि रात के आकाश में जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं और धूल के बादल दिखते हैं वो पूरे ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा होते हैं। बाकी का 95% हिस्सा जो है वो आज भी अदृश्य है और इसे ही हम डार्क मैटर कहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 27% जो डार्क मैटर का हिस्सा है ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है, लेकिन इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बिना आकाश गंगाएं एक साथ नहीं रह सकते और इसे ही हम डार्क मैटर कहते हैं। डार्क मैटर एक इस तरह का पदार्थ होता है जिसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और उसी की वजह से जितनी भी आकाश गंगाएं पूरे ब्रह्मांड में घूम रही हैं वो सब एक साथ होती हैं। अगर ये डार्क मैटर नहीं होगा जो कि 27% अंश के साथ है तो फिर आकाश गंगाओं में ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा और वो इस तरह से पूरी ब्रह्मांड में नहीं घूम सकेगी। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की जो कि 68% होती है। जी हाँ, ये एक ऐसी कह सकते हैं रहस्यमय ऊर्जा है जो कि पूरे ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है, यानी कि ये एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, इसलिए इसे डार्क एनर्जी कहते हैं और इसका जो प्रतिशत है वो 68% यानी कि 68% है। फिलहाल 4:18 हो चुके हैं और खूबसूरत गानों का सिलसिला अभी लगातार जारी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

0: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय नई दिल्ली में निदेशक इंजीनियरिंग का एक पद रिक्त है, जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि संबंधी विवरण पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.shipmin.gov.in पर करियर लिंक के अंतर्गत मंत्रालय में रिक्ति लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक एवं पात्र अधिकारी अपना आवेदन इस पते पर भेज सकते हैं। अवर सचिव प्रशासन पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 439, परिवहन भवन 1, संसद मार्ग नई दिल्ली 110001। अंडमान लोक निर्माण विभाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए अधीक्षण अभियंता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। केवल एक पद पर रिक्ति उपलब्ध है और पद 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। आवेदन पत्र मुख्य अभियंता कार्यालय APWD निर्माण विभाग श्री विजयपुरम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र अंडमान और निकोबार प्रशासन तथा APWD की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसका पता है andamannicobar.gov.in तथा apwd.and.nic.in। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। समूह महाप्रबंधक उत्पादन, समूह महाप्रबंधक परियोजना, महाप्रबंधक गुणवत्ता, महाप्रबंधक अनुसंधान एवं विकास तथा महाप्रबंधक मानव संसाधन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.midhani-india.in। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। लोक अभियोजक एक पद नई दिल्ली के लिए, आशुलिपिक श्रेणी 1 और निजी सहायक कुल 4 पद, जिनमें से 1 पद भोपाल तथा 1 पद कोलकाता के लिए रहेगा, जबकि 2 पद नई दिल्ली के लिए रहेंगे। उच्च श्रेणी लिपिक 1 पद भोपाल मध्य प्रदेश के लिए, आशुलिपिक श्रेणी 3 2 पद, जिनमें से 1 पद नई दिल्ली के लिए और 1 पद मुंबई के लिए है। उपारक्षी वन रक्षक 1 पद चेन्नई और चेन्नई क्षेत्र, ड्राइवर 1 पद कोलकाता तथा 1 पद चेन्नई के लिए। संपूर्ण विज्ञप्ति और विवरण मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसका पता है moef.gov.in। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आवेदक श्री संजीव कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक प्रशासन वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ब्यूरो मुख्यालय से ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ईमेल का पता है adadm@wccb.gov.in। फोन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 011-208-6273 तथा मोबाइल नंबर है 9415911667। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
0: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
0: जहां हर घर में बचता है 100.7 एफएम रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

वेल फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आगे कौन सी ऐसी रहस्यमय चीज है जिसके बारे में अभी तक आप शायद नहीं जान पाए हैं। जी हाँ, बात करेंगे अंतरिक्ष से जुड़े हुए उस वाव सिग्नल के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मैंने वाव सिग्नल ही कहा है। वाव सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों ने कैच किया था। एक मजबूत और असामान्य सिग्नल था ये, जिसे पकड़ा था और अंतरिक्ष से ये 72 सेकेंड का एक बहुत ही मजबूत और असामान्य सिग्नल जो है वो पकड़ा गया था। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से 72 सेकेंड का एक बहुत ही मजबूत, स्ट्रांग और असामान्य सिग्नल पकड़ा था। और अब ये वाव सिग्नल कैसे बना इसके बारे में भी आपको बताया है। लेकिन ये सिग्नल आया कहाँ से था, इतना तो अंतरिक्ष में पता लगा लिया गया था कहाँ से ये आया है। ये सिग्नल धनु तारा मंडल की दिशा के साइड से आया था और वैज्ञानिक जेरी अहमद ने इस सिग्नल के प्रिंटआउट पर, जो सिग्नल का जो प्रिंटआउट था उस पर लाल रंग से वाव लिख दिया था। और आज तक ये वाव सिग्नल बनकर रह गया। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये जो सिग्नल आया था वो किसी नेचुरल यानी किसी प्राकृतिक घटना से आया था, उसके थ्रू ऐसा हुआ था, या किसी दूसरी सभ्यता की द्वारा इस मैसेज को भेजा गया था धरती पर, जिसे वैज्ञानिक जेरी अहमद ने नाम दे दिया था वाव सिग्नल।

चार बजकर 38 मिनट और 20 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों, और आज आप इंजॉय कर रहे हैं यूथ वेवलका के साथ, और हम कर रहे हैं साइंस एंड अर्थ टेक के बारे में ढेर सारी बातें, और खासकर आज हम बात कर रहे हैं अर्थ साइंस के बारे में, अंतरिक्ष से जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे रहस्य जो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है 107 FM रेनबो के माध्यम से।

0: रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अरे गाड़ी रोको, ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, चालान काटना पड़ेगा तुम्हारा तो। अरे नाम बताओ अपना।
2: याज्ञवल्क्य दास रामानुजम स्वामी युधिष्ठु।
1: क्या क्या? अच्छा चलो चलो चलो, अब की बार छोड़ रहा हूँ, फिर कभी सिग्नल नहीं तोड़ना।
3: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
4: शाम होने को है।
3: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो गया है अगली ऐसी बात आपके साथ शेयर करने का जो कि अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है, और आपको बताएंगे फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में। क्या है ये फास्ट

रेडियो बर्स्ट, ये अंतरिक्ष के बहुत दूर के कोनों से आने वाली रेडियो तरंगों के बहुत छोटे छोटे और बहुत पावरफुल विस्फोट होते हैं। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि ये वे केवल कुछ मिली सेकेंड्स तक ही रहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा एनर्जी छोड़ते हैं जितनी हमारा जो सूरज है वो कई दिनों में जाकर पैदा करता है। इतनी एनर्जी इन छोटे छोटे विस्फोट के अंदर होती है, इन छोटे छोटे कणों के अंदर होती है, इन तरंगों के अंदर होती है, और ये विस्फोट करते हैं कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर। और इनका जो ओरिजिन क्या है, इनका स्रोत क्या है, इसके बारे में पता लगाने में वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं, लेकिन आज भी उनके लिए ये एक पहेली ही है कि ये छोटे छोटे फास्ट रेडियो बर्स्ट आखिर आ कहाँ से रहे हैं और इनका स्रोत क्या है। लेकिन एनर्जी की अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा है कि जितना हमारा सूरज कई दिनों में पैदा करता है। तो बहुत सारे रहस्यों से भरा है हमारा यह प्यारा सा अंतरिक्ष, और अगली जो जानकारी आपको देंगे एक्सोप्लैनेट्स के बारे में। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं आपके पास।

और अब बारी आती है नंबर एक की, जिस पर जगह बना ली थी 1969 में रिलीज हुई एक बेहद सफल और क्लासिक बॉलीवुड फैमिली ड्रामा फिल्म ने। ये फिल्म राजेश खन्ना के करियर की उन लगातार 15 हिट फिल्मों में से एक है जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ और लता जी की आवाज के साथ नंबर एक पर था फिल्म दो रास्ते का ये खूबसूरत सा गाना। तो आइए इसे नंबर एक पर करते हैं एंजॉय, और फिलहाल आज के प्रोग्राम को इस सॉन्ग के साथ ही वाइंड अप करते हैं। टॉप 10 में फिर लेकर आऊंगी आपके लिए 10 खूबसूरत गाने किसी और एरा के। फिलहाल स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो और इस नंबर एक के गाने को चलिए एंजॉय करते हैं।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना मंजूर की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 7,50,00,000 टन कोयले और लिग्नाइट के गैसीकरण के लिए सिनगैस और संबंधित उत्पादन के लिए नई कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अनुमानित निवेश 3,00,000 करोड़ रुपए का होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन में कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय, शोध, छात्र कल्याण तथा कृषि प्रसार गतिविधियों की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए एक प्रभावी SOP तैयार कर विकास कार्यों को समयबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य की स्पष्ट कार्य योजना बनाकर उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मथुरा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वृंदावन पहुंचकर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बीच उप मुख्यमंत्री गौग्राम परखंबी गए, जहां उन्होंने समिति के विभिन्न प्रकल्पों का लोकार्पण किया। श्री मौर्य ने कहा कि आने वाले समय में ये केंद्र प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का महत्वपूर्ण अनुसंधान

केंद्र बनेगा। गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। वहीं महोबा के जिलाधिकारी गजल भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और आगामी कार्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। उन्नाव, जौनपुर और संतकबीर नगर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
6: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
7: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
6: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आगाज हो गया है एक बार फिर से आपके साथ है आपकी रेडियो साथी अलका और शामी अवध में होंगी ढेर सारी वो बातें जो आपके अपने सिटी आपके अपने शहर से जुड़ी हुई होंगी। तो चलिए इन धमाकेदार गानों को एंजॉय करते चलते हैं और साथ में शेयर करेंगे आपके साथ आपके ही शहर से जुड़ी हुई ढेर सारी गतिविधियां ढेर सारी बातें बहुत सारी अपडेट्स। सो स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो विद आरजे अलका।

तो चलिए भाई अगली अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि आज के शामी वक्त की पहली अपडेट। तो भातखंडे यूनिवर्सिटी से आ गई है ये जानकारी। तो भातखंडे यूनिवर्सिटी यानी कि भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के सत्र 2026-27 पीएचडी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं वहां से और पीएचडी करना चाह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है आपका और आप पीएचडी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। डेट आपको बता दे क्या है, 25 जून जो है वो इसकी डेट है। और नृत्य गायन और वादन के लिए आप समर्थ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको जो वेबसाइट है वो बता देते हैं, www.bhatkhandeuniversityadm.samarth.edu.in पर आप जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है वो 25 जून इसकी रखी गई है। एक बार फिर से आपको वेबसाइट बता दें, www.bhatkhandeuniversityadm.samarth.edu.in ये पूरी इसकी वेबसाइट है, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए सत्र 2026-27 के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। और 25 जून इसकी जो लास्ट डेट है वो अंतिम तिथि रखी गई है। तो फिलहाल अब वक्त हो गया है अगले गाने को एंजॉय करने का। ये सिलसिला तो अभी पूरे एक घंटे चलेगा आपके साथ शाम अवध में।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow,
3: धड़कन लखनऊ की।

चलिए अगली अपडेट का वक्त हो गया है। आपको बता दें ये जो अगली जानकारी है वो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में लोक अदालत 21 अगस्त से होगी और इस लोक अदालत का लाभ आप उठा सकते हैं, क्योंकि लंबित वादों के निस्तारण के लिए 21 से 23 अगस्त तक लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया जाएगा। और अपने मामले को अगर आप इसका समाधान चाह रहे हैं तो समाधान समारोह में शामिल आप करना चाहते हैं तो www.sci.gov.in पर गूगल फॉर्म लिंक पर आप जाकर 31 मई तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं और 21 से 23 अगस्त तक ये लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 21, 22 और 23 ये 3 दिन अदालत का आयोजन होगा। अभी इसमें काफ़ी वक्त है, अगर आप इसमें अपने लंबित मामलों को निस्तारण चाह रहे हैं जो भी आपके वादे हैं तो उसमें आप समाधान समारोह में शामिल होने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, जिसमें आपको इस साइट पर जाकर गूगल फॉर्म लिंक पर आपको फॉर्म भरना होगा। 31 मई इसकी लास्ट डेट है और वेबसाइट है www.sci.gov.in पर आप जाकर इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट जो डेट है वो 31 मई है।

सो माय डियर लिसनर्स, अगली जानकारी आपको दे देते हैं जो कि IRCTC यानी रेलवे से जुड़ी हुई है और एक बहुत खास जानकारी जिसके चलते बहुत सारी जो ट्रेन्स हैं उनका जो आवागमन है वो डिस्टर्ब्ड है, इस समय बाधित है। और अगर आप इन ट्रेनों में सफर करते आ रहे हैं, अक्सर करते हैं या करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल ये जानकारी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये बात नहीं पता चलेगी तो आपको इसका परिणाम भी फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा अभी इस वक्त चारबाग स्टेशन पर कॉन्कोर्स निर्माण के कार्य के चलते 15 मई से 23 जून तक यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने से भी ज़्यादा समय लगेगा, इस प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर मेगा ब्लॉक रहेगा, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 इस वक्त बंद रहेगा। और इसी वजह से कुछ ट्रेन जो इन प्लेटफॉर्म नंबर्स पर आती हैं इनमें फेरबदल किया गया। इस दौरान झांसी इंटरसिटी चारबाग नहीं आएगी और कानपुर सेंट्रल पर ही अपनी यात्रा को कंप्लीट करेगी, यानी कि झांसी से लखनऊ और लखनऊ से झांसी चलने वाली इंटरसिटी जो है उसमें चेंजेस किए गए हैं। इसमें अब ये झांसी इंटरसिटी जो है वो चारबाग स्टेशन तक नहीं आएगी, ये कानपुर पर ही अपनी यात्रा को कंप्लीट करेगी। और वहीं शाहजहांपुर और बालामो इंटरसिटी अब चारबाग के बजाय आलमनगर स्टेशन से चलेगी। ये जो ब्लॉक किया गया है उसकी वजह से मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट, ओखा एक्सप्रेस और अयोध्या कैंट दिल्ली सहित 12 ट्रेनें इसमें शामिल हैं जिनके मार्ग में बदलाव किया गया है, जबकि 38

ट्रेनों के जो प्लेटफॉर्म नंबर्स हैं उनको बदला गया है। 40 दिनों तक अभी ये काम चलने वाला है, तो उसकी वजह से इस ब्लॉक में प्लेटफॉर्म्स पर जो काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़े से फेरबदल किए गए हैं ट्रेनों के आवागमन में। तो अगर आप लगातार इन ट्रेनों से सफ़र करते आ रहे हैं या करते हैं या फिर करने वाले थे, तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था कि ये फेरबदल इन ट्रेन के समय में किया गया है। फिलहाल खूबसूरत सा गाना एंजॉय करेंगे और वापस आएंगे आपके पास अगली अपडेट के साथ। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अरे दामाद जी, थोड़ी सब्जी और लीजिए।
2: अरे नहीं नहीं सासुमा, वैसे आज खाना आपने बनाया है ना सासुमा?
1: हाँ दामाद जी, मैंने बनाया है, बहुत अच्छा बना है ना?
2: नहीं नहीं ऐसा नहीं है।
1: फिर?
2: अरे रोज खाने में काला बाल निकलता था, आज सफेद बाल निकला है।
1: क्या?
2: हाँ। वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो।

0: इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
7: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

और दोस्तों 6:38 हो चुके हैं और 2 सेकंड भी हो गए हैं। और चलिए अब कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें हो जाती है। कुछ परीक्षा से जुड़ी हुई अपडेट आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की सत्र जून 2026 की परीक्षाएं प्रदेश के 156 केंद्रों पर 14 मई से शुरू होंगी, यानी कि कल से ये परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। और इन केंद्रों में 4 जिला और केंद्रीय कारागार भी शामिल हैं। और इसके अलावा परीक्षा में 65,000 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। इन परीक्षाओं में 156 केंद्र होंगे और ये जानकारी जो है आप तक पहुंचानी है। परीक्षा जो है वो 3 जून तक चलने वाली है। कल से शुरू होकर 3 जून तक ये जो परीक्षाएं हैं वो चलेंगी और 3 पालियों में ये एग्जाम्स होंगे। आपको बता दें कि सुबह 7 से 10 पहली पाली होगी, दूसरी सुबह 11 से 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक ये पाली होगी। 3 पालियों में एग्जाम्स लिए जाएंगे। 14 मई से शुरू होकर 3 जून तक जाएंगी ये परीक्षाएं, जो कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सत्र जून सत्र की 2026 की ये परीक्षाएं हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल ये अपडेट का सिलसिला लगातार शाम अवध में जारी रहेगा। अब जो है वक्त हो गया है गाने को एंजॉय करने का। सो स्टे ट्यून्ड 107 FM रेनबो।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

6:49 हो चुके हैं दोस्तों, और अगली अपडेट आपको बता दें, भी एग्जाम से जुड़ी हुई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग गन्ना पर्यवेक्षक के 1,182 पदों पर भर्ती होने वाली है, और अगर आप इस भर्ती में इंटरेस्टेड हैं तो 7 से 28 जुलाई तक आवेदन ये लेगा, और कुल पद जो है वो 1,000 इन पदों पर सामान्य और 182 विशेष चयन के हैं। सो आवेदन जो है आपके वो संशोधन इनका 4 अगस्त तक किया जा सकेगा। आवेदन के लिए जो प्रारंभिक अर्हता आपकी परीक्षा है PGT 2025 की, वाले पात्र माने जाएंगे जो भी अभ्यर्थी हैं। और आयोग के बारे में आपको ये भी बता दें कि आवेदन जो है वो आयोग की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, upssc.gov.in पर ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। PET मेरिट में शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में ही शामिल करने का मौका दिया जाएगा, और बहुत ज़्यादा शुल्क भी नहीं है, आपसे एक नॉमिनल शुल्क इसमें वसूला जा रहा है, ₹25 शुल्क इसका रखा गया, सभी वर्गों के लिए सामान्य शुल्क रखा गया है। तो अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा गन्ना पर्यवेक्षक के जो 1,182 पद हैं उन पर भर्ती होने वाली है, तो 7 से 28 जुलाई तक आवेदन इसमें लिए जा रहे हैं। अभी वक्त आपके पास काफ़ी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल इसका लाभ

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा। डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan, Lucknow ki.
4: Kabhi alsai dopahar ki ruswai, to kabhi dhalti hui sham ki angdai.
5: Sham hone ko hai.
4: Pyar ki barish, mohabbat ki thandak, ishq ki aahein, tanhai ka ehsaas.

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: और फिलहाल इस गाने के साथ प्रोग्राम शामी अवध को वाइंड अप करते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अब एक घंटा पूरा आपके साथ रहूंगी और अगला वाला जो पूरा 1 आवर है वो बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें हम आपकी पसंद के गानों को आपको सुनवाएंगे। लेकिन कैसे वो गाने

नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल MSP होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री मंत्रियों और अन्य लोगों के वाहनों के बड़े बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने का भी निर्देश दिया। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्यक्ष अध्ययन भ्रमण के सभी कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में जनभवन में कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय, शोध, छात्र कल्याण और कृषि प्रसार गतिविधियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री 16 मई को गोरखपुर के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। CBSE के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं अव्वल रहीं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौ

अकेले भाई प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार कल लखनऊ के पिपरा घाट पर किया जाएगा। उनका आज सुबह निधन हो गया था। मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव ने लखनऊ में उनके घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। धार्मिक पर्यटन को सुगम बनाने के लिए उरई से चित्रकूट धाम करवी तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सीधी बस सेवा आरंभ की गई है। चित्रकूट और जालौन प्रशासन ने यह निर्णय लिया। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं चलने और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। उन्नाव, कानपुर देहात, सीतापुर और मिर्जापुर में ओले गिरे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.

जी हाँ, ये है खूबसूरत गाना मेरी पसंद का। लेकिन आपकी पसंद का गाना आप कब सुनेंगे? मिलाइए 2238852 या 2238845 और मिलाइए इस प्रोग्राम एल एफ एम में फोन और अपनी पसंद के गानों को एंजॉय कीजिए 100.7 FM रेनबो पर, क्योंकि इस पार बैठी है आपकी आरजे साथी अलका।

0: से और उनकी पसंद के ट्रैक को करते हैं एंजॉय। पहले देखते हैं कौन है और कहां से इन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो
1: हेलो। हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
1: हम संतू बोल रहे हैं दीदी।
0: संतू जी कहाँ से बोल रहे हैं।
1: अच्छा दीदी, हाँ हम जान रहे हैं, गाना आपने जब कॉल उठाया था दीदी, आपने कहा था लाइन पे बने गाने की आवाज आती है, अब रेडियो से जो रहा है ना आपने दीदी।
0: हाँ हाँ, आपसे हमारी लाइन पर बात ही हो रही है, डायरेक्टली आपकी आवाज इस वक्त रेडियो पर है।
1: गाना सुन रहे थे जो आप चला रखे थे।
0: ओके, तो आज आप अपनी पसंद का गाना बताइए, कौन सा सुनना चाहेंगे
1: आप। पहले तो मैं आपका नाम अलका दीदी बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, मैं अलका बोल रही हूँ।
1: मैं पहचान लिया आपको, जो शामे अवध लेके आई थी ना, 4 बजे से हैं आप तो ड्यूटी।
0: हाँ जी, मैं 4 बजे से हूँ और शामे अवध आपने एंजॉय किया मेरे साथ।
1: और 3 ट्रैक भी लेकर आई थी आप ही आई।
0: हाँ
1: थी
0: जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल
1: शामे अवध और हेलो एफएम।
0: बिल्कुल।
1: और दीदी कैसे हो आप।
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ संतु जी, और बताइए आपके क्या हाल चाल है।
1: बस हम भी बढ़िया जी, आपके सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं रेनबो के।
0: थैंक यू सो मच। और रेनबो आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता है ताकि आप उन प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकें।
1: दीदी
0: और गाना कौन सा सुनेंगे संतु जी।
1: और सब बढ़िया है, आज मैंने गाना अच्छा सुन के रखा है दीदी।
0: हाँ हाँ बताइए कौन सा सुनेंगे।
1: ए, रंग पिक्चर का दीदी।
0: रंग पिक्चर का कौन सा सॉन्ग।
1: इतना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, इसमें दिव्या भारती है।
0: और किसको एंजॉय करवाना चाहते हैं ये ट्रैक अपने साथ साथ। नहीं नहीं, किसको डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: सबसे पहले तो अलका दीदी आपको
0: थैंक यू।
1: और एक कानपुर कानपुर में है कि पूनम, उनका भी कॉल कई बार आता है एफएम पे।
0: हाँ हाँ।
1: और रायबरेली से एक तो जो कॉल करती है एक दो, उनका रिंकी टिंकी उनको।
0: हाँ हाँ, ओके।
1: और जो आपके आरजे हैं और एक मोना दीदी है ना।
0: हाँ,
1: मोना दीदी।
0: हाँ हाँ।
1: और एक चंद्रकला दीदी को।
0: ओके।
1: और सभी को
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए संतु जी, आपकी
1: दीदी,
0: पसंद
1: का। हाँ हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है दीदी।
0: हाँ हाँ बताएं।
1: पूरा गाना सुनवाइएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरा ट्रैक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: सो फ्रेंड्स, 7:15:13 हो चुके हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे करते हैं बात। हेलो।
4: हेलो,
3: हाँ जी, कौन बोल रही हैं?
4: जी मैम, रेसु तिवारी बोल रही हूँ, ग्राम पोस्ट। मेरे गांव का नाम है चिरुवा, मैं रहने वाली, मेरे गांव का नाम मैम चिरुवा, जिला लखनऊ, थाना बंथरा से बोल रही हूँ। मैं
3: बंथरा से बोल रही हैं, रेशु।
4: जी जी जी, okay. आज मैम मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि आज मेरा दोपहर 11 बजे भी फोन लगा था, आज इतने टाइम भी लग गया।
3: ओके गुड। सो रेशु क्या करती हैं आप?
4: मैं हाउसवाइफ हूँ।
3: ओके रेशु, आज कौन सा गाना सुनेंगी?
4: मैं गाना सुनना चाहती हूँ, मुझे फिल्म का नाम नहीं मालूम है, मगर ये गाना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। आज मेरे पास का मतलब 12 साल पूरे हो गए हैं, 13वां साल लगेगा एक्सपायर हुए, तो ये मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
3: So sad. तो ये बहुत खूबसूरत गाना जगजीत सिंह की आवाज में ट्रिब्यूट है आपकी।
4: हेलो मैम।
3: हाँ हाँ, किसको सुनवाना चाहती हैं? और इसके अलावा ट्रिब्यूट तो आपके फादर को है ही, लेकिन उसके अलावा किसको आप सुनाना चाहती हैं ट्रैक?
4: मैं सभी सुनने वालों को डेडिकेट करना चाहती हूँ, और मैम आप मेरे बेटे से बात कर लीजिए।
3: हेलो
4: हेलो हेलो
3: हेलो
4: जी मैम, मेरा एक बेटा है, वो शैतान, उससे बात कर लीजिए आप थोड़ी सी।
3: शैतान है वो?
4: जी बहुत शैतान है वो।
3: अच्छा जी।
5: हेलो
3: हेलो
5: जी मैम, नमस्ते।
3: नमस्ते, प्यारे बेटे का क्या नाम है?
5: कार्तिक तिवारी।
3: कार्तिक?
5: यस मैम।
3: ओके सो कार्तिक, बहुत प्यारी आवाज है आपकी, किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं आप?
5: स्कूल
3: का नाम तो आपने बता दिया, क्लास नहीं बताया, किस क्लास में पढ़ते हैं?
5: यूकेजी।
3: यूकेजी में, दैट्स वेरी गुड। सो अब तो छुट्टियां होने वाली है कार्तिक की, है ना? हेलो
4: हेलो।
3: हाँ जी। सो रेशु,

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति कुंतल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।

0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य के लिए 2441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे के लिए 2900 प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8450 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 8780 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताया है। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
1: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था, हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर्णा यादव के घर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
4: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश

0: दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। मुख्य सचिव SP गोयल ने आज जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सीतापुर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरे, कई जगहों पर पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अमरोहा में भी दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति कुंतल होगी MSP। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। CBSE के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रहीं अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: तो फ्रेंड्स वेलकम बैक. 7:33:20 हो चुके हैं और अलका आपके साथ है आज के हेलो एफएम में. और हम खूबसूरत गानों को एंजॉय कर रहे हैं, वो गाने जो हैं हमारी लिसनर्स के पसंद के. तो अभी हमारे पास एक कॉलर हैं जो अपनी पसंद के साथ शामिल हो रहा है हमारे प्रोग्राम में. तो आइए नाम और पता जानते हैं और जानते हैं उनकी क्या है पसंद. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम
1: वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रही हैं? लखीमपुर खीरी से. शाहिबा
2: जी.
1: ओके. क्या करती हैं आप?
2: हम तो सिलाई करते हैं, इसलिए हम लाइव सुना रहे हैं.
1: ओके. सो आज गाना कौन सा सुनेंगी?
2: नया बदलना जाना मौसम की तरह.
1: वो भी तलाश अक्षय कुमार के खूबसूरत गानों के साथ. तो बताइए गाना किसको सुनवाना चाहती हैं साहिबा?
2: गाना सुनाना चाहते हैं अपने भाई और बहनों को सुनाना चाहते हैं. सबसे

0: मैम आपको भी सुनाना चाहते हैं,
1: थैंक यू,
0: और रिचा मैम जो आने वाली है उन्हें को भी सुनाना चाहते हैं।
1: रिचा मैम को भी सुनवाना चाहती हूँ। ओके
0: रिचा मैम,
1: अगर बिल्कुल रिचा मैम भी आपका प्रोग्राम सुन ही रही हैं तो बिल्कुल आपका ये ट्रैक जो आप डेडिकेट कर रही हैं उनको वो जरूर सुनेंगे।
0: रिचा मैम के प्रोग्राम है बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अभी आ रही हूं,
1: नो डाउट सो ब्यूटीफुल ट्रैक। आइए साहिबा के साथ।
0: मोहम्मद फैज भाई हैं, वकील अहमद मंसूरी भाई हैं, बाबू अंसारी भाई हैं, जावेद अख्तर भाई हैं, तालिब अंसारी भाई हैं, और गुलशन से देखी आती हैं, सीमा परवीन अंसारी आती हैं, निशा अंसारी हैं, साजिया अंसारी हैं, रिंकी पिंकी, सभी लोगों को सुनाना चाहती हूं।
1: सभी लोगों को। ओके थैंक यू सो मच साहिबा कॉल करने के लिए।
0: थैंक यू।

0: जी हाँ दोस्तों, आज प्रोग्राम हेलो एफएम अलका के साथ एंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, तो चलिए करते हैं उनसे बात और जानते हैं उनका नाम पता। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार।
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं?
1: हम जिला पंचायत ग्राम पोस्ट रेडियो के पुराने
0: शिवम बोल रहे हैं। ओके शिवम, बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका।
1: जी दीदी जी, सबसे पहले नमस्कार।
0: नमस्ते जी शिवम, आज ये बताइए क्या है पसंद आपकी?
1: हाँ जी दीदी, और कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ
1: जी दीदी। आज हमारी पसंद बन रही है फिल्म का नाम है विघ्नेश सूर्यात्रिया।
0: हाँ हाँ,
1: और गाना गुनगुना सकते हैं दीदी जी?
0: बिल्कुल सुना सकते हैं, आपकी पसंद की का गाना प्ले करने के लिए प्रोग्राम बना है। बताइए कौन सा सुनना है आपको, दिल ने फिर याद किया फिल्म का।
1: दीदी सबसे पहले डेडिकेट करना चाहेंगे
0: हाँ
1: रिंकी पिंकी बहन जी को।
0: ओके।
1: और अपने बड़े भाई सत्यनारायण गोरवाल जी को। और समा परवीन अंसारी जी को। और गुलाफशा अंसारी जी को, मोहम्मद फैज जी को, और सभी सुनने वालों को, और आपको भी दीदी गाने के बोल रहे हैं। दिल में चिड़िया चिड़िया बरसती लहराई है, फिर कोई छोटी मोहब्बत की उभर आई है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शिवम, आपने इसका टाइटल ट्रैक आप सुनना चाह रहे हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, तो आइए इस खूबसूरत गाने को आपके साथ एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। हाँ जी,
1: गुड इवनिंग दीदी।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए शिवम।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: वेलकम फ्रेंड्स, 7:44 हो चुके हैं, कॉलर हमारे साथ हैं, चलिए उनसे करते हैं बात। हेलो। हेलो
5: जी, गुड इवनिंग।
4: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं?
5: जी मोहम्मद तालिब अंसारी, राजा कटरा बाराबंकी से बोल रहा हूँ।
4: तालिब, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और तालिब, ये बताइए कैसे हैं आप?
5: जी बढ़िया है, ठीक है जी। तालिब नाम है मेरा।
4: हाँ जी, हाँ जी तालिब जी, सॉरी शायद बाय मिस्टेक आपका नाम थोड़ा सा गलत निकल गया होगा। आई नो कि आप तालिब बोल रहे हैं। और बताइए आज क्या सुनना चाहेंगे?
5: जी या हम राज मूवी का गीत सुनेंगे।
4: कौन सा?
5: मुझे तेरे जैसी लड़की मिल जाए क्या बात हुई, ये वाला गीत।
4: ओके, जनरली तालिब देखा गया है कि इस मूवी के जो और दूसरे ट्रैक है उनको लोगों ने बहुत पसंद किया।
5: जी
4: है ना, बहुत ज्यादा पसंद किया।
5: ये सॉन्ग तो काफी कम प्ले होता है, लेकिन
4: बहुत कम प्ले होता है।
5: अभी जब प्ले होगा तो ये बहुत अच्छा गीत है।
4: ओके, तो चलिए आज आपके साथ मैं भी इस ट्रैक को एंजॉय करूंगी। किसको सुनवाना चाहते हैं?
5: जी तब तो आपको डेडिकेटेड है।
4: थैंक यू सो मच, थैंक यू
5: जी।
4: और बताइए,
5: आपने मेरी कॉल रिसीव की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 45 मिनट से हम भी कॉल लगा रहे हैं, बैटरी मेरी एकदम मोबाइल के एकदम लो गई।
4: ओह माय गॉड,
5: खैर कॉल लग गई,
4: कोई बात नहीं।
5: कॉल लग जाती तो एक खुशी होती है, ये होती है।
4: अब अपना मनपसंद ट्रैक आप एंजॉय करेंगे, बस अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दीजिएगा, चार्ज होता रहेगा।
5: जी बिल्कुल जी, ठीक है।
4: तो बताइए किसको डेडिकेट करना चाहते हैं?
5: जी आसिफ भाई हैं, और साबिर भाई, और अकबर भाई जी, बस।
4: ओके, तो चलिए इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच तालिब। ओके, बाय बाय।

0: सो फ्रेंड्स, टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और कॉलर्स लाइन पर हैं जिनसे जल्दी से बात की जाए ताकि वो भी अपनी पसंद के गानों को एंजॉय कर सके। हेलो
1: हेलो, नमस्कार
0: मैडम। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। मैडम जी, इस मौसम में जैसे अभी तो मौसमी हल्का मौसम चल रहा है, तो इसमें कलिंदे हैं, खरबूजा, ककड़ी हैं, खीरा है, इनका सेवन करना चाहिए क्योंकि गर्मी मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। पक्षी अच्छी हैं तो उनको पानी रखना चाहिए, कहीं भी छत पे रखना चाहिए और पशु को ख्याल रखना चाहिए। कहीं भी पशु बांध आते हैं तो खेत आर में तो उनको चारे पानी का ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, लेकिन आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, मैं ये नहीं सुन पाई कि आपका नाम क्या है।
1: मेरा नाम सतीश कुमार जी,
0: सतीश बोल
1: रहे हैं।
0: सो सतीश, आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: आज मूवी का नाम आज दिल लगाने बोला प्रिया प्रिया, वो आपके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके, थैंक यू।
1: और छबराम आएंगे मेरे घर से, फरुखाबाद से, जितने तमाम सुनने वाले सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: ओके, थैंक यू सो मच। और सभी श्रोताओं के साथ चलिए आप भी इंजॉय कीजिए अपनी पसंद के इस गाने को। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।

0: सो फ्रेंड्स, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो चुका है. 7:55 हो चुके हैं. लास्ट कॉलर को लेने का भी वक्त हो गया है क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए रिचा बिल्कुल रेडी है. तो चलिए कॉलर से करते हैं बात कि कौन है इस वक्त लाइन पर. हेलो.
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम.
0: गुड इवनिंग जी. ये प्यारी सी आवाज किसकी है?
1: गुलफ्सा सिद्दीकी की.
0: ओके okay, गुलफ्सा कहाँ से कॉल कर रही हैं आप हमें?
2: हेलो.
0: हेलो
1: मैम
0: जी. गुलफ्सा कहाँ से कॉल कर रही हैं?
2: हेलो, नमस्ते मैम.
0: हेलो.
1: हेलो, संडीला से मैम बोल रहे हैं.
0: संडीला से बोल रहे हैं. ओके सो गुलफ्सा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं जल्दी से बता दें ताकि आप इस बचे हुए समय में अपने ट्रैक को एंजॉय कर पाए.
1: जी जी मैम, फिल्म है ये दिल.
0: अच्छा, ये दिल का कौन सा गाना?
1: तेरा दिल भर तेरा साथी ले आएगा ढोल बराती.
0: वेरी गुड. किसको सुनवाना चाहती है?
1: सबसे पहले आपको.
0: थैंक यू सो मच.
1: अंसारी है, साजी अंसारी है, महक अंसारी है, निशा अंसारी है, ममता गौतम है, संडीला से, और जितने लोग सुन रहे हैं सबको.
0: ओके सो ये खूबसूरत सा गाना सभी के लिए जिनका आपने नाम लिया और आपके लिए भी खास तौर पे. थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए. थैंक यू. तो इस खूबसूरत गाने के साथ फिलहाल प्रोग्राम हेलो एफएम को वाइंड अप करते हैं. लेकर आऊंगी आपके लिए फिर किसी और दिन इसी प्रोग्राम को आपकी पसंद के गाने एंजॉय कराने के लिए. लेकिन फिलहाल रिचा बिल्कुल रेडी है नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सभी के साथ एंजॉय कराने के लिए. और वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का. वापस मुलाकात होगी. स्टे ट्यून 100.7 FM रेनबो. अलका को दीजिए इजाजत.

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। ईरान, कजाकिस्तान, नाइजीरिया और उज्बेकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी कल से शुरू हो रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इनमें ईरान की कानूनी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री डॉ काजिम गरीबाबादी, कजाकिस्तान के उप विदेश मंत्री यरजान अशकबायेव, नाइजीरिया के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत दुरोमा उमर अहमद और उज्बेकिस्तान के उप विदेश मंत्री आलुयेव जोराबोयेविच शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दुग्ध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जो कल से पूरे देश भर में लागू हो जाएगी। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मुताबिक अमूल दूध के प्रमुख वेरिएंट और पैक पर कीमतें बढ़ाई गई हैं। मई 2025 के बाद पहली बार दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। पशु आहार, पैकेजिंग और ईंधन की लागत बढ़ने के कारण ये फैसला लिया गया है। भारत शिक्षा एक्सपो 2026 का तीसरा संस्करण विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए शिक्षा मार्गदर्शन, करियर काउंसलिंग और अकादमिक अवसरों की जानकारी का एक व्यापक मंच प्रदान करेगा। ये 3 दिवसीय आयोजन 14 से 16 मई तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। एडीएम प्रशासन मंगलेश दुबे ने बताया कि एक्सपो को भारत और विदेशों में उपलब्ध उच्च शिक्षा के अवसरों के बारे में स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। IGRS शिकायतों के निस्तारण में पीलीभीत जनपद को प्रदेश की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव मिश्रा ने सभी 17 थानों के प्रभारियों को प्रमाण पत्र देते हुए उन्हें भविष्य में भी शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता बनाए रखने को कहा। इटावा सफारी पार्क में पर्यटकों के लिए 2 AC बसें, नए लेपर्ड हाउस और ब्रीडिंग सेंटर को लॉयन सफारी से जोड़ने वाली टनल बनाई जाएगी। प्रमुख सचिव वी हिकाली झिमोमी ने कहा कि एक्सप्रेस वे पर साइनेज लगाकर पार्क का प्रचार बढ़ाया जाएगा। वहीं इटावा सफारी पार्क में अगस्त 2022 में जन्मा बब्बर शेर विश्वा पिछले 15 दिनों से बीमार है। आंखों में सूजन और बुखार के बाद IVRI बरेली से उसकी जांच करवाई गई है, इलाज जारी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 107.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: है बताइए। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: मुख्तसर इतना कि दो लफ्जों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि इसमें दो जहां के राज हैं। सुनते रहिए आप शार 100.7 FM रेनबो पर।

तो ये बात हमसे बेहतर और कौन समझेगा कि ना जाने किस घड़ी किस रोज आपसे मुलाकात हो जाए। इसीलिए दिलों के दरवाजों को हमेशा खोल कर रखते हैं कि आपकी आमद हो और दिन मौसम मौका सब खूबसूरत हो जाए। नमस्कार, आदाब, 100.7 FM रेनबो पर आप सभी खवातीनों हजरात का तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल स्वागत करती हूँ। मैं आपकी मेज़बान रिचा, महफिल आबशार में वक्त हो चुका है उस महफिल का जहाँ इश्क और इबादत एक ही सांस में पिरोए जाते हैं, जहाँ बहता है आबशार गज़ल बनकर मोहब्बत का प्यार का झरना। वो इश्क आईना जहाँ हम और आप दोनों उतरते हैं उन जज्बातों के साथ। तो चलिए आज की रात हम रूह की गहराई में उतरेंगे और उन जज्बातों को याद करेंगे जिन्होंने कभी आपकी तन्हाई को खूबसूरत बना दिया हो, रफ्ता रफ्ता आपके दिलों में उतर कर। रात के 8:12 का वक्त आबशार में आपके साथ मैं आपकी मेज़बान रिचा।

0: यही तो मोहब्बत की खूबसूरती है ना, कि पहले आप फिर तुम और उसके बाद तू का उनवा हो जाते हैं, बिना किसी शिकवा, बिना किसी शिकायत, बिना किसी शिकन के। कहते हैं कि पत्थरों के सीने से जब कोई प्यास फूटती है तो वो आबशार बनती है, और जब रूह के वीराने से कोई पुकार निकलती है तो वो गज़ल बन जाती है। वो गज़ल जहाँ यादें बहती हैं बनकर आबशार गज़लों का। इस बेहद रूहानी सफ़र में ये बेहद रूहानी गज़ल वापस आपके नाम।
1: ये कौन?

कहते हैं कि आबशार वो झरना है जो रुकना नहीं जानता। मोहब्बत भी तो बिल्कुल वैसी ही है ना, सदियों से बह रही है, कभी दर्द बनकर आंखों से तो कभी सुकून बनकर गजलों से। तेरी याद का आबशार मुझ में बहता है रात भर, तेरी याद का आबशार मुझ में बहता है रात भर, एक अनकहा सा इकरार मुझ में रहता है रात भर। ये जो गजलों की चाशनी फिजाओं में घुली है आज, ये जो गजलों की चाशनी फिजाओं में घुली है आज, ये तेरा ही तो प्यार है जो महकता है रात भर। रात के 8:22 का वक्त, आबशार आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, आज आपकी मेज़बान रचा के साथ।

सच है ये बात कि मोहब्बत की बात को बयां करने के लिए चांदनी रातें बहुत बड़ा सहारा बनती हैं। लोग कहते हैं कि मोहब्बत जुबान से बयां होती है, लेकिन मेरा मानना इससे कुछ अलग है। मोहब्बत लफ्ज़ों के बीच की उस खामोशी में है जिसे सिर्फ गज़ल समझ सकती है। गज़ल जो रूह का इत्र है, जब ये महकती है तो फासले मिट जाते हैं और फिर उस महक से यादें जिंदा हो जाती हैं। शायर भी क्या खूब लिखते हैं कि कौन कहता है कि मोहब्बत की ज़ुबां होती है, कौन कहता है कि मोहब्बत की ज़ुबां होती है, ये वो हकीकत है जो आँखों से बयां होती है।

तभी तो कहती हूँ कि मोहब्बत खामोशी से अपना काम करती है, जो आपके लफ्ज नहीं कह पाते उन्हें ये मोहब्बत अपनी नज़रों से बयां कर जाती है। कहते हैं कि मोहब्बत दुनिया का सबसे पाक सबसे खूबसूरत जज्बा है, जिसमें एक दिल दूसरे से जुड़ते हैं और हमेशा के लिए दूसरे के साथ रह जाते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम और आप एक दूसरे से हमेशा यूं ही जुड़े रहेंगे और मोहब्बत के सिलसिले ताउम्र ऐसे ही चलते रहेंगे। रात के 8:40 का वक्त हो चुका है। आज के आबशार से आपकी रिचा को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ठीक 8:45 पर समाचार संध्या और वापस 9 हम हाजिर होंगे फिर से लेकर आपका फेवरेट शो पॉप टाइम। इसके लिए बस बने रहिए हमारे साथ 100.7 FM रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके।

0: पे, और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit,
3: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
3: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स और

0: आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
2: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल

0: देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. सरमा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
2: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
3: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल को।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत

कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
0: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
1: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सिरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
4: जी बिल्कुल, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और आपका मुस्कुराना बनता है दो वजहों से भी, कि पहला तो लखनऊ में है, दूसरा ये कि मौसम बड़ा सुहाना है, ये आप मुझे बता रहे हैं, ये आपका फसाना है। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि मौसम

कॉल के साथ आपका ये शो वैसे भी सुपर डुपर हिट हो ही जाता है, है ना। तो जहां कहीं भी आप आइए, रात के 9:03 का वक्त हो चुका है। वापस आपके साथ लेकर आपका फेवरेट शो पॉप टाइम जुड़ चुकी हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपकी रिचा, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ की। आएंगे कहाँ आप? FM आकाशवाणी लखनऊ। यस, मैंने आपको बताया FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आपके ईमेल्स का है बेसब्री से इंतजार। तो चलिए इस जर्नी को, इस सफर को आपके साथ शुरू करते हैं हम, और आपका रहना है बेहद जरूरी हमेशा की तरह।

एग्जैक्टली बहुत खूबसूरत से मौसम को, चांद सितारों, बहारों, सबको साथ लेकर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं. बस आपका आना है जरूरी रात के 9:05 का वक्त. एंड यस, पॉप टाइम आपके साथ, आपकी अपने 107 FM रेनबो पर.

मौसम इतना खूबसूरत हो, आपका साथ हो, तो दिलों में खुशियां और हाथों से तालियां बज ही जाती हैं। तो बस दिलों से दिलों को मिलाते रहिए और तालियों को तालियों से बजाते रहिए, पॉप टाइम को ऐसे इंजॉय करते रहिए जहां कहीं भी हैं। आपके ईमेल्स के साथ मेरे साथ जुड़ते रहिए, जिन्होंने भी मुझे ईमेल भेजे आएंगे सबके पास, वापस आएंगे। अभी तो बस जस्ट हम शुरू ही हुए हैं, अभी तो बहुत लंबा वक्त है जो आपके साथ हमें पूरा यहां अभी उसे शेयर करना है। तो बस सुनते रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने 100.7 FM रेनबो के साथ।

ऐसे ही ताल से ताल मिलाते रहिए, ताली से ताली बजाते रहिए, सुंदर लगते रहिए और इस सुंदर से कार्यक्रम में आप अपनी शिरकत करते रहिए। उसके बाद देखिए क्या माहौल, क्या मजा आता है, और ये आप हमें खुद बता देते हैं। आपके जब ईमेल्स हमारे पास आते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है कि मौसम बाहर सुहाना है, और इधर जब आपके ईमेल्स आ जाते हैं तो यहाँ का मौसम सुहाना हो जाता है। 9:12 हो चुके हैं, इतने सारे ईमेल्स हैं मेरे पास, चलिए उनकी तरफ भी रुख कर लेते हैं। पहला ईमेल जो मेरे पास आया है ये है नीरज कुमार का, और जब इसे हम खोलते हैं ना तो अंदर से निकलती है प्यारी सी क्यूट सी पिंकी रिंकी, और लिख रही कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन तारीफों के लिए, बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, कार्यक्रम को पसंद करते रहिए, और हमें क्या चाहिए, आपने आपका ईमेल भेजा इसके लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। विजय पाल यादव जी हैं और लिख रहे हैं कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, पिछला प्रोग्राम आपको अच्छा लगा जिसमें आपने गजलें सुनी थी आपको बेहद पसंद आई, और अभी जो चल रहा है ये पॉप टाइम ये भी आपको पसंद आ रहा है, और हमेशा की तरह आपने ग्राम ललहवा लखीमपुर से आपका ईमेल भेजा है, बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आप सबके ईमेल्स आते हैं तो यकीन मानिए हमारा भी हौसला जो है बहुत बढ़ जाता है। मोनू सेठ आ गए, लिख रहे हैं मौसम आज सुहाना हो गया और आप आ गई तो प्रोग्राम और भी अच्छा हो जाना है, तो ऐसा आप सोच रहे हैं ये अच्छी बात है, और हमें भी अच्छा लगता है जब आप ये कहते हैं तो लगता है कि चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, बाकी तो हम कोशिश करेंगे क्या कैसा ये आप हमको टाइम टू टाइम बताते रहा करिए, क्योंकि जब आप बताते हैं तभी और कोशिशें होती हैं और फिर बेहतर करने की तरफ होती हैं, है ना। नेक्स्ट ईमेल जो आया है ये अशनूर नूर अंसारी जी का है हमेशा की तरह, और आप के साथ

तो फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान जी हैं जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, धन्यवाद लिखने के लिए, आपका ईमेल भेजने के लिए। इंद्रपाल मिश्रा जी भी हैं और लिख रहे हैं कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, समस्त ग्रामीण श्रोताओं की ओर से हमें धन्यवाद भी कर रहे हैं। तो मेरा धन्यवाद भी उनको कहिए कि आप इतना वक्त निकाल कर हमारे शो से जुड़ जाते हैं, रेडियो से जुड़ते हैं, रेनबो से जुड़ते हैं, उसको सुनते हैं, सराहते हैं। हर बार कहती हूँ, फिर कह रही हूँ, आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम, यस, यकीन मानिए बहुत कम है, इसलिए आपका होना हमेशा बहुत ज़रूरी है। तभी कहती हूँ आप आइए, आपके बिना ये जो जर्नी होती है ना, ये जो वक्त होता है, ये अधूरा होता है। और आपने हमें लिखा है ग्राम अमृता मोहली सीतापुर से, हमेशा की तरह आपका बड़ा प्यारा सा ईमेल भेज दिया है। शैलेश कुमार यानी कि नीलू शर्मा रूपपुर चंदेला से आ चुकी है, लिखती है मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो रंगीन है, प्यार का कोई चेहरा नहीं फिर भी वो हसीन है। और आपने आपका प्यार भरा नमस्कार भेजा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी बबीता 12 बजे ही याद कर रहे थे कि हम आ जाएं, तो देखिए दिल से दिल को रहा होती है, आपने हमें याद किया और हम हाजिर हो गए। वो गाना ना, तुमने पुकारा और हम चले आए, सुर पर मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा, भावनाओं में बड़ी ताकत होती है। ये भावनाएं हैं जो आपको हमसे जोड़ देती हैं और हमें आपसे जोड़ देती हैं। आप लिख रही हैं कि आपकी प्रिय दोस्त पायल रावत की शादी है, गांव में है, शादी में जा रही हैं, कार्यक्रम वहीं सुनेगी। अच्छा बताएं, मेरे मन में बड़ा एक सवाल आता है, पूछ लें आपसे, वो ये कि जब आप शादी वादी में जाते हैं, बड़ी तेज तेज ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, ताशे बज रहे होते हैं, सुन पाते हैं आप वहाँ पर? ये ईमानदारी से बताइएगा, लेकिन अगर सुन पाते हैं तो वाकई काबिले तारीफ हैं आप। और आपका प्यार है हमसे, ये इस बात को साफ बताता है कि कहीं भी हैं आप, लेकिन आप रेडियो का, रेनबो का साथ नहीं छोड़ते और उसके साथ आप हमेशा जुड़े रहते हैं। तो बस कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, चिपके रहिए 107 FM रेनबो से, क्योंकि जो यहाँ है ना वो कहीं मिलने वाला नहीं। 9:15 का वक्त हो चुका है, पॉप टाइम का सफर है और आपको जो यहां मिल रहा है ना, नहीं मिलेगा। अगला गाना भेज दिया है। आपको कहां आना है? FM आकाशवाणी लखनऊ @traingmail.com पर आपके ईमेल्स का हमेशा की तरह बहुत तेजी से इंतजार है, मैं जल्दी से आ जाइए।

जवाब तो आपका देना चाहिए कि ऐसा क्या है आपके अंदर कि जब आप आते हैं ना तो यहाँ आग लग जाती है रेनबो पे, जो है ना बड़ी एकदम गर्मी से आ जाती है, लगता है कि हाँ कुछ बढ़िया होने वाला है, कुछ अच्छी चीजें होने वाली हैं आपके साथ। ये जो आपके ईमेल्स आते हैं यकीनन ये इनका ही कमाल है। 9:24 का वक्त हो चुका है, आपके ईमेल्स के साथ हम वापस जुड़ते हैं आपकी तरफ, क्योंकि बड़े सारे ईमेल आ गए, इनको भी पढ़ लें। अभी जो मेरे पास ईमेल आया है इस वक्त ये है गुलफ्सा सिद्दीकी का, और आपने लिखा है हमेशा की तरह बड़े प्यार के साथ, आपको गाने बड़े अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। लिख रही है बारिश हुई थी और पत्थर यानी कि ओले भी गिरे हैं, और क्या लिखा, खाना खाकर प्रोग्राम को सुन रही हैं, बड़ा मजा आ रहा है, थैंक यू सो वेरी मच। आपके साथ जो है साहिबा अंसारी हैं, और साथ में क्या क्या नाम लिखे आपने, शमा परवीन है, और आप के मामा भी हैं साथ में सुन रहे हैं ना, ये सारे नाम आपने दिए हुए। चलिए बड़ी अच्छी बात है कि आप सब मिलकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आप सब साथ में रहें, आप साथ में रहते हैं तो फिर प्रोग्राम करने का मज़ा ही दूसरा होता है, एकदम अलग ही अंदाज हो जाता है उसका आपके साथ होने से। बाबू अंसारी जी भी आ चुके हैं और लिख रहे हैं कि कैसी हैं आप, तो हम मेरे ख्याल से हम ठीक ठाक हैं, और बाकी तो आप बताइए कि क्या कैसा साउंड कर रहे हैं इस वक्त हमें ना, आप बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। और आपने कहाँ से लिखा है, आपका ईमेल आया है मेरे पास से, और आपके साथ है नसीम अंसारी, मुन्ना अंसारी, बाबू अंसारी आप खुद हैं, कुलदीप गुप्ता, ये सारे लोग मिलकर मुझे सुन रहे हैं, और आपने हमें देवकली अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से आपका ईमेल भेजा है, प्रोग्राम आपको हन हर हुआ लग रहा है। हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा पास पास लिख दिया था ना आपने, क्या लिखा है कायदे से पढ़ लें, ऐसा ना हो कहीं कुछ गलत वलत बोल जाए तो फिर बाद में लो भाई अभी क्या ही पढ़ दिया हमने, ये भी हो जाएगा। अर्पित शर्मा जी हैं हमारे साथ, अर्पित शर्मा अनमोल, और लिख रहे हैं वाह क्या धमाकेदार आगाज हुआ है यूं कि दिल खुश हो गया है, शानदार म्यूजिक और दमदार एंकरिंग का सुरीला संगम, यूं की रात बन गई। वाह, अब यूं की पे आपने बात छेड़ी है तो हम कहना चाहते हैं यूं की हम ज्यादा बोलते तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अब ये शो ऐसा है कि हमको बोलना पड़ जाता है, बिना बोले फिर काम चल नहीं पाता है ना, और फिर वो स्पीड भी आती है जब आप कहते हैं कि बुलेट ट्रेन हो गई, ना भागे तो कैसे काम चलेगा, आप खुद बताइए, इतने सारे ईमेल आपके होते हैं छूट जाएंगे तो फिर आप ही आएंगे बाद में कहने के लिए अरे हमारा ईमेल नहीं पढ़ा आपने, जाइए हम आपसे नाराज़ हो गए बट कोई बात नहीं, नाराज़गी भी वही होती है जहाँ बड़ा सारा प्यार होता है, और इसमें कोई दोराय नहीं है कि आपको हमसे बेइंतहा प्यार है, इसीलिए आप अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर देते हैं। और आपने हमें होडू राजस्थान से आपका ईमेल भेजा है, कैसा माहौल है राजस्थान का ये बताइए हमें, कैसा सुनाई पड़ रहा है वहाँ पर आपको, ये रेनबो आपका रेडियो ये भी बताइए हमको, तो बड़ा अच्छा लगेगा, हम भी तो जाने कि वहाँ का माहौल कैसा है भाई, यहाँ आसपास के इलाकों में तो बारिश हो रही है, कहीं कहीं देखिए ओले भी गिरे हैं, आपके यहाँ का माहौल कैसा है ये भी हमको बता दीजिए, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसा मौसम है, बिल्कुल बताइए। कोमल तिवारी आ गई, लिख रही है कि टोमेटो की चटनी की तरह गाने बज रहे हैं और सुनकर बहुत प्यारा लग रहा है, तहरी की तरह कंप्लीट भोजन परोस दिया है, अच्छा क्या बात है, तहरी का नाम ले लिया, मैं भूख लगाई अब, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त यहाँ बैठेंगे उसके बाद, आज तो खैर तहरी नहीं खाएंगे, वो क्या है ना कि आज वो एकादशी है अगर आप मानते हैं तो इसलिए नहीं खाएंगे। बहरहाल आपने हमें लिखा है कैसरगंज बहराइच से, थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए, ऐसे ही भेजा करें आप ईमेल और हमारा हौसला यूं ही बढ़ाते रहा करें, आपका ईमेल आएगा तो हौसलों में जान आएगी और फिर गाने आप तक पहुँचेंगे। राम राज जी का भी ईमेल आ गया, बड़ा प्यारा नाम है आपका, और आपने लिखा है श्री गणेशाय नमो, पॉप टाइम जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, और राम राज, राजू भानु, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मिर्जा, इमरान बेग, रिजवान भाई सब है आपके साथ, और आपने लिखा है कि वहाँ बारिश ओले आंधी तूफान बहुत ही आया है, लाइट नहीं आई है, अरे हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं, सुन तो पा रहे होंगे तभी आपका ईमेल आया है। आपने लिखा हमारी तरफ से आपको प्यार भरा धन्यवाद, नमस्कार, आपको भी धन्यवाद, और बस बने रहिए हमारे साथ, इतनी मुश्किलात के बावजूद भी आप मेरे साथ हैं, आंधी पानी तूफान बारिश के बाद भी, ये है इसको कहते हैं ट्रू लव तो बस ये प्यार यूं ही बनाए रखें आप, और अच्छा लगता है हमें। वकील अहमद भी आ चुके हैं, आपने लिखा कि आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया करम मेहरबानी नाचीज की आवाज़ को पसंद करने के लिए, हर बार कहती हूँ आप जब ये कह देते हैं तो अच्छा लगता है, पॉप टाइम अच्छा लग रहा है आपको, गाने अच्छे बज रहे हैं, बहुत तेज़ आंधी बारिश और पत्थर भी।

रहे हैं, देखो ना सब तरफ यही हो रहा है। बस यही कहना है कि बिन मौसम बरसात है, मौसम का है तो यही मिजाज है, कब बदल जाए कोई नहीं जानता। बस ये कि अपना एहतियात आप बरतते रहिए। बाकी आपने हमें लिखा है कटका हथूरी जिला सीतापुर से, और आप के साथ नहीं अल अतलाबू अली बिहार, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, परवीन, रिंकी पिंकी और गुलफशा सिद्दीकी भी हैं, महक अंसारी भी हैं आपके साथ। सब लोग हैं, सबसे कहिए एक जगह बैठें। बाहर आंधी पानी बारिश तूफान बहुत कुछ है, तो ज़्यादा बाहर ना जाएं, बढ़िया मौका है, माहौल है, चुपचाप बैठकर रेनबो को एंजॉय कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर आपके लिए इस वक्त कुछ हो नहीं सकता। क्या कहते हैं, मानते हैं ना इस बात को। बस चलिए अगला गाना भेज रहे हैं, गाने को सुनिए, सुनते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए। एंड यस, गाना आपके रेडियो सेट पर। टाइम बता दूं, 9:29 का वक्त हो चुका है पॉप टाइम। इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके अपने 107 FM रेडियो पर, आपकी दोस्त आपकी आरजे रिचा के साथ। और आपको जहां आना है वो है FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com।

सजाने कितनी बार दिल से ये सवाल उठता है कि कौन सा जादू है, कौन सा मंत्र है आप में जो ये जो रिश्ता है ना ये और गहरा और गहरा और गहरा होता जाता है। कई बार इतना ज्यादा ये गहरा हो जाता है कि देखो नाम थोड़ा बहुत गलत पड़ जाते हैं, लेकिन आप उसे सही कर देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाब साहब वापस मेरे पास आई है और उन्होंने लिखा है कि भाई वो जो नाम थे ना उनको फिर से उन्होंने करेक्ट करके भेजा है, मतलब उन्होंने लिखा, हमने जिसको करेक्ट नहीं पढ़ा था वापस पढ़ने जा रहे हैं। और आपके साथ आपके मामा नहीं बल्कि आप सुन रही हैं ममता गौतम जी के साथ और क्षमा परवीन है, निशा अंसारी है और सब लोग साथ मिलकर मुझे सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुझे करेक्ट करने के लिए। ये तो सच्ची दोस्ती है ना, ये तो सच्ची यारी है। हम जहां गलत हों वहां आप हमें थाम लें और बता दें कि देखो भाई यहां गलत जा रहे हो, रुक जाओ थम जाओ, फिर हम वहां गलतियां सुधार के फिर वैसा नहीं करेंगे, है ना। तो बहुत शुक्रिया इसके लिए, बहुत धन्यवाद हमें करेक्ट करने के लिए। विनीता मेरे साथ हैं और आपने हमें लिखा है बेली कला गोसाईगंज नवाबों के शहर लखनऊ से, प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप सुन रही हैं और लिख रही हैं जिस दिन आप मेल फेस टू फेस, हम ना इसको वापस पढ़ेंगे, आपने जो बहुत पास पास लिख दिया ना थोड़ा सा रुकेंगे थमेंगे, इसको दोबारा पढ़ेंगे फिर आप तक आएंगे, वरना फिर अभी आप बोलेंगे कि हाँ मैंने ये गलत पढ़ दिया, इसलिए हम ये चाहते नहीं है, है ना। और अगला ईमेल ले लेते हैं, वापस जब आएंगे लौटेंगे कुछ गानों के बाद तब आपका ईमेल हम वापस आप तक पहुँचाएंगे। सुल्तान रजा आ चुके हैं हमारे साथ और उन्होंने लिखा है रॉकिंग रचा। ये सबसे अच्छी लाइन होती है जब आप ये लिख देते हैं, बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और आपने हमें कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से आपका ईमेल भेजा, आपके साथ सुल्तान इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा और आपके मदर फादर मम्मी पापा हैं और साथ में छोटा मान जो है वो भी छोटे बहुत आपके प्रोग्राम को पसंद सुन रहे हैं, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। लिख रहे हैं दोस्त ने पूछा क्या चल रहा है जिंदगी में, मैंने कहा बस कुछ नहीं खास, बड़ों का आशीर्वाद, पत्नी के ताने, दर्द भरे गाने, बाकी भगवान जाने। देखो दर्द भरे गाने तो नहीं भाई, इसको करेक्ट कर लीजिए आप, तो भगवान जाने वाली बात नहीं, दर्द भरे वाले जो गाने आपने लिखे इसको करेक्ट करिए, यहाँ लिखिए धमाकेदार गाने चल रहे हैं, फिर देखिएगा अगले जो आपने जिनको आपने ये बताई ना बातें खुश हो जाएंगे वो कि वाह वाह चलो हम भी जाते हैं कहाँ पर ऐसे वाले गाने बज रहे हैं, चल के सुनते हैं। वैभव प्रकाश जी हैं हमारे साथ और सिंह नागपुर महाराष्ट्र से आपका ईमेल है और आपने लिखा है कि FM रेनबो सुनने वाले और ऊर्जा की स्रोत आरजे रचा जी को वैभव प्रकाश सिंह का सादर नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो लिखा इसके लिए, बहुत शुक्रिया ऐसे इतने ऊर्जावान तरीके से हमें एड्रेस करने के लिए। आप लिख रहे हैं कि आज उन अपने गांव गंगोई जिला सीतापुर के उन सभी दोस्तों को याद करना चाहते हैं जो FM पर मेल या कॉल नहीं कर पाते,

आप लिख रहे हैं हमारे बचपन के साथ ही राहुल के साथ क्रिकेट खेलना, रवि के साथ चूरन की गोली खाना, चोरी करना और साथ में अमित दादा के साथ वीडियो खेलना, आपके दोस्त गगन के साथ खेत पर जाना चारा लाना और मंदु के साथ गन्ना चूसना, अनुराग अंकित के साथ आम तोड़ के खाना चोरी से, पिंशु छोटू के साथ आई स्पाई खेलना, सभी बहुत मिस करते हैं। आपको सच बताऊं, ये सिर्फ आप मिस नहीं करते वैभव जी, हम में से बहुत सारे लोग मिस करते हैं। इनफैक्ट हम भी मिस करते हैं बचपन के दिन जब आई स्पाई खेला करते थे हम लोग, और उसके बाद जब टीप पड़ती थी पीछे और फिर बन के सबको ढूंढना पड़ता था, चोर बन के ढूंढना पड़ता था, ढूंढो ढूंढो ढूंढो ढूंढो कहाँ है सब लोग। तो वो बचपन के दिन वाकई बहुत खूबसूरत होते हैं और बस खुश नसीब है वो जो भी बचपन के दौर में है। अशोक कुमार जी का ईमेल है और आपने लिखा है रायपुर उडारा मितौली लखीमपुर खीरी से, गाने आपको अच्छे लग रहे हैं। अजय राज, बालीसर राज और गुड्डू राज है मेरे साथ, सभी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, यानी कि प्रोग्राम को मिल करके सुन रहे हैं। अगला ईमेल किसने भेजा है भी देख लेते हैं। पूजा पाल जी का ईमेल है मेरे पास और लिख रही है मिर्जापुर से, संडीला से हैं, नहीं साधना सीतापुर से हैं और आप ड्यूटी पर हैं इस वक्त और प्रोग्राम सुन रही हैं और आपके साथ दो लोग और हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं, नाम क्या है उनके, सनी और वंदना आपकी बहन है, तो उन दोनों को मेरा गुड इवनिंग कहिए और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए आप, फिर देखिए हमारी कोशिशें आपके साथ होने से ही पूरी होती हैं, आप होंगे तो पूरी हो जाएंगी। बाबू अंसारी वापस आ गए और लिख रहे हैं कि आपको कौन सुन रहा है, आपके साथ और कौन सुन रहा है, मुझे नाम कहाँ है उनका, वापस तो नाम बताइए कि आपके साथ और कौन सुन रहा है, आपने खाली ये लिखा। मोनू जी लिख रहे हैं कि शादी पार्टियों का दौर अभी खत्म हो गया है, घर पर है, नहीं शॉप पर है, बैठ कर सुन रहे हैं और आपके साथ आपके दोस्त भी सुन रहे हैं, तो ठीक है सबसे कहिए सुनते रहें और इन्जॉय करते रहें आपका शो पॉप टाइम जिसे इस वक्त आप इन्जॉय कर रहे हैं आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, मेरे यानी आपकी दोस्त रिचा के साथ। 9:40 का वक्त, FM आकाशवाणी लखनऊ @redgmail.com। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आइए, इंतजार है आपका।

चाह एक लेती मिन्नतें करवा रही है भाई, जहाँ कहीं भी हैं जिनको भी पुकार रहे हैं वो आ जाइए, स्वीटी नाम से बुला रहे हैं। लेकिन अगर आप भी मुझे सुन रहे हैं तो आइए और उसके बाद जुड़िए, सुनिए आपका अपना शो जिसे आप पॉप टाइम कहते हैं, जहाँ पर एक के बाद एक गाने आप तक पहुँचाने की कोशिशों में हम लगे हुए हैं लगातार। आप बता रहे हैं कि अच्छे भी लग रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू अंसारी जी ने ईमेल किया और लिख रहे हैं हमारे साथ, फैज़ अंसारी भी है प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने बता दिया। आपने पूछा था आपसे कि किसका नाम आप बताना चाह रहे हैं, तो वापस आपका ईमेल आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अरविंद कुमार दुबे जी भी आ चुके हैं और आपने हमें विलेज धर्मदेवा पोस्ट छतावा है ना, डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से आपका ईमेल भेजा है और लिख रहे हैं प्रोग्राम एकदम जमजमुआ लग रहा है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, ये खाना नौवा था, ये जमजमुआ है, अच्छा लगता है सुन करके। आप लिख रहे हैं कि आज थोड़े दुखी हैं क्योंकि आंधी आने पर घर की पक्की, ओ बस यही तो समस्याएं हैं ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ किसी के लिए बहुत अच्छी हो तो सबके लिए बहुत अच्छी हो। ये चीज़ें अपने साथ हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ले ही आती हैं जो मन को दुखी करता है, और लेकिन बस वही है कि हम और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके कि बस ये उम्मीद करें कि आगे सब कुछ बेहतर होगा। बहरहाल आपने हमें ईमेल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मौसम ऐसे माहौल में भी आप ईमेल कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने हमें आप लिख रहे हैं गोविंद प्रतिमा प्रतिष्ठा तनवी दीपा श्याम कुमारी आप सभी सुन रहे हैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, बहुत धन्यवाद आपकी ईमेल के लिए। और अगला ईमेल जो मेरे पास आया, मनोज विश्वकर्मा जी ने भेजा है, लिख रहे हैं पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाली मीठी आवाज़ को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की प्रस्तुति आपको अच्छी लग रही है, आपका पूरा परिवार सुन रहा है, तो बहुत धन्यवाद। आप सब साथ बैठकर मुझे सुन रहे हैं, साथ बैठकर सुनने का जो है ना एंजॉय करने का ये जो मज़ा है ये कुछ और ही होता है। और कह रहे हैं रजनीगंधा तक साथ रहूँगा, हाँ ये हुई ना बात, आज बिल्कुल रहेगा हमारे साथ, क्योंकि आज आप तक पहुँचाने वाले हैं एक ऐसी खास शख्सियत को जिन्हें आप एक हास्य अभिनेता के तौर पर जानते हैं। पता है ज़िंदगी में रुलाना कई बार बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को हंसाना ये बहुत मुश्किल है, और जब कोई ये काम करता है ना तो उसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की रजनीकंधा में रहिएगा हमारे साथ जानने के लिए कि कौन है वो हस्ती, कौन है वो शख्सियत जिनको हम याद करेंगे आज की रजनीकंधा पे। छत्तीसगढ़ ज़िला बलौदा बाजार ग्राम ताराशिव से आपने आपका ईमेल भेजा, इसके लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। जावेद अख्तर भी आ चुके हैं और लिख रहे हैं कि नारियल की जैसी कड़क आवाज़ और मोम की जैसा नर्म लहजा कार्यक्रम की जान हुआ करता है। आबशार कार्यक्रम में अंदाजे पेशकश के साथ गजलें आपके दिल में उतर गईं। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने आपका ईमेल किया, शमशूल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन आपके साथ हैं, प्रोग्राम आपको अच्छा लगा आपने ये लिखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुल्तान रजा जी वापस आ गए, क्या लिखा है आपने, अच्छा आपने वो ठीक कर दिया, लिख रहे हैं कि जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है, मनपसंद गाने चलाए जाए, जिंदगी तो रेडियो जैसी, कब कौन सा गाना बज जाए कुछ पता नहीं चलता, लेकिन एक बात तो तय है कि जब बजता है ना गाना तो सीधा दिल में उतर जाता है, तभी कहती हूँ कि रेडियो से जुड़े रहिए, यहाँ पर आपको ना अलग अलग मूड अलग अलग जॉनर अलग अलग तरीके के गाने सुनने को मिल जाएंगे, जो कभी आपके मन को भाएंगे तो कभी किसी के मन को भा जाएंगे, कभी कोई गमगीन गाने सुनना चाहता है तो वो यहाँ मिल जाते हैं, कभी कोई बहुत खुश होता है तो लगता है अरे रेडियो लगाओ आज कुछ बढ़िया सुना जाएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पूरी हो जाती हैं, इसीलिए कहते हैं कहीं मत जाइए, रेडियो जैसा कोई भी रेनबो जैसा कोई नहीं है बेसिकली। रोशनी रावत आ गई, बहुत दिनों बाद आप आई अपनी रोशनी भी

व्यक्ति भी यहाँ अंधेरा हो जाता है, जल्दी आ जाया करिए, आप आती हैं तो थोड़ी रोशनी हो जाती है। और आपने लिखा कि कैसी हैं आप, बहुत अच्छी हो, आपको आबशार प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, इसके लिए धन्यवाद, सारी गजलें आपकी पसंदीदा थी, बहुत धन्यवाद ये लिखने के लिए भी। 12:02 तक आप साथ रहने वाली हैं, गर्दा उड़ा रही हैं, ऐसा आपने लिखा है, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपका नाम रोशनी रावत है, मुझे पता है, ग्राम वापस बमहना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव चंडीगढ़ से आप प्रोग्राम सुन रही हैं। अगली लाइन में लिखा है, अर्ज किया है तो इरशाद, दिल कहता है कि उन्हें भी हमारी याद आती होगी। हाँ, इसमें कोई दो राय है क्या, सच में आती है। दिल कहता है कि उन्हें भी हमारी याद आती होगी, हसरत है कि वो अपनी जुबान से, अरे ऐसी क्या बात है, हम आपको बहुत याद करते हैं। अगर ये मेरे लिए लिखा है तो हम आपको बहुत याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, आप सबका ईमेल आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं जल्दी जल्दी आ जाया करिए, आप देर से आती हैं थोड़ा अंधेरा रहता है, रोशनी आ जाती है तब मज़ा आता है। ब्रजेश सिंह जी आ चुके हैं, कार्यक्रम आपको झक्कास अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन हो सके तो कोई अच्छा, तो ये रिक्वेस्टेड तो नहीं है ब्रजेश जी, फिर किसी दिन बजा दूंगी। इटोवा कैसरगंज जिला बहराइच से आपका ईमेल है। मोरू सेठ लिख रहे हैं, प्रोग्राम में जलवा बिखेर दिए आप, इमा कोनो शक नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप दिल से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, इसीलिए अपनी बात हम तक पहुंचा पा रहे हैं। एम के राज लखीमपुर खीरी से है और आप लिख रहे हैं, पॉप टाइम चलत बा हंसी, यहाँ हंसी के करंट मारेला, एक काशे तोहरे खातिर, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, हंसी की दुकान खोल दे हिलबाड़ा गुरु, गांव गांव में तुम्हारे नाम बोल बाड़ा गुरु, हर घंटा हर रोज लाइव से निला, अगला बेर गांव भानपुर हरहुआ के नाम से एक ठो जोक मार दिया, माही कसम पूरा नाम पूरा नाच उठी। चलिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, एक तो आती कम है हमको, अब हमने पढ़ दिया आपने जो लिखा है, बट शुक्रिया धन्यवाद इसके लिए, आपने जो ईमेल भेजा और आपके साथ तोहार फैन दिखाया, मुनेश कुमार गांव भानपुर हरहुआ जिला लखीमपुर खीरी से हैं आप। शुक्रिया मुनीश जी आपके आपके ईमेल के लिए, इतनी शिद्दत से आपने ईमेल लिखा। विनीत कुमार आ चुके हैं और आप अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से पॉप टाइम सुन रहे हैं, धमाकेदार प्रोग्राम आपको लग रहा है, गाने अच्छे बज रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। कुछ मित्र हैं, शमा परवीन अंसारी मस्जिद सीतापुर से, ओमकार सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, सुनील गोकुलपुर से, नवनीत मौर्य लखनऊ से, हरकेश लखनऊ से, ममता हरदोई से, संतोष कुमार मौर्य भी हैं और आपके साथ हम हैं यहाँ लखनऊ से, रेनबो से, आपके अपने 100.7 FM से। अगला गाना आपको दे रहे हैं, 9:50 का वक्त हो गया, गानों का सिलसिला चलता रहना चाहिए ना साथ साथ में, तो चलिए अब आप आते हैं तो जश्न तो होता ही है, जलसा होता ही है, तो चलिए इसी को ध्यान में रख के भी गाना बजा दिया, एंजॉय कीजिए। FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com आपके ईमेल्स का अभी भी मुझे इंतजार है, आ जाइए फटाफट, जो वक्त बचा है उसमें भी क्यों छूटा जाए, क्यों रहा जाए, है ना, क्यों छोड़ दिया जाए कुछ भी, आइए हमारे साथ।

चलिए ये जलसा, ये जश्न तो यूं ही चलता रहेगा. वक्त भी तेजी से भाग रहा है, 9:53 का वक्त हो चुका है. विनीता का ईमेल था जो हमने कहा था जब ढंग से पढ़ लेंगे तब वापस आपके साथ आएंगे. आप लिख रही हैं जिस दिन से आपसे मिले थे उस दिन से आज हमें वो सुन रही हैं, सुनकर उन्हें अच्छा लग रहा है, बड़ी तारीफों के पुल बांध रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपने ईमेल किया है इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं, और आगे भी आप अपना ईमेल हम तक ऐसे ही पहुँचाते रहें, और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता. बेली कला गोसाईगंज लखनऊ नवाबों के शहर से आपका ईमेल है. और अगला ईमेल जो मेरे पास है, कृष्णकांत सिंह जी का भी ईमेल आ गया है, और आप लिख रहे हैं कि ऊर्जा के साथ आपका, अच्छा, सभी श्रोताओं को आपने प्यार भरा नमस्कार दिया. लिख रहे हैं गाने जबरदस्त बजते ही हैं और चटपटी गपशप का जो तड़का आप बीच बीच में पेश करती हैं वो लाजवाब लगता है. ऐसे ही स्वस्थ बेहतरीन मनोरंजन करती रहिए और सभी श्रोताओं को भरपूर और स्नेह आपको सदैव मिलता रहेगा. पूरी कोशिश है कृष्णकांत जी की आप सबकी उम्मीदों पर हम खरे उतर जाएं और जो आप चाहते हैं उसको आप तक किसी हद तक

की ऊर्जा के साथ आपका अच्छा सभी श्रोताओं को आपने प्यार भरा नमस्कार दिया। दिख रहे गाने जबरदस्त बजते ही हैं और चटपटी गपशप का जो तड़का आप बीच बीच में पेश करती हैं वो लाजवाब लगता है। ऐसे ही स्वस्थ बेहतरीन मनोरंजन करती रहिए और सभी श्रोताओं को भरपूर और स्नेह आपको सदैव मिलता रहेगा। पूरी कोशिश है कृष्णकांत जी की आप सबकी उम्मीदों पर हम खरे उतर जाएं और जो आप चाहते हैं उसको आप तक किसी हद तक पहुँचा सकें। आपने हमें कैसरगंज बहराइच से आपका ईमेल भेजा, दिल से धन्यवाद आपका। इतना वक्त निकाल करके आप जो ईमेल लिखते हैं, तालिब अंसारी जी का भी ईमेल, अच्छा एकदम से एक और ईमेल आया, तालिब अंसारी जी कहाँ गए ये मिले। तालिब अंसारी जी का ईमेल है और आपने राजा कटरा बाराबंकी से आपका ईमेल लिखा है, लिख रहे हैं आप शार बहुत अच्छा लगा, बेस्ट लगा, बहुत अच्छी गजलें आपको लगी और सुनकर दिल जो है वो खुश हो गया दुनिया क्या है सुकून सी दुनिया में आ गया ऐसा लगा। लेकिन अब धमाल वाला प्रोग्राम एकदम एनर्जी से भरपूर प्रोग्राम चल रहा है, रेनबो में हर रंग है, ये इस बात का सबूत। तभी तो हम कहते हैं कि रेनबो जैसा कोई नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तभी तो लखनऊ का पहला एफएम स्टेशन है ये जो आपके दिलों में घर करता है। कहीं मत जाइए, आपको सारा सुकून जो कुछ भी आप चाहते हैं यहाँ बहुत अच्छे से बिना किसी मेहनत के आपको मिल जाता है ना। अगला ईमेल किसका है, देखो रजनीश पासवान जी का ईमेल आ चुका है, अ वेरी म्यूजिकल गुड इवनिंग, रिच रिच रिच, बहुत बड़े दिल की रिच बहन जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही है, बहुत धन्यवाद इतने प्रेम के साथ आपका ईमेल हम तक भेजने के लिए। राजेश रजनीश पासवान जी हैं रामपुर सीतापुर से, आगे भी ईमेल आपका आता रहेगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। राही आपका ईमेल आ चुका है, दिख रहे हैं आई एम राही फ्रॉम लखनऊ, प्रोग्राम बहुत लाजवाब बिंदास लग रहा है, जोर जोर से झूम रहे हैं, अच्छा ऐसी क्या बात है बस ये आप झूमते रहे जोर जोर से, हम भी ये चाहते हैं, मुझे लग रहा है पूरे शहर पूरे घर में तहलका मचा दूंगी। हाँ ये अच्छी बात है, बिल्कुल सबको बता दीजिए कि भैया रेनबो पर इस वक्त पॉप टाइम चल रहा है, कोई मुझे पकड़ लो नहीं तो हम गिर जाएंगे ऐसा इन्होंने कहा है तभी तो असली मजा आएगा ना। प्रिंसी सिंह भी आ चुकी है आपकी ईमेल, आप लिख रही हैं कि प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं, कुछ दोस्त दुनिया में बहुत अच्छे होते हैं, दोस्तों को समझते भी हैं समझाते भी हैं, रेडियो डाउन हो गया दूसरा सुन रही हूँ, बस सुनते रहिए यही हम कहना चाहते हैं। जीशान खान है और आपको ईमेल, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत धन्यवाद इसके लिए, जल्दी जल्दी ईमेल आपके पढ़ डालती हूँ। वैभव प्रकाश वापस आ गए, बहुत उम्दा कलेक्शन लिख रहे हैं आप, आपको अच्छा लगा इसके लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार जी का भी ईमेल है, छूट ना जाए, जब लिख रहे हैं जब उनके घर गए कहने दिल से दिल लगा लो, उनकी माँ ने खोला दरवाजा, हम घबरा कर बोले आंटी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलवा लो अच्छा किया, अच्छा काम कर दिया फिर उसके बाद आपने जा करके, चाय बिना सुबह अधूरी लगती है, दोस्त बिना जिंदगी मजबूरी लगती है, खुश रहो हंसते रहो हमेशा वरना शक्ल भी थोड़ी बुरी लगती है। देखो तभी तो हम आपको हर वक्त हंसते हुए मिलते हैं, हम नहीं चाहते कोई ये कहे कि तुम्हारी शक्ल बुरी लग रही है। 9:57 का वक्त हो चुका है, देखते देखते समय कैसे बीत गया। आप सभी वो सारे लोग जिन्होंने मुझे आज ईमेल किया, दिल से आपका हम धन्यवाद कहते हैं। कोई ईमेल छूट गया तो भाई माफ़ी भी मांग लेते हैं, अक्सर आप कहते हैं हमारा ईमेल नहीं पढ़ा, ईमेल्स के बीच में एक और आ गया ईमेल, जल्दी से पढ़ देती हूँ। और आप लिख रहे हैं कि प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, आवाज़ बहुत पसंद आ रही है, नाम क्या है आपका, जनरल स्टडीज़ ये नाम से आया हुआ है, चलिए बहुत शुक्रिया। रायबरेली से आपका ईमेल है, अब बचा नहीं ज़्यादा वक्त, हमको लेनी होगी आपसे इजाज़त, अगला गाना आप तक भेज रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप इसको एंजॉय करेंगे, रेनबो नहीं पॉप टाइम को वाइंड अप करने की है बारी। लेकिन आपसे गुजारिश है कि रहिएगा हमारे साथ अगले घंटे भी, रजनीगंधा आज बहुत ख़ास है, हास्य की दुनिया से किसी एक शख्सियत को जो कि आपके भारतीय सिने जगत में एक खासा मकाम रखते हैं उन्हें आप तक हम याद करेंगे, बर्थ एनिवर्सरी है उनकी और सुनने के लिए आपका रहना हमारे साथ बेहद ज़रूरी है। फिलहाल आज के पॉप टाइम का आखिरी गाना और इसी के साथ आपकी दोस्त आपकी आरजे ऋचा को दीजिए आज के पॉप टाइम से इजाज़त, आप कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ सुनते रहिए।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत आह्वान के बाद वाराणसी में नगर निगम ने हर शनिवार को नो फ्यूल डे मनाने का निर्णय लिया है। महापौर अशोक कुमार तिवारी और पार्षद अब सप्ताह में एक दिन पेट्रोल डीजल वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे। नगर निगम मुख्यालय में हुई बैठक में तय हुआ कि शनिवार को जनप्रतिनिधि पैदल, साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों से कार्यालय आएंगे। महापौर ने स्वयं प्रतिदिन घर से कार्यालय तक पैदल आने का संकल्प लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण विकास को सहभागी, समावेशी और आवश्यकता आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत विकास कार्य केवल केंद्र स्तर से निर्धारित नहीं होंगे, बल्कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की सक्रिय सहभागिता से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का चयन और निर्धारण किया जाएगा। गांव की जरूरतों, प्राथमिकताओं और जनभागीदारी को केंद्र में रखकर तैयार की जाने वाली विकास योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामकारी बदलाव सुनिश्चित करेंगी। पीलीभीत जनपद में केंद्र सरकार के कार्यालय, रेलवे, डाक व दूरसंचार आदि में स्वगणना कराई गई। सभी ने अपने परिवारों की ऑनलाइन गणना की और इस अभियान के लिए लोगों को जागरूक करने का भी संकल्प लिया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में सभी अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि अपनी व अपने परिवार की ऑनलाइन स्वगणना कर रहे हैं। लखनऊ कार्यालयों की स्वच्छता, सुव्यवस्था एवं अभिलेखों के रखरखाव को उत्तम करने के उद्देश्य हेतु पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के मार्गदर्शन में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागार में बाह्य ऑडिट प्रक्रिया प्रमाणन हेतु एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल कार्यालय के विभिन्न विभागों के मुख्य कार्यालय अधीक्षकों, निरीक्षकों, सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स तथा रेलवे अधिकारियों ने भाग लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, जिस पर अगला कार्यक्रम है रजनीगंधा।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन

ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। तो रात के 10:05 का वक्त रजनीगंधा के इस खूबसूरत सफर में वापस आप सभी का स्वागत। और आज का रजनीगंधा सिर्फ रजनीगंधा नहीं बल्कि एक विशेष प्रस्तुति है उन्हें याद करने की जिनकी है आज बर्थ अभिनीत एनिवर्सरी। और जब हम बात करते हैं हास्य के क्षेत्र की तो भी एक बेहद आला दर्जा मकाम हासिल करने वाले हास्य अभिनेता कौन है जिक्र करेंगे उनका आगे। फिलहाल ये गाना आप तक। आप सभी का स्वागत वापस आपके शो रजनीगंधा में।

अच्छा, अगर गौर से देखें ना तो हम सभी की जिंदगी कोरा कागज ही तो है, वो कोरा कागज जिस पर अपने सपनों को अपने तरीके से लिख सकते हैं हम, जो कई बार पूरे भी होते तो कई बार कुछ अधूरे भी रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उस कोरे कागज पर अपने सपनों की तस्वीर को उकेरना कभी बंद नहीं करते, इस आस में कि एक ना एक दिन तो सपने पूरे हो ही जाएंगे। बस अगर कुछ चाहिए होता है तो उन सपनों को पूरा करने का हौसला, उन सपनों को देखने की हिम्मत, और जिनके पास उन्हें पूरा करने का हौसला और हिम्मत होती है, नो डाउट वो कुछ कमाल ही करते हैं, कुछ अलग ही होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज की जो शख्सियत है जिन्हें हम आज आप तक मिलवाने के लिए लेकर आए हैं। रजनीगंधा में जब कुछ विशेष ऐसे कार्यक्रमों की बात होती है तो अक्सर हम आपको हीरो हीरोइंस, निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, इन सब के बारे में आपसे बात करते हैं, लेकिन आज के रजनीगंधा में हाँ यकीनन वो हीरो नहीं हीरोइन नहीं, लेकिन भारतीय सिने जगत का जब फिल्मों की बात आती है तो एक ऐसा हिस्सा है जिनके बिना एक फिल्म पूरी नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कि रुलाना जितना आसान है हंसाना उतना ही मुश्किल होता है, और जो इस कला में माहिर होता है उनकी बात ही निराली होती है। ऐसी ही शख्सियत है आज हमारे साथ, कौन है बताऊंगी आपको अभी इस गीत के बाद, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सुने ठहरे और उसके बाद उस मकाम तक पहुंचे जहां से आज की उस शख्सियत को लेकर हम आए हैं जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। रात के 10:11 का वक्त, रजनीगंधा का सफर शुरू हो चुका है आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी दोस्त रजा के साथ। सपने देखे थे उन्होंने और उन सपनों को पूरा करने की राह में हिम्मत हौसला सब दिखाया।

0: वो सपने हैं क्या जो आपको जगा दें, जो आपको आपसे ये ना कहें कि भाई तुम जागो और उनको पूरा करने की राह में एकदम लगे रहो, क्योंकि तभी मैंने कहा कि सपने देखना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उनको देखने की हिम्मत हौसला जिनके पास होता है वही कुछ अलग मकाम हासिल कर लेते हैं। और आज की जो कहानी है ना वो एक ऐसी शख्सियत की है। ये कहानी है गोरखपुर के एक फोटोग्राफर के फिल्मी दुनिया का नामी कॉमेडियन बनने की। एक ऐसा कॉमेडियन जिस पर उसके घर के नौकर के बोलने का स्टाइल इस कदर हावी हुआ कि ताउम्र हावी रहा, और तो और उस स्टाइल की वजह से भारतीय सिने जगत में उन्होंने अपना एक विशेष मकाम बनाया, एक विशेष जगह बनाई। कल्पना कीजिए, एक विशाल व्यक्तित्व, दमदार उपस्थिति, मगर इतनी मधुर और खींची हुई आवाज कि हर पंक्ति एक पंच लाइन में बदल जाती है, जिनकी डायलॉग डिलीवरी सिर्फ एक डायलॉग डिलीवरी नहीं बल्कि एक हाथ से राहत हुआ करती थी। हाँ, एक हाथ से राहत जो आपको बिना किसी ज्यादा मेहनत किए ही हंसा दिया करती थी। मतलब उनका फिल्मी पर्दे पर आना और उन्हें देखते ही आपके होठों पर मुस्कान खिल जाना, दर्शक दीर्घा में एक अलग ही गुदगुदाहट आ जाना। बॉलीवुड के स्वर्णिम युग के एक ऐसे अभिनेता जिनके स्लो मूव संवादों ने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अपना जो सीन था उनको किया, उसे रोशन किया। मैं आपको उनका नाम बता दूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं उनका नाम बताऊं उसके पहले आप खुद उनकी आवाज को सुनिए और अंदाजा लगाइए कि आज की ये शख्सियत कौन है। फिर तो हम है ना आपको बताने के लिए।
1: अरे क्यों आखिरी रात को शोर मचा रहा है वो?
2: अरे भगवती, तुमने कुछ सुना?
1: मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, तुम्हारे कान बजते होंगे।
2: अरे भगवंती, आज की रात बत्ती जला के सोना चाहिए, चोरों ने हमारा घर देख लिया है।
1: तो घर में बचा ही क्या है जो चोर लेने आएंगे? चलो भगवान का नाम लेके सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में
2: जाऊं। नहीं, नहीं, नहीं, तुम कहीं ना जाओ, मुझे डर लगता है, मैं यही सोता हूँ। हे काली माई, हे दुर्गा माई।
1: अच्छा, चुप रहो दुर्गा भाई, काली माई।
0: तो उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने नो डाउट इस आवाज को पहचान लिया होगा। ये वो आवाज जो बहुत स्लो मूवमेंट्स के साथ लेकिन खींच कर अपने संवादों को बोलने का हुनर रखती थी। अगर जान लिया है तो प्लेटफॉर्म खुला है, आप मुझे बता भी सकते हैं। हालांकि मैं आपको खुद इस बात की तह तक ले जाने वाली हूं कि ये नाम कोई और नहीं बल्कि भारतीय सिने जगत की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आपने और हमने तमाम अच्छे बुरे किरदारों में देखा, अक्सर हंसाते हुए तो कभी कभी संजीदा किरदारों में भी उन्होंने अपना जो अभिनय था उसको दिखाया और ये साबित किया कि वो एक ऐसे महान अभिनेता हैं जिनके विशिष्ट धीमी गति से बोलने की शैली, टेडी बियर जैसी गोल मटोल भोली भाली शक्लो सूरत और उनकी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग से बॉलीवुड में एक अलग खास जगह उन्होंने बनाई। कोई और नहीं जिनको आपने पहचान लिया, हाँ, भारतीय सिने जगत के महान हास्य अभिनेता असित सेन साहब। बर्थ एनिवर्सरी है उनकी आज, तो जब एक ऐसी शख्सियत की जो हंसाने का मादा रखता हो दुनिया में लोगों को, उन्हें हम याद ना करें, ये कैसे हो सकता है? जब हीरो हीरोइन निर्माता निर्देशक गीतकार संगीतकार सबको हम आप तक पहुंचाते हैं, तो वो शख्सियत जो बहुत छोटी देर के लिए पर्दे पर आती थी लेकिन बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी उपस्थिति को दर्ज करती थी, वही प्यारी भोली सूरत जिसे हम असित सेन साहब कहते हैं। तो आज का रजनीगंधा उन्हीं के नाम, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। मैं आपकी दोस्त, आपके रचा।

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।
1: कौन है वो दिलरुबा,
2: तो ये दिलरुबा कोई और नहीं बल्कि आपके हमारे दिलों को गुदगुदाने वाले असीस सेन साहब, जिन्होंने ऐसा मकाम चलाया हास्य किरदारों का कि जिसे आज तक भी कोई उनकी जगह कोई ले नहीं पाया, उसे कोई भर नहीं पाया। आज ही के दिन 13 मई 1917 को गोरखपुर के बंगाली परिवार में उनका जन्म हुआ। रहने वाला जो था परिवार वो बंगाल का था, लेकिन कहते हैं कि रोजगार के सिलसिले में उनका परिवार पश्चिम बंगाल के जिला बर्धवान से आकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बसा था। असीस सेन साहब के पिता कभी रेडियो, कभी ग्रामोफोन की दुकान, तो कभी बिजली के सामान की दुकान चलाया करते थे। और कहते हैं कि 7 बच्चों के परिवार में पले बड़े असीस सेन साहब की अपने पिता की दुकान चलाने से अलग ख्वाहिश थी। मतलब जैसे परिवार में पिता चाहते हैं, सभी के चाहते हैं कि भाई उनका बेटा या जो भी हो वो अगर उनका कोई बिजनेस है तो वो उसमें उनका साथ दे, उसे चलाए, तो ऐसे ही उनके पिता भी कुछ यूँ ही चाहते थे। लेकिन उनकी ख्वाहिश पिता के व्यवसाय को चलाने से कुछ अलग थी। असीस सेन साहब को बचपन से फोटोग्राफी का बेहद शौक था, जो आगे चलकर उनके सिनेमाई करियर का आधार भी बना, ये आपको आगे पता चलेगा। अभिनय का सपना देखने वाले अपने कई समकालीनों के विपरीत असीस सेन साहब का पहला प्यार फोटोग्राफी था, लिहाजा कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में जाकर डायरेक्टर नितिन बोस से फिल्म मेकिंग सीखना चाहते थे वो। लेकिन समस्या ये कि घर परिवार को कौन समझाए, पिता चाहते थे कि जो व्यवसाय है घर का उसको संभालें, यहीं रम जाएं, यहीं रहकर कुछ बेहतर करें। लेकिन उनकी ख्वाहिश, उनका जो पहला प्यार था वो थी फोटोग्राफी, तो उसी क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे, बढ़ना चाहते थे। जद्दोजहद गहरी थी, क्योंकि एक तरफ परिवार की पुकार तो दूसरी तरफ दिल की पुकार, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसे किसकी पुकार को उन्होंने सुना और कैसे वो कारवां आगे बढ़ा, वहां तक पहुंचा जहां से वो हास्य अभिनेता के तौर पर हमारे आपके सबके साथ जुड़े, सब बताएंगे आपको। बस इसके लिए आपको यहीं बने रहना पड़ेगा आपके अपने 100.7 FM ब्रेनबो पर आज के रजनीगंधा में।

बस ऐसे ही दिल की पुकार को सुनते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे वो, और इस मुकाम को आगे तक ले जाना चाहते थे। कहते हैं कि जब 10वीं पास हुए तो माँ चाहती थी कि उनकी शादी करवा दी जाए, पिता चाहते थे कि व्यवसाय को संभाल लें, और इधर माँ चाहती थी कि जल्दी शादी हो जाए क्योंकि बहुत बीमार रहा करती थी माँ। तो उनका मानना ये था कि उनके रहते अगर बेटे की शादी हो जाएगी, घर बस जाएगी, सामने देख लूँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसा कि हर माँ बाप की कभी किसी विषम परिस्थितियों में होती है। और उनके इस इच्छा को दबाव दादी ने भी दे दिया। दादी का भी ये कहना था कि नई शादी करवा दी जाए तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी, यहीं रहेगा, अगर जो पढ़ाई में मन नहीं भी लग रहा है तो यहाँ रहकर अपनी गृहस्थी संभालेगा, यहीं रम जाएगा। लेकिन असीस सेन साहब ये नहीं चाहते थे। कारण एक तो फोटोग्राफी से पहला प्यार, दूसरा ये कि कम उम्र में शादी करने का कोई अभी मन भी नहीं था, इसलिए एक ऐसे मौके की तलाश में थे जहाँ से वो निकल सकें, वहाँ पहुँच सकें जहाँ उनके सपनों की दुनिया हो। और कहते हैं इस मौके को पूरा करने का वो वक्त भी आ गया जब एक रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता जाने का मौका मिला। और बस मौका जैसे ही मिला उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए घर वालों से ये बहाना बना दिया कि वो कलकत्ता जाकर वहाँ रहकर बीकॉम की पढ़ाई करना चाहते हैं। अब जब पढ़ाई का मसला सामने आ गया तो जाहिर सी बात है घर वालों को वहाँ झुकना ही पड़ा। कहते हैं कि ऐसे सेन साहब के घर वालों ने उन्हें कलकत्ता में रहकर पढ़ने की छूट दे दी थी, हालांकि इस बात से बिल्कुल बेखबर बेअनजान होकर कि उनकी प्लानिंग क्या है। घर से झूठ बोलकर कलकत्ता आ गए थे वो कि यहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे, जबकि प्लानिंग में तो ये था कि कलकत्ता के मशहूर न्यू थिएटर्स में काम करेंगे और फिर नितिन बोस साहब के सानिध्य में रहकर, उनके अंडर में रहकर फिल्म मेकिंग के गुर सीखेंगे। लिहाजा पढ़ाई तो कहने भर को रहकर एक किनारे हो गई और फिल्म मेकिंग के गुर सीखने का

सुरूर था वो इतना रहा कि थिएटर से भी जुड़ गए। कलकत्ता में ही पहली दफ़ा कहते हैं असित सेन साहब ने स्टेज पर एक्टिंग की, क्योंकि अंदर से वो एक कीड़ा तो था ही ना कि उस दौर में जाना है जहां वो कैमरामैन बने, फोटोग्राफी करें और थोड़ा सा एक्टिंग का गुर अंदर था ही, तो उसको भी करें। लिहाजा कलकत्ता के थिएटर जगत में इनका जो नाम था वो भी होने लगा, चर्चे होने लगे, लोग जानने लगे, जिसके चलते लगने लगा था उन्हें कि वो जो चाहते हैं ये वही मंजिल है जिसे वो हासिल करना चाहते हैं, ये वो प्यार है जो उनकी ज़िंदगी में आया है, जिसका उन्हें शिद्दत से इंतज़ार था। कैसे अपने प्यार को उन्होंने पाया, कैसे पहुँचे अपनी मंजिल तक, आगे सारी कहानी आप तक होगी। फ़िलहाल 10:29 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 107.7 FM रेनबो पर।

0: जिंदगी में सब कुछ ऐसे बहार के तरीके से लग रहा था। पिता ने गोरखपुर बुलवा लिया था वापस कलकत्ता से कमिश्नर साहब के तबादले की विदाई की समारोह की तस्वीरें खींचने के लिए, और कहते हैं कि वहाँ तस्वीरें इतनी पसंद आई कि उससे मुतासिर होकर उन्होंने 1932 में अपनी गोरखपुर में ही फोटोग्राफी की दुकान खोल दी और नाम रख दिया था सेन स्टूडियो, सेन फोटो स्टूडियो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, उनका स्टूडियो बहुत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ था। मगर कहते हैं कि हम जो अक्सर सोचे वैसा हमेशा पूरा हो ऐसा होता नहीं। दुकान खुले हुए कुछ ही साल हुए थे कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये वो दौर था जब फोटोग्राफी का सारा सामान इंग्लैंड से भारत आया करता था, इसलिए जब युद्ध छिड़ा तो सामान की आवाजाही भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इतना प्रभाव पड़ा कि सेन साहब का जो फोटो स्टूडियो था वो भी संकट में आ गया। फोटो स्टूडियो बंद होने के कगार पर पहुंचा तो असित सेन साहब को रोजी रोटी की चिंता भी सताने लगी। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जिंदगी उनसे चाहती क्या है, क्या ऐसा है जो वो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उसके बीच में इतनी तमाम सारी अड़चनें आ रही हैं। कहते हैं कि रोजी रोटी का संकट गहराया तो मन में सैकड़ों तूफान भी उठने लगे कि क्या और कैसे किया जाए, क्योंकि कलकत्ता में भी जो कुछ मकाम हासिल किया था उसे पीछे छोड़कर विराम लगाकर गोरखपुर में एक स्टूडियो खोला था, ये सोचकर कि अच्छा काम करके अच्छा पैसा और नाम सब कमाया जाएगा, यहीं रह जाएंगे, पिता की जो सोच थी उसको भी पूरा करेंगे और अपने फोटोग्राफी का जो शौक है उसको भी निभाएंगे। लेकिन नियति के चक्र ने सब उलट दिया। इसी सोच विचार और जद्दोजहद के चलते कहते हैं बंबई जा पहुंचे वापस, जहां उन्हें एक फिल्म कंपनी में स्टिल फोटोग्राफी का काम भी मिल गया। नए काम में असित साहब रम भी गए थे, लेकिन ईश्वर को जैसे अभी उनके और इम्तिहान लेने बाकी थे। समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी आखिर उनसे चाहती क्या है।
1: कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए,

सवाल उनको बार बार अंदर तक कुरेद रहा था कि आखिर वो जो सोच रहे हैं चीजें वैसे क्यों नहीं हो रही हैं। एक तरफ तो रास्ता दिखता है कि हाँ जो उन्होंने सोचा है वो मंजिल उनको मिल जाएगी, कि तभी कुछ ऐसा होता है कि आकर कोई चीज ऐसी खड़ी होती है सामने जो उनके बने बनाए सपने को एक ही हवा के झोंके से ढेर कर देती है। नहीं समझ पा रहे थे। कई सारे इम्तिहानों के बीच में जब वो अपने घर से कलकत्ता से बंबई पहुंच गए थे, जहां उन्हें वापस काम मिला स्टिल फोटोग्राफी का, रम भी गए थे वहां पर, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वापस ये लगा कि शायद अब फिर कुछ नया, कुछ आगे कुछ ऐसा आना है जिसको सोचकर कई बार मन भी घबराता है। कहते हैं कि तभी घर से उनको तार मिला कि माँ बीमार हैं, घर आ जाओ। असित सेन साहब तुरंत अपना सारा सामान उठाकर कहते हैं मुंबई से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचे तो माँ बीमार थी। खबर मिली थी कि माँ की बीमारी की, लेकिन उससे पहले दादी चल बसी। दादी के निधन के कुछ समय बाद, चूँकि माँ बीमार भी थी और सदमे में भी थी, जिसकी वजह से उनका भी निधन हो गया। 3 महीने के अंदर ही घर में हुई 2 मौतों से असित सेन साहब पूरी तरह टूट गए थे। इतना कि ना अब उनसे गोरखपुर में रहा जा रहा था और ना ही बंबई जाकर दोबारा काम करने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें, कैसे अपनी ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है उसको पूरा करें, फिर किस तरीके से उस मकाम तक पहुँचे जहाँ से हास्य अभिनेता हमें आपको मिला। बताएंगे आपको इस गीत के बाद। फिलहाल ये गाना आप तक।

होता है में से कई बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कि हम समझ नहीं पाते कि आखिर जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है और क्या हो रहा है, जिंदगी आपसे क्या चाहती है नहीं समझ पाते आप, दर दर भटकना और फिर उसके बावजूद हिम्मत और हौसले को हार जाना, अक्सर हम में से कई सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन ये असद सेन साहब थे जो इतनी मुश्किलात, इतनी जद्दोजहद के बावजूद भी कहते हैं उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा, उसे नहीं खोया। एक दिन उन्होंने अपना दिल पक्का किया और हिम्मत जुटाते हुए वापस कलकत्ता की तरफ रवाना हो गए और कहा जाता है कि ये फैसला उनकी ज़िंदगी का निर्णायक मोड़ भी साबित हुआ। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था कि जब गोरखपुर से कलकत्ता पहुँचे तो वहाँ जाकर उनकी मुलाकात उनके दोस्त कृष्णकांत से हुई, जो कि उस वक्त फिल्म बन फूल में कानन बाला के साथ काम कर रहे थे। और कृष्णकांत साहब ने उनकी मुलाकात एक्ट्रेस सुमित्रा देवी और उनके पति देव मुखर्जी से करवाई और ऐसा माना जाता है कि दोनों से ये जान पहचान आगे उनके बहुत काम आई। उन्हीं की बदौलत उनकी मुलाकात फिल्म मेकर बिमल रॉय साहब से हुई, जो कि तब तक अपनी पहली बंगाली फिल्म उदयर पाथे बना चुके थे और अब हिंदी में बनाने की तैयारी कर रहे थे। मुश्किल ये थी कि बांग्ला भाषी थे वो, हिंदी का ज्ञान उन्हें नहीं था और उस फिल्म को हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसकी हिंदी अच्छी हो, जो अच्छी तरीके से हिंदी का जानकार हो। ये जो मोड़ था, ये जो मौका था, असित सेन साहब के लिए कमाल का होने वाला था, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा कि भले ही वो बंगाली परिवार से थे लेकिन चूंकि जन्म गोरखपुर में हुआ था, पले बड़े वहाँ थे, तो जिस कारण उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, जिसके चलते बिमल रॉय साहब ने उन्हें अपना तीसरा सहायक बना लिया। अब तीसरा इसलिए कह रही हूँ आपसे क्योंकि इसके पहले दो असिस्टेंट थे उनके पास, लेकिन बात वही थी कि हिंदी के लिए कोई चाहिए था तो वो नहीं था। वो तलाश उनकी ख़त्म हुई, बिमल रॉय साहब की ख़त्म हुई असित सेन साहब के पास आकर, और अगर दूसरे अर्थों में कहें तो असित सेन साहब को की भी जो तलाश थी वो बिमल रॉय साहब के साथ आकर कहीं ख़त्म हुई, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में दोनों ने एक लंबा जो था कोलेब्रेशन साथ में किया, कई सारी फिल्में की जो सराही भी गई, पसंद भी की गई। अच्छा, जब उन्हें असिस्टेंट बनाया तो उस बीच कुछ छोटे मोटे रोल भी वो थिएटर में किया करते थे और ये बात विमल रॉय साहब जानते थे। जब फिल्म उदयर पाथे का हिंदी वर्जन बन के आया हमराही नाम से, तो कहते हैं कि इस फिल्म में उन्होंने असित सेन साहब को एक छोटा सा रोल दे दिया कि तुम इस रोल को प्ले करो। हालांकि रोल बहुत छोटा था लेकिन पहली फिल्म के तौर पर वो शुमार हो गया। असित सेन साहब मेहनती थे, ये बात तो विमल रॉय साहब को बताई थी और फिल्म में उनका जौहर वो देख ही चुके थे, खासा मुतासिर थे उनसे। और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी जब उन्होंने तीसरे असिस्टेंट के तौर पर उनको रखा था, देखते ही देखते वो उनके दूसरे और फिर पहले असिस्टेंट के तौर पर शुमार हो गए। अब बिमल रॉय साहब की तलाश यहाँ ख़त्म हुई थी तो वहीं असित सेन साहब को भी ये लगने लगा था कि जो ख्याल उनके मन में दिन रात सुबह शाम चलता था उसको आयाम मिलने वाला था।

बिमल रॉय साहब के साथ उनका कोलेब्रेशन हो गया था 1945 से 49 तक। कहते हैं ऐसे सेन साहब न्यू थिएटर से ही जुड़े रहे। 50 के दशक की शुरुआत में जब बांग्ला सिनेमा थोड़ा पतन पर आने लगा तो बिमल रॉय बॉम्बे टॉकीज के बुलावे पर मुंबई आ गए थे और अपने साथ अपनी टीम में कुछ खास लोगों को भी ले आए, जिनमें उस वक्त सिनेमाटोग्राफर कमल बोस, एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी और लेखक नवेंदु घोष के साथ साथ असित सेन भी शामिल थे। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म माँ का निर्देशन करने के बाद जब बिमल रॉय ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली तो वहाँ भी असित सेन साहब उनके साथ बतौर सहायक जुड़े रहे और ये सिलसिला करीब 13 सालों तक साथ में रहा। बिमल रॉय के असिस्टेंट के तौर पर शुमार रहे असित सेन साहब और ये सिलसिले ने कई सारी फिल्में आगे दी हैं। जब अगले घंटे में आपके साथ पहुँचेंगे ना तो उन तमाम फिल्मों का जिक्र भी करेंगे और उनके जो हास्य किरदार हैं उनका भी जिक्र करेंगे, कैसे एक हास्य अभिनेता के तौर पर अपनी विशिष्ट अनूठी जो शैली थी उससे उन्होंने एस्टैब्लिश किया। पर्दे पर आते ही जहां लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिलती थी सिर्फ उनकी एक डायलॉग डिलीवरी के चलते। जानने के लिए बस आपको यहीं हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। 10:57 का वक्त हो चुका है, फर्स्ट हाफ को हम यहाँ पर रोकेंगे लेकिन आपका साथ यहाँ भी इसकी दरकार है। उन्हीं की फिल्म अभिनेत्री से एक प्यारा सा गाना आपको दे रही हूँ, उस गाने को सुनिए, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, जुड़े रहिए आपका अपना 100.7 FM रेनबो, जिस पर आज आप हम और आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थ एनिवर्सरी असित सेन साहब की।

नमस्कार। रात के 11 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद ना करें। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को भी प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने पीएनजी, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों आदि के उपयोग पर विशेष बल दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में जन भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोकुल अनुसंधान संस्थान मथुरा की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय के ई ऑफिस का उद्घाटन किया गया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के बालिका छात्रावासों की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा उनकी समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि का स्वागत किया है। उन्होंने प्रदेश के समस्त किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये निर्णय किसानों की आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम है। कृषि मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्थन मूल्य में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी से प्रदेश के किसानों की आय में भारी वृद्धि होगी और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार आएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की खामोशी।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: नौकरी दिलाई है मालिक।
2: कौन है
1: मालिक?
2: वहाँ कौन कर रहा है?
1: अरे आप यहाँ पे हैं? साष्टांग प्रणाम। जय हो जय हो।
2: क्या कष्ट है?
1: मैं तो आपका कष्ट दूर करने आया हूँ। वो आपका मोटू मैनेजर है ना, तोंदू मल, वो महाचार्सू भी साथ में है। हाँ,

0: आप उसको फौरन लात मार के निकाल दीजिए और मुझे गले से लगा दीजिए।
1: बड़े आया है गले से लगने वाला। अबे तोंदुमल के सामने ही तोंदुमल की पोल खोलता, जा निकल यहाँ से।
0: आप ही तोंदुमल हैं? ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, नहीं तो मैं आपको ही मस्का लगाता।
1: मस्का? मस्के से क्या होगा
0: आजकल की दुनिया में।
2: तो उम्मीद करती हूँ कि ये आवाज वापस आपको गुदगुदाने का मादा रख रही होगी, और ये कोई और नहीं बल्कि असित सेन साहब हैं, जिनकी कॉमेडी के सीन जब फिल्मी पर्दे पर चलते थे तो आप और हम बिना किसी जद्दोजहद के होठों पर मुस्कान लेकर कई घंटों तक बस ऐसे ही ठहाके लगाया करते थे। बर्थ एनिवर्सरी है आज उनकी, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए आज का रजनीगंधा हम समर्पित कर रहे हैं उन्हें। रात के 11:05 का वक्त हो चुका है और ये सफ़र यूं ही आपके साथ है। 1956 तक असित सेन विमल दा के असिस्टेंट बने रहे थे, और जब 53 में आई 2 बीघा ज़मीन में बतौर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, और 1953 में जब रिलीज़ हुई परिणीता, उसके बाद विराज बहू 54 में, और 55 में आई थी फिल्म देवदास जिसमें उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर क्रेडिट भी उनको दिया, वो क्रेडिट भी उनको मिला। कहते हैं कि 1956 में विमल दा ने असित सेन साहब को अपनी ही फिल्म कंपनी विमल रॉय प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म परिवार के डायरेक्शन का मौका दिया, और इसके तुरंत बाद ही 1957 में असित सेन साहब ने फिल्म अपराधी कौन उसको डायरेक्ट किया, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री थी। कहा जाता है कि आलोचकों ने उनके सस्पेंस को कुशलता से संभालने की बेहद जमकर तारीफ की, जिसने साबित कर दिया कि उनमें निर्देशन का भी हुनर है। फोटोग्राफी का शौक उनको था ही, कैमरामैन वो बनना ही चाहते थे, और कुछ अदायगी भी थी क्योंकि जब थिएटर करते थे तो वो भी जौहर था उनके अंदर, हिंदी अच्छी जानते थे, तमाम सारी चीज़ों से विमल रॉय खासा मुतासर थे उनसे। और फिर उन्होंने ये मौका भी उनको दिया, जिसका हुनर जब सामने आया तो लोग तारीफ करते नहीं थके। कहते हैं इस एक मोड़ पर आकर असित सेन साहब को अब ये रियलाइज़ हो रहा था उन्हें निर्देशन की फील्ड में अपना कदम रख देना चाहिए, जो उनका प्यार है उसको यहाँ से वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दो बड़ी सफलताओं के बाद भी असित सेन साहब ने निर्देशन की कमान छोड़कर अभिनय की तरफ रुख कर लिया, और उसके बाद बने भारतीय सिने जगत के महानतम हास्य कलाकार। बताएंगे हम आपको आगे के सफर में। फिलहाल 11:06 का वक्त, रजनीगंधा का सेकेंड हाफ आज बर्थ एनिवर्सरी स्पेशल के तौर पर असित सेन साहब की।

कहते हैं कि जब तक विमल रॉय साहब ने उन्हें मौका नहीं दिया था, तब तक असित सेन साहब ने भी कभी निर्देशक बनने का सपना भी सपने में नहीं देखा था। बस फोटोग्राफी का शौक था और कुछ छोटी मोटी फोटोग्राफी करके कुछ अच्छा नाम कमाना चाहते थे, ये उनके सपने में चल रहा था। लेकिन जब ये दो फिल्में परिवार और अपराधी कौन उन्होंने डायरेक्ट करी, तब उन्होंने इस बात को बिल्कुल पुख्ता कर लिया था कि अब वो निर्देशन के क्षेत्र में ही आगे बढ़ेंगे। चार फिल्में भी साइन कर ली थी। कहते हैं कि दो की शूटिंग शुरू भी हुई पर पूरी नहीं हो सकी, और फिर दो फिल्में जो शुरू ही नहीं हुई वो ऐसे ही रह गई। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि इसके बाद करीब वो 11 महीने तक खाली बैठे रहे। अब चूंकि डायरेक्शन का कोई काम नहीं आ रहा था और आगे भी कोई इन्होंने ऐसी प्लानिंग की नहीं थी, क्या करें कि इसी वक्त उनके पास अभिनय के ऑफर्स आने लगे। कहते हैं कि फिर उन्होंने अपना जो मन था उसको मोड़ा अभिनय की तरफ, क्योंकि कुछ तो करना ही था ना जो उनको इस क्षेत्र से जोड़े रह सकता, जहां उनको वो फील, जहां वो पुट जो था वो उन्हें मिलता रह सकता। 1949 में उन्होंने न्यू थिएटर की एक फिल्म छोटा भाई साइन की थी, और उस फिल्म में असित साहब को एक बुद्धू नौकर के किरदार में कॉमेडी करनी थी। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए, और कहते हैं कि तभी यहाँ पर काम आया उनके घर का वो बुद्धू नौकर, जो संवाद को, जो बात को खींच खींच कर बड़े ही धीमे अंदाज में, स्लो टेम्पो में बोलता था, का हो बाबू का करत हो। तो ये तो हम बोल रहे हैं, लेकिन जब असित सेन साहब ने इस तरीके के डायलॉग्स को बोला तो वो स्टाइल ही एकदम अलग था। कहते हैं कि उनकी उसी स्टाइल को कॉपी कर लिया असित सेन साहब ने, जो उनके घर का जो नौकर था, और उनकी ये ट्रिक भी काम आ गई, जिसके बाद सुजाता, परख, काबली वाला, छाया और जंगली जैसी फिल्मों के जरिए असित सेन साहब के पास कॉमेडी के रोल्स की लाइन लग गई, और यहाँ से हास्य अभिनेता का जो उदय था वो हुआ। हर तरफ बस उनकी जो कॉमिक टाइमिंग थी, जो उनका अंदाज था वो स्लो टेम्पो में बोलने का, उसकी ही चर्चा फिर चर्चा होने लगी। हर तरफ उन्हीं के नाम के डंके भी बजने लगे।

0: तो बेहद कम स्पीड में डायलॉग बोलने वाली स्टाइल की वजह से असित सेन साहब के चर्चे हर तरफ होने लगे थे, इतने ज्यादा कि हर डायरेक्टर उनसे अब अपनी हर फिल्म में इसी तरीके के डायलॉग बोलने की मांग करने लगा। कहते हैं खुद विमल रॉय साहब ने असित सेन साहब की डायलॉग डिलीवरी से प्रभावित होकर उन्हें फिल्म सुजाता में पंडित भवानी शंकर शर्मा के रूप में एक छोटा सा किरदार दे दिया। 1959 में आई थी ये फिल्म, न केवल अपने कथानक बल्कि गीतों के चलते भी सराही गई थी और 1960 के कान फिल्म महोत्सव में भी शामिल हुई थी। कहते हैं असित सेन साहब की जो स्टाइल थी वो इस तरीके से छाई कि बस उसके बाद तो यही डिमांड, यही चीज और यही अदायगी हर किसी को पसंद आने लगी।
1: गोपाल गिरदारी,
2: चिल्लाओ नहीं, पुलिस आ रही है।
1: अरे पुलिस आते आते तो ये फट जाएगा, सब मर जाएंगे, चलो भागते रहे। रामू, गोपाल गिरदारी, अरे कहाँ से मर गए?
3: क्या हुआ सेठ?
1: अरे क्या हुआ वो देखो,
3: वो तो छोटा सा बच्चा सेठ जी।
0: तो बीच बीच में डायलॉग्स आपको इसलिए सुनवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि आज आप असित सेन साहब की बर्थ एनिवर्सरी रजनीगंधा के थ्रू हम और आप यहाँ पर इसको जी रहे हैं। और बात सुजाता की चली थी, फिल्म सुजाता की, तो उसी फिल्म से ये प्यारा सा गीत आप सबकी पेश खिदमत।

फिल्म सुजाता के छोटे से किरदार ने उन्हें हर घर में चर्चित तो कर दिया था, लेकिन अभी भी इंतजार था किसी एक ऐसी फिल्म का या फिर किसी एक ऐसे किरदार का जो उनको स्थायित्व दिलवाता और ये बता सकता कि हाँ उनके अंदर हुनर है, काबिलियत है एक अच्छे हास्य अभिनेता बनने की भी। इसी इंतजार के बीच आया साल 1962, जब पर्दे पर रिलीज हुई वो फिल्म जिसने न केवल उनको स्थायित्व दिया बल्कि एक ऐसी पहचान भी दी जिस पहचान को आगे आने वाले वक्त में भी कई सारे लोगों ने भुनाया। कौन सी थी वो मूवी अभी बताऊंगी आपको, लेकिन इस गाने को सुनिए, उसके बाद ये खुलासा आप तक।

0: हमारी कसम।
1: तो बेकरारी का आलम उधर भी था, इस इंतजार में कि कब वो मकाम आएगा जब उन्हें एक स्थायित्व मिल जाएगा और एक पहचान भी मिल जाएगी। और मुझे पता है कि बेकरारी का आलम इधर भी है, ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन सी फिल्म थी जिसने उन्हें एस्टैब्लिश कर दिया। तो बस ठहर जाइए, वो वक्त आ गया जब हम आप तक उस फिल्म के बारे में उसका जिक्र करने के लिए यहाँ वापस हाजिर हैं। साल था 1962, तारीख 1 जनवरी, जब पर्दे पर रिलीज हुई वो फिल्म जो कि एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर थी, जिसे निर्देशित किया था बीरेन नाग साहब ने और संगीत था हेमंदा का। दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था, निर्देशित भी किया था। कहते हैं कि विश्वजीत साहब की ये पहली हिंदी फिल्म भी थी, और अगर हम मुख्य भूमिकाओं में बात करें तो विश्वजीत साहब के साथ वहीदा रहमान भी थी और असित सेन साहब भी इस फिल्म में थे अपने उसी चिर परिचित अंदाज में। कहते हैं कि उनके उसी अंदाज को ध्यान में रखकर उनके लिए एक विशेष तरीके का किरदार रचा गया था, और वो किरदार था फिल्म में जासूस का। जी हाँ, गोपीचंद जासूस का किरदार उनको दिया गया था, जिसको कहते हैं कि उन्होंने इस तरीके से निभाया, इस अदा से निभाया कि वो इतना पॉपुलर हुआ कि न केवल उस वक्त उसे सराहा गया बल्कि बार बार इसकी नकल भी की गई। और इस तरीके से नकल हुई कि साल 1982 में अभिनेता राजेंद्र कुमार के भाई फिल्म मेकर नरेश कुमार साहब ने एक फिल्म गोपीचंद जासूसी कहते हैं उस नाम पर बना डाली, और ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि वही जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जी हाँ, वही फिल्म जो बेहद सराही गई थी, वीरेन नाग साहब के द्वारा प्रदर्शित की गई थी, और पर्दे पर विश्वजीत, वहीदा रहमान नजर आए, साथ में गोपीचंद जासूस की किरदार के साथ रहे असित सेन साहब, और फिल्म 20 साल बाद। पता है लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी रही कि इस फिल्म में गोपीचंद जासूस का किरदार मिलने के वक्त बड़ी दिक्कतें आने वाली थीं। क्या था वो किस्सा, बताएंगे भी आपको हम।

अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि उनकी हर अदा कातिल थी या नहीं। आपको स्पष्ट जवाब मिलेगा कि हाँ, उनकी हर अदा कातिल थी। जब वो पर्दे पर आते थे अपनी बेहद धीमी अंदाज में, बेहद धीमी स्टाइल में, और शब्दों को खींच कर, संवाद को खींच कर बोलते थे, तो यकीनन वो दिलों को चुरा ले जाते थे, और ऐसा कि फिर उस जगह को कोई और भर नहीं पाया कभी। लेकिन जब इस फिल्म के दौरान उनका जो रोल था ना, गोपीचंद जासूस, उसको बनाने की बात आई तो बड़ी जद्दोजहद हो गई थी। जो एक तरीके का किरदार करते करते ये बात तो उन्हें लगने लगी थी कि वो भी कहीं टाइप्ड ना हो जाएं, ये ख्याल असित सेन साहब के मन में भी था। लेकिन ये उनकी हिम्मत ही थी कि बावजूद इसके उन्होंने अपने उस स्टाइल को नहीं छोड़ा और उसी स्टाइल से अपना एक मकाम भी बनाया। कहते हैं कि शूटिंग के दौरान जब कुछ लोगों को जासूस का इस तरीके से बोलना पसंद नहीं आया, मतलब जनरली जासूस जो होगा वो थोड़ी जासूसी करता है, वो गंभीरता के साथ सामने आए, ऐसा लोग विचार करते हैं, सोचते हैं, लेकिन जो उनका अंदाज था बेहद स्लो स्टाइल में, धीमी गति से शब्दों को खींच कर बोलने का, उस वक्त कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। कहते हैं कि जब ये बात निर्देशक बीरेन्द्र नाग साहब के पास पहुंची तो घबरा कर उन्होंने असित सेन साहब के ढेर सारे सीन एडिटिंग टेबल पर ही काट दिए थे। सोचिए, फर्ज कीजिए, अगर ये ऐसा हो गया होता तो क्या ही होता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वीरेंद्र नाग साहब एक अच्छा जो हास्य अभिनेता था, उसकी एक्टिंग को उसके अभिनय से कहीं वंचित रह जाते। लेकिन भला ऊपर वाले का कि वक्त रहते कहीं ये एक समझ आई, और फिर हुआ कुछ यूं कि जब एडिटिंग टेबल पर उनके सीन काट दिए थे, लेकिन जब फिल्म पूरी हुई और रिलीज से पहले ट्रायल शो रखा गया, तो फिल्म को देख कर सभी को ये लगा कि गोपी चंद जासूस का जो किरदार है वो बहुत इंटरटेनिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इस किरदार को बहुत कम रोल इसमें दिया गया है, इसे कुछ ज़्यादा ही फुटेज मिलनी चाहिए। बस फिर क्या था, कहते हैं कि उसके बाद फिल्म में असित सेन साहब के काटे गए सारे सीन फिर से जोड़े गए, और जब फिल्म रिलीज हुई पर्दे पर तो गोपी चंद जासूस लोगों को ऐसा भाया कि हर तरफ उन्हीं की चर्चा होने लगी, इतनी कि लोग कहते हैं कि स्कूल में कई बार उनके जो बच्चे थे उनको भी लोग जासूस का बच्चा कहकर चिढ़ाने लगे थे। और तो और, वो जो जिक्र मैंने आपसे किया 1982 में, जब राजेंद्र कुमार साहब के भाई साहब ने उन्हीं के जो किरदार था गोपीचंद जासूस, उसको लेकर फिल्म बना दी। अब इतना कुछ होने लगेगा अगर, तो जाहिर सी बात है कि मन का जो भंवरा है वो गुनगुनाएगा ही। असित सेन साहब भी अपने इस उपलब्धि से खासा मुतासर हो गए थे, और अब जो मन का जो भंवरा था ना, यकीन मानिए असल मायने में उसने गुनगुनाना अब शुरू किया था।

तो उनके नाम की बयार अब हर तरफ बह रही थी और कहते हैं कि इस फिल्म के बाद 20 साल बाद के बाद जब गोपी चंद जासूस के किरदार में वो फेमस हो गए उसके बाद चांद और सूरज भूत बंगला नौनिहाल ब्रह्मचारी यकीन आराधना प्यार का मौसम पूरब पश्चिम दुश्मन मछली दीदी बुढ़ा मिल गया मेरा गांव मेरा देश आनंद दूर का राही अमर प्रेम सुजाता परख काबली वाला जंगली बंदनी मेरे सनम तीसरी कसम अमानुष बॉम्बे टू गोवा और अनुरोध जैसी तमाम सारी फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाते उनको देखा गया और मज़े की बात ये भी रही कि भले ही फिल्मों में हीरो या हीरोइंस को हम तवज्जो देते हैं लेकिन जब भी कभी वो पर्दे पर आते थे तो यकीन मानिए कहीं से भी वो जो अभिनेता थे उनसे कम फुटेज उन्हें कभी नहीं मिलती थी जितनी देर भी वो स्क्रीन पर रहते थे उस स्क्रीन का सारा जो एक क्रेज था ना सारा जो चार्म था वो अपने हिस्से ले जाया करते थे।

यकीनन जिंदगी की राहों पर कई बार आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन असित सेन साहब एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते। इत्तेफाकन उनका अभिनय में आना हुआ और उसके बाद जो उनके ख्वाब थे, जो सपने थे, वो उन्होंने अपनी शिद्दत के साथ उसको पूरा भी कर लिया। कहते हैं कि असित सेन साहब का बिमल रॉय साहब से एक अनूठा रिश्ता रहा। शुरुआत उनके साथ करी थी एक निर्देशक के तौर पर, फिर सुजाता फिल्म के ज़रिए उनका जो कॉमिक टाइमिंग था वो लोगों की नज़रों में आया और वहीं से रास्ता खुला 1962 की फिल्म 20 साल बाद का, जहां से उन्हें गोपी चंद जासूस का जो किरदार था वो मिला, जिसने उन्हें ख़ास पहचान, एक स्थायित्व भी दिलवाया। विमल रॉय साहब के अलावा यूँ तो उन्होंने कई सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन अगर हम विमल रॉय साहब की बात करें तो उनकी कई फिल्मों में वो भूमिकाएं निभाते नजर आए। फिर चाहे सुजाता में पंडित भवानी शंकर का किरदार हो, या बंदनी में शंभू की भूमिका, या परख में भंजू बाबू की भूमिका रही हो, या फिर 1971 में आई उनकी वो यादगार भूमिकाओं में से एक रही फिल्म आनंद हो, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और जीतकर ये भी साबित किया। अगर हम असित सेन साहब के प्रस्पेक्टिव से देखें, उनके हिसाब से देखें, तो एक हास्य अभिनेता के तौर पर शुमार थे वो, लेकिन जब इस फिल्म में वो आए तो उन्होंने ये भी साबित किया कि हास्य से परे वो एक मजबूत, एक सशक्त अभिनेता भी हैं, अभिनय भी कर सकते हैं और अपनी जो उनकी अदायगी है उससे सीधा दिलों में घर कर सकते हैं, जो वो वैसे भी कर रहे थे एक हास्य किरदार के तौर पर। लेकिन जब बात आनंद की आई तो यहाँ उससे कुछ अलग हटकर उन्होंने इस बात को भी साबित किया कि हास्य से परे भी वो एक सशक्त अभिनेता है, अभिनय।

0: कभी तो हंसाए।
1: सच है ये बात कि जिंदगी किसी पहेली के तरीके से ही लगती है, जो कभी आपको हंसाती भी है कभी रुलाती भी है। तो जहां ये बात सच है कि जिंदगी कभी हंसाती है कभी रुलाती है, तो वहां ये बात भी उतनी ही सच है कि रुलाना जितना आसान है, हंसाना शायद उससे कहीं कहीं ज़्यादा उतना ही मुश्किल। और जो इस काम को कर ले जाते हैं वो शुमार हो जाते हैं असित सेन साहब जैसे मशहूर हास्य कलाकारों के जो लिस्ट है उसमें। कहते हैं असित सेन साहब ने सिद्ध कर दिया था कि धीमी गति और पतली आवाज़ भी प्रभावशाली होकर हर पीढ़ी के दर्शकों को तुरंत पहचानने आ सकती है। इस बात का अंदाज़ा आपने खुद ही लगाया होगा, उनका कोई भी डायलॉग अगर आप सुनिए तो सब वो एक अलग अंदाज में है, एक अलग स्टाइल में है, जिसको अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो भी खाली आप उसे सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये असित सेन साहब ही हैं। फिर चाहे वो गंभीर बीमारी का वहम पाले हुए मरीज हो, या फिर जमींदार, या फिर खुद को विद्वान पंडित मानने वाला ब्राह्मण हो, या फिर पुलिस इंस्पेक्टर, या अपने मालिक के प्रति वफादार नौकर, कहते हैं कि इन सभी चरित्रों को उन्होंने एक ऐसी हास्य शैली में गढ़ा जो पूरी तरीके से उनकी थी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की थी, जिसे कई कोशिशों के बाद भी दोहराया नहीं जा सका। और यकीन मानिए दोहराया जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो एकदम अलहदा है, एकदम अलग तरीके की शैली है। अपने वक्त के जितने भी तमाम दिग्गज अभिनेता थे सभी के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की। फिर चाहे वो जितेंद्र साहब हों, राजेश खन्ना हों, संजीव कुमार हों, सुनील दत्त हों, या फिर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब हों, जिनके साथ पर्दे पर भी एक अच्छा दोस्ताना रहा तो निजी जिंदगी में भी एक दूसरे के बेहद करीब रहे, जिनके साथ

तो कुछ ऐसा ही ऐसे सेन साहब के साथ भी था. उन्होंने बस जैसे तैसे अपने आप को जिस चीज के लिए बनाना चाहा था वहां पहुंचा दिया. हास्य कलाकार के तौर पर खुद को स्थापित किया और ये साबित भी किया कि अगर आपके सपने हैं, आपको उनको देखने की हिम्मत है, हौसला है, तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं. चार दशक तक बॉलीवुड पर चरित्र अभिनेता और हास्य कलाकार के रूप में अपनी खास पहचान बनाकर दर्शकों को अपनी अदाओं से लोटपोट होने के लिए मजबूर कर दिया था उन्होंने. और ये सिद्ध किया कि अगर सपने देखने की हिम्मत और हौसला है तो आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता. आपको आपके सपनों से कोई जुदा नहीं कर सकता. वो कोरा कागज जिस पर सपनों को लिखने की शुरुआत की थी उसे उन्होंने हिम्मत से देखा और फिर उस कोरे कागज पर अपने हाथों से खुद को महानतम हास्य अभिनेता के तौर पर शुमार भी किया. शादी उनकी हुई थी. अगर निजी जिंदगी की बात करें तो मुकुल सेन से हुई.

थी जो कि कलकत्ता की रहने वाली थी और बेहद प्रेम करते थे उनसे, हर पति अपनी पत्नी या हर पत्नी अपने पति से करती ही है। 1993 में असित साहब की पत्नी मुकुल सेन काफ़ी बीमार पड़ गई कहते हैं, और जिसके बाद उनको कलकत्ता से वो बम्बई लेकर के भी गए, लेकिन इलाज जो है वो उनको बचा नहीं सका। पत्नी की मौत से इतना टूट गए थे कि कुछ महीनों के बाद 18 सितंबर 1993 को 76 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ा उनको और वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चल बसे। लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसी शख्सियतें कहीं जाती नहीं। लोगों को हंसाने गुदगुदाने वाला वो अभिनेता उस दिन शांत हो गया था, लेकिन अपने अभिनय के जरिए हंसी की जो ठहाके उन्होंने अपने चाहने वालों के होठों पर छोड़े थे, यकीन मानिए वो आज भी वैसे ही मुखर हैं, वैसे ही गुदगुदाते हैं, फिजाओं में गूंजते हैं, जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। चाह कर भी आप उन्हें कभी भुला नहीं सकते। जब जब हास्य के पंदों की बात चलेगी, हास्य किरदारों की बात चलेगी, भारतीय सिने जगत में हास्य अभिनेताओं का जिक्र

जरिए हंसी के जो ठहाके उन्होंने अपने चाहने वालों के होठों पर छोड़े थे, यकीन मानिए वो आज भी वैसे ही मुखर हैं, वैसे ही गुदगुदाते हैं, फिजाओं में गूंजते हैं, जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। चाह कर भी आप उन्हें कभी भुला नहीं सकते। जब जब हास्य के पंदों की बात चलेगी, हास्य किरदारों की बात चलेगी, भारतीय सिने जगत में हास्य अभिनेताओं का जिक्र होगा, तब तब असित सेन साहब का जिक्र होगा। और ये होना लाजमी भी है, क्योंकि बिना किसी मेहनत, बिना किसी जद्दोजहद के अगर आप किसी के होंठों पर मुस्कान ला सकें, तो ऐसी शख्सियत को भुला देना कभी लाजमी नहीं होता, कभी भी संभव नहीं हो सकता। आज का रजनीगंधा उन्हीं के नाम किया हमने बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर, इसी उम्मीद के साथ कि वो कहीं भी हों, जहां भी हों, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए वो हमेशा हमारे आपके सबके साथ रहेंगे, जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। उम्मीद करती हूँ आज का रजनीगंधा आपके दिल के करीब रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की इस आखिरी गीत से उन्हें याद करते हुए कि हम उन्हें कभी भुला नहीं सकते, दीजिए आपकी दोस्त आपके रजा को इजाज़त। फिर जल्दी होगी आपसे मुलाकात इसी जगह इसी रेडियो स्टेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर, विशेषकर ऊर्जा सहयोग तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2.60 लाख करोड़ का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश सरकार के स्टाम्प तथा पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर ईंधन बचाने और फिजूलखर्ची रोकने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल की है। मंत्री ने अपने आधिकारिक उपयोग में वाहनों की संख्या को सीमित करते हुए केवल एक एस्कॉर्ट वाहन का उपयोग करने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये कदम ऊर्जा संरक्षण और सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से उठाया है। सीबीएसई द्वारा जारी इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम में अमरोहा के नमन सिंह 98.2% पाकर मुरादाबाद मंडल के टॉपर बने हैं। रिन्नी चौधरी 97.6% अंक प्राप्त कर जिले में द्वितीय स्थान, जबकि अक्षय सिंह ने 97% अंक के साथ विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर विद्यालय द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:20 पर और सूर्यास्त 6:45 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। 100.7 MHz पर आकाशवाणी के FM रेनबो प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02